0: दो दिन बाद या तीन दिन बाद हम उस चीज से निकल कर दूसरी स्टेज में दाखिल होते हैं, तो हमें लगता है कि ये पुराना हो गया। नहीं, वो पुराना नहीं, वो किसी बंदे की बहुत ही प्यारा है आज भी, जो तुम्हारी स्टेज पे जो तुम कल
1: थे ना,
0: वहाँ पे कोई और इंसान रह के जब वो पढ़ेगा तो उसको बहुत मजा आएगा।
1: हाँ, क्योंकि जिस फेज से तुम गुजरे हो उस फेज पे बाकी के लोगों को आना है।
0: मैंने बोला ना कि रास्ता दरवाजा भी है, इश्क का दरवाजा एक ही, उसको सब वहाँ से सबको गुजरना है। तो जहाँ जैसे आप फलाने पिलर पे थे, आप दो किलोमीटर पहले आपने वो शेर लिखा निर्वाणा से पहले, फिर एक किलोमीटर बचा वहाँ पे आपने कुछ शेर लिखा, फिर आपने दरवाजे पे जाकर कुछ शेर लिखा, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 किलोमीटर जो शेर आपने लिखा था पहले वो खराब
1: है। नहीं, करेक्ट।
0: वो जो लोग 5 किलोमीटर पहले से जो आ रहे होंगे उनको शेर पढ़ेंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबकी एक रेंज होती है। आप दरवाजे के उस पार जब निकल जाएंगे इश्क के पार, तब आप कुछ लिखेंगे तो और मजा आएगा लोगों को।
1: यही दुनिया को यही तो टटोलना है कि दीवार के उस पार क्या है,
0: वो दरवाजे पार हो जाए, आदमी इश्क कदम पार हो जाए।
1: तो यही इश्क और शेरो शायरी और नज़मों से याद आया बुल्ले शाह साहब। बुल्ले शाह साहब का कोई ऐसा किस्सा बताइए जिसमें इश्क की इंतहा पूरी तरीके से मतलब टूट चुकी हो।
0: बुल्ले शाह साहब का मुझे एक किस्सा याद आता है उनका, कि जो उनके गुरु जी थे वो थोड़ी समझ लीजिए कि आज के दौर में अगर जात बिरादरी वाला देखें, जात और बिरादरी वाली, तो उस तरीके से अगर मैं लोगों को मतलब अपनी बस पहुंचा पाऊँ तो इस तरीके से करूंगा कि समझ लीजिए
1: सब्जी बेचने वाले थे। हाँ, मेरे हिसाब से इनायत शाह कादरी साहब,
0: इनायत शाह कादरी साहब उनके जो गुरु जी थे, और बुल्ले शाह जो मुसलमानों में सैयद होती है टॉप मोस्ट कैटेगरी, तो वो थे। तो एक दिन खाना खा रहे तो बुल्ले शाह के घर वालों ने कह दिया कि क्या भी सब्जी बेचने वाले से कचेला बन गया, उसके पास क्या रखा है। तो बुल्ले शाह के मतलब जबान से बात निकल गई कि अरे उन्होंने अपने घर से थोड़ी कुछ दिया है, सब अपना ही तो है। तो उनका ये कहना था कि उनकी सारी जो इश्क था, जो उनका सेक्रीफाइस था, जो भी था उनका, जो सरेंडर की जो होने की जो एबिलिटी थी, सब जो उनका रिवॉर्ड था सारा खत्म हो गया। अब वो परेशान हो गए, तो इतना परेशान हो गए कि वो निकलते थे अपने गुरु जी की गलियों से निकलते थे, सब चीज करते थे। यहाँ तक कि एक कोठा था उस रास्ते में जहाँ से उनके गुरुजी कभी कदार निकलते थे, तो वहाँ पे कोठे में चले गए वो। तो वहाँ पे जो तवायफ थी तो उनसे उन्होंने कहा कि आज मैं नाचूंगा। तो बोले पागल वागल कैसे ऐसा, आप नाचेंगे, आप मतलब इतने बड़े मौलवी, आप आलिम है, मौलाना है, आप नाचेंगे। बोले नहीं, आज मेरा महबूब यहाँ से निकले, मैं नाचूंगा। पूरा दिन वो नाचे जब तक निकल नहीं गए, और इत्तेफाक से वो निकले भी नहीं। इतना इश्क में वो कि जहाँ पे नहाते थे, जो गुस्ल खाना होता है, जो वॉशरूम होता है, आज जो जहाँ पे आदमी
1: नहाता
0: है, तो जहाँ से पानी पहले इतना सिस्टम नहीं था ना, पाइप वाइप का, तो जहाँ पे नहा रहे थे उनके गुरुजी, वो जहाँ वो नहाने का पानी निकल रहा था वहां पे जाके बुल्ले शाह अपना सर लगा दिए, तो पानी वॉशरूम में भरने लगा। तो उनके गुरुजी बांस लिए, बांबू, और बांबू से पाइप को साफ करने लगे, तो इतना सर पे घाव हो गया कि खून आने लगा वापस से, पूरा सर फट गया उनका। जब देखे खून आने लगा तो गुरुजी, और ये इम्तिहान लेने वाला मालिक ही है और कोई, तो तब वो गए और दोबारा देखते हैं कि अरे बुल्ला ये तो तू है। तब उन्होंने उनको गले, ऐसे बहुत सारे वाक्य थे जब उतना वो कुछ वफा, कुछ सालों परेशान रहे, बहुत ज्यादा परेशान रहे मनाने के लिए। मैंने आपको मतलब मुख्तसर दो दो दो वाक्य।
1: हाँ, वो तो उनकी गुरुजी के चौखट पर सर तोड़ दिए खुद का, क्या क्या नहीं किया।
0: आप सोचिए जब उनके हाथ से ही उनका खून निकला कि हाँ बांबू लेके पूरा फोड़ डाले उनका, तब उन्होंने मतलब एक्सेप्ट किया कि हाँ अब मेरी जो है प्राशिक, अब प्राशिक मेरा पूरा हुआ। वो तो चाहते थे कि मैं मतलब किसी बहाने मर जाऊं, बुल्ले शाह भी चाहते थे मैं किसी बहाने मर जाऊं इसी रास्ते में।
1: क्या
0: इसी तरह की
1: क्या समर्पण होगा, मतलब ऐसे ऐसे मतलब शिष्य और गुरु की कहानी जैसे एकलव्य की कहानी है, उनसे बड़ा धनुष अच्छे से कोई चला नहीं सकता था, धनुर्धर कोई नहीं था, लेकिन अपने गुरु के प्यार में अपना दे दिया अंगूठा भाई।
0: आमिर खुसरो निजामुद्दीन की मोहब्बत में,
1: हाँ,
0: राधा कृष्ण, मीरा कृष्ण, सब कितने सारे लोग हैं। लक्ष्मण का राम के प्रति
1: प्रेम, समर्पण था, जो प्रेम था,
0: बहुत सारे ऐसे बहुत सारे बॉन्ड है जिसके बारे में बात कर सकते हैं। कुछ किस लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे हैं, कुछ किसी लेवल पे हैं।
1: हाँ, मतलब चीजें इतनी सारी है, लेकिन मेन मसला, मेन जो मामला जहाँ बिगड़ता है, कि आजकल के यूथ को ये चीजें, इन चीजों का अभाव हो गया, ये चीजें मिल नहीं रही है। ये चीजें बहुत इजीली एक्सेसिबल, जैसे आप चले गए, आपने पढ़ लिया, आपको समझ में आ गया, लेकिन आजकल की जो यूथ है वो किसी और चीज से इंस्पायर है, जिन चीजों को शायद वो इंस्पायर होने जाते और गलत रास्ते पे चले जाते। आज भी अगर वो अपने रूट्स को सुने, अपने रूट्स को पढ़े, अपने रूट्स को जाने, तो मुझे यकीन है कि चीजें फिर वो पुरानी युग में ले जाएंगी। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे प्यार मोहब्बत की बात हो गई, हमने जाना मीरा का समर्पण, बुल्ले शाह साहब का समर्पण, सबका समर्पण, आपको कभी किसी ने अपने प्रेम का इजहार किया और आपने उसको मना किया, उस वक्त दिल में जो एक टीस पैदा होती है, जैसे हमको पता है कि ये शख्स हमको आके पूछेगा और हम उसको मना करेंगे, लेकिन वो मना करने में भी ऐसा दिल दुखता है, जो जो पीड़ा उठती है दिल के अंदर, जो दर्द उठता है, उस वक्त कुछ कभी लिखा है आपने कि आपने किसी को मना कर दिया कि मैंने
0: लिखा नहीं, मैंने पैर छुए, मैंने पैर छुए, और ये इतनी बेहतरीन फीलिंग है कि इतने सारे लोग, अप्रोक्सीमेटली 8 बिलियन के अराउंड लोग हैं दुनिया में, और कोई एक इंसान, मर्द हो या औरत हो, कोई भी हो, एक इंसान आपको पसंद करता है दुनिया में, तो कितनी ये सौभाग्य की बात है कि इतना इतना प्रेम वो आप पे न्योछावर कर रही है या कर रहा है या कर रहे हैं जो भी है, ये कितनी बड़ी बात है, ये कितने आप कितने खुशकिस्मत है, कितने ही ज्यादा आप आपका सौभाग्य है कि आपको एक इंसान जिसके पास पूरा ब्रह्मांड चक्कर लगाने के लिए हर चीज उसके पास है, कितना मटेरियलिस्टिक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मगर उसने आपको छुना। तो ये अगर मुझसे कोई पूछे तो ये पैर छूने के काम, कि ऐ इंसान तूने मुझे प्यार किया, तूने मुझे पसंद किया, मगर मैं कहीं और,
1: मतलब
0: अपना मेरा ध्यान कहीं और, तो ये पैर छूने वाली बात है। मैंने कुछ लिखा नहीं, मैंने जो आपका सवाल था आपने कुछ लिखा,
1: अगर आप कुछ गा के इसको बयां कर सके तो कौन सा गाना आप गाएंगे इस चीज को बयां करने?
0: एक गाना समझ में आता है मुझे, वो आपकी नजरों में समझा हुआ,
1: तो थोड़ा गा के सुनाइए, क्योंकि मुझे पता है आप अच्छा गाते हो, तो आज आप मौजूद हो तो सब निकाला जाए थोड़ा थोड़ा करके।
0: इसका धुन कैसे गाने का, मैं भूल गया।
1: आपकी नजरों ने समझा
0: प्यार के काबिल मुझे, दिल की धड़कन ठहर जा,

0: वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। आप एक गाना गुनगुनाया करते थे, मैं अभी वो गाना भूल रहा हूँ, मेरे को याद नहीं आ रहा, लेकिन बहुत अच्छा लगता था वो। लेकिन अभी एक और गाना आप गुनगुनाते हैं, कलंक।
1: हाँ बहुत मतलब
0: वो अगर आप सुना दे तो वो गाने की जो कशिश है, मतलब अगर आज के रेट में कोई सॉन्ग अगर कुछ डिफाइन कर सके तो मुझे लगता है इस गाने में जो कुछ लाइनें लिखी है, कुछ पंक्तियां लिखी है, कुछ चीजें लिखी है, अगर उसको इंसान सोच विचार कर तवज्जो दे थोड़ी उन चीजों पे, तो शायद उसके प्रेम को देखने के प्रेम को देखने का नजरिया बदल सकता है। तो अगर आप तो गुनगुनाते
1: बीच की है कुछ लाइनें जैसे, न जाने ये जमाना

0: तेरा मैं तेरा
1: है। क्या मतलब देखो ऊपर वाले की महिमा भी देखो, एक आदमी को हाइट दे दी, हाँ एक आदमी को चेहरा दे दिया, पर्सनालिटी दे दी, लिखना दे दिया, गाना दे दिया, और मतलब क्या अलग अलग महिमा है ऊपर वाले की। हाँ काश हमारा गला ऐसा होता, हम गले से ना बिना है। तो आगे बढ़ते हैं कि अब आते हैं मतलब शो के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं, तो कुछ एक दो सवाल और फिर इजाजत आपसे। तो अब ये जानेंगे हम कि बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ मिटाया, बहुत कुछ लिखकर अपने लिए रखा, कुछ शायद किसी को सुनाया, कोई इम्प्रेस भी हुआ होगा, लेकिन कभी एक ऐसा दौर आया जिंदगी में जब सोचा कि अब नहीं लिखना है, अब सब खत्म करना है, ये क्या कुछ नहीं,
2: मतलब ऐसा जो ब्लॉक आता है उसके अलावा की बात ही करूंगा। मैंने क्लैरिफिकेशन दिया कि ब्लॉक की बात नहीं कर रहे शब्बीर भाई कि नहीं लिखने का मन नहीं करना, ये अलग बात है, नहीं लिखूंगा ये अलग बात है, या कुछ नहीं लिखना हो रहा है वो अलग बात है, मतलब कई कई सारी चीजें। नहीं लिखने का मन तभी करता है इंसान, जैसे मैंने बताया कि शिकायतें ज्यादा हो जाती है, रूप से शिकायतें ज्यादा हो जाती है और कुछ मन नहीं करता कि हटाओ हटाओ, तो ये ज्यादा दिन नहीं चलता, ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता, ये इत्तेफाक ये है कि ये भी ज्यादा दिन नहीं चलता। ये होता नहीं कि महबूब क्या बुराई नहीं कर सकते, आप या तो इश्क करें या तो फिर बुराई कर लें,
1: दोनों नहीं कर सकते।
2: अरे तो एक एक जगह पे दो चीज रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट है ना।
1: हाँ, एक मैदान में दो तलवार नहीं हो सकती, सही बात,
2: कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इश्क है तो इश्क है, नफरत है तो नफरत है, एक एक दिल में दो चीज कैसे रहेंगे शब्द
1: नहीं। लेकिन एक मोड़ आता है ऐसा कि मतलब जब नफरत है और वो ऑटोमेटिकली टर्न हो जाती है प्यार में,
2: बिल्कुल,
1: तो वो क्या मतलब मामला होता है कि मतलब एक आप चल रहे एक अलग डायमेंशन पे चल रहे हैं, है ना, मतलब नफरत यानी आदमी मरा हुआ पड़ा है,
2: सही।
1: फिर उससे प्यार हो गया यानी वो जिंदा हो गया, मतलब एक मुरझाए हुए फूल को फिर से उसकी खूबसूरती में लाना, तो ये प्रोसेस कैसे होता होगा प्यार में एक शायर के नजरिए से।
2: एक शायर की नजर जैसे मैंने एक बहुत ही अच्छा शेर तो नहीं है मुझे उतना नहीं है चला मगर मेरे सब बच्चे हैं, मैंने लिखा तेरे दिल की दीवारों का भी भला हो असरार, तेरे दिल की दीवारों
1: का भी भला हो असरार,
2: ये बड़ी बात है जो उनको संभाले रखा है।
1: वाह वाह,
2: कि मैंने इतनी ऊंची ऊंची दीवारें इश्क में खड़ी कर दी कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते इस मिजाज में। बाकी फ्रीडम की बात तो अलग है, मगर ये भी होता है कि भाई कितनी भी नफरत कर ले मगर हम जाके लड़ेंगे उसी दीवार से, इधर उधर वो एक एक एक एक मंजिला घर है इश्क, हमें रहना उसी में,
1: चार दीवारें एक छत है लेकिन उसमें सर इधर जा रहे तो इधर लगेगा, इधर
2: कभी गुस्सा
1: गए
2: नफरत होगी तो कभी ये होगा, कभी बहुत प्यार आ रहा है
1: तो वही मतलब चार दीवारें बना रही है, गुस्सा है तो सर फोड़ रहे और प्यार आया तो उसको ही चूम रहे,
2: बहुत अच्छी तरीके से।
1: वाह वाह वाह,
2: वही है
1: क्या एक राइटर मतलब राइटर्स को ऐसे देखा गया अक्सर कि इनकी मोहब्बत अधूरी रह जाती है, जैसे एक शायर थे मजाज साहब की जब मैंने कहानी सुनी कि बहुत बड़े एक यूनिवर्सिटी है नॉर्थ साइड में, नाम नहीं लूंगा मैं उस यूनिवर्सिटी का, उसमें वो प्रोफेसर थे, बहुत बड़े प्रोफेसर उर्दू के प्रोफेसर, उनको उसी कॉलेज में किसी प्रोफेसर से प्यार हो गया और अब वो प्रोफेसर माने नहीं, तो मजाज साहब नौकरी छोड़ के शायरी करने लगे, लेकिन कैसी शायरी, ऐसी शायरी नहीं कि चलो जाके मुशायरा पढ़ते लोगों से पैसा, वो इतने टूट गए प्रेम में, इतने पागल हो गए कि बस कोई थोड़ी शराब पिला दे तो उसको और पूरी रात बैठ के शायरी सुनाए, तो उनका हाल ऐसा हो गया कि ऐसा करते रहे मुशायरे गए नहीं, पैसे खत्म हो गए, पैसे ही नहीं, अब कोई आदमी क्या कर रहा है कि चलो लाइफ में एंटरटेनमेंट नहीं है, मजाज मिल गया, मजाज को बुला लिया, बिठा दिया, थोड़ी चाय पिला दी, चलो सुनाओ, अब उनको एक एक दो घंटा सुना रहे। एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने पकड़ा उनको दिल्ली में, एकदम कड़ाके की सर्दी, एकदम खतरनाक ठंड, जहाँ पे मतलब बिना शॉल विल के आप निकलो तो कप कपा जाओ, एकदम ऐसे कड़क हो जाओ, पूरी रात लोगों ने उनको शराब पिलाई

0: प्लीज हमें मतलब अगर ये जरूरी ना होता, ये फेज जरूरी ना होता तो हमें पैदा नहीं किया जाता।
1: ओके
0: वही हमको मिला दिया था ना जब वहाँ पे दो आत्माएं थी, वहीं मिलने पे क्या दिक्कत थी। मगर यहाँ यहाँ करके मिलने में और यहाँ मेहनत करके मिलने में और वहाँ मिलने में फर्क है। तो इश्क पहली बात तो अधूरा नहीं है, अगर आप इश्क कह देते हैं तो वो अधूरा बचा ही। मैं एक तरफा इसको अधूरा नहीं मानता, ये तो आदमी पूरा टूट गया, बर्बाद हो गया मर गया। तो इश्क वो ऊपर वाला उनको नवाज देता है, यहीं पे वो इतना दे देता है। इश्क जैसे इश्क भी कई कैटेगरीज हैं, जैसे आदमी करते करते करते करते करते करते फिर इंसान को, मैंने बोला ना इंसान को इंसान की जरूरत रही नहीं जाती। मीरा को कृष्ण के बिना जिस्म से मोहब्बत इसीलिए हो पाई क्योंकि उनको इश्क के माने बहुत कायदे से पता थे कि मुझे जिस्म नहीं चाहिए। तो इसमें मतलब जिस्म की जरूरत नहीं है, और इसी दुनिया में आदमी पा लिए। मीरा ने इस दुनिया में कृष्ण को पाया और इस तरह से पाया कि वो मतलब ईश्वर के रूप में उनको मिले। ऐसा नहीं मिला कि कोई उनको कोई बॉयफ्रेंड है कैसे क्या।
1: हाँ, उनका मतलब प्रेम के प्रति निराकार वाली भावना थी, कोई आकार में नहीं।
0: अल्टीमेट गोल जो है वो मैं मतलब एट दी एंड ऑफ द टाइम यही है कि भाई आपको सुकून कहाँ मिलता है। सबसे ज्यादा सुकून ईश्वर की बाहों में है, मतलब हमारे मालिक की बाहों में। अगर मैं मतलब एकदम एंड रिजल्ट बता दूं इश्क का, अगर मेरे से कोई पूछे कि इश्क का एंड रिजल्ट क्या है, तो मैं ये बोलूंगा कि भाई दुनिया बनी है शब्बीर भाई मोहब्बत से। दुनिया बनी ही मोहब्बत के लिए है, मोहब्बत करने के लिए बनी है। जितना हो सके लोगों से मैं कहता हूँ प्यार करिए, आप लोगों से, अपने पेड़ पौधों को प्यार करिए, अपने छत को प्यार करिए, अपने एसी को प्यार करिए, अपने बॉस को प्यार कीजिए, सबको प्यार करें। इस इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है भाई, कल एटम बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब अट्रैक्ट हुए आके, सब अलग अलग। जब दुनिया बनी, बिग बैंग हुआ तो सारी चीजें अलग थी, सब इधर उधर घूम रहे थे, फिर इन लोगों ने सोचा कि अट्रैक्ट होते हैं, अट्रैक्ट हुए तो एटम बने, फिर कई सारे एटम मिले तो मॉलिक्यूल बना, कुछ मॉलिक्यूल मिले तो कंपाउंड बना, बनते बनते हम बन गए। तो ये यूनियन का ही जो दुनिया है वो यूनियन का ही एक समझिए स्वरूप है। अगर हम आज दो मैग्नेट रखते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दो मैग्नेट, पूरी दुनिया ही ऐसे काम करती है। हमें मिलना ही है, यूनियन ही है। तो जो मरने के बाद जो अपने करीब वो यही मिल जाते हैं, चाहे आखिरी सांस में मिला है मालिक। मगर आदमी जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, मेरा ऐसा मानना है कि जिससे बहुत ज्यादा प्यार करता है उससे एक ना एक बार चाहे आखिरी सांस में मिले, मिलता ही जरूर। वो मालिक बहुत ही बहुत रहम वाला है, वो मालिक है। तुम जिससे मोहब्बत करोगे, तुमने अगर मुझे लगता है एक लाइट से अगर तुम उस लेवल की मोहब्बत कर दोगे तो जब तुम्हारी आखिरी सांस होगी तो लाइट तुम्हारे सामने खड़ी होगी।
1: हाँ, वो तो सही बात है, वो तो सही बात
0: तो
1: है।
0: यही जवाब है मेरा, और
1: वही मुझे भी यही लगता है कि प्रेम का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होता है। उसको किसी भी फॉर्म, आप प्रेम को किसी भी फॉर्म में पा सकते हैं। एक इंसान अपने पेट से प्यार कर सकता है, कोई अपने घर से बहुत ज्यादा प्यार करता है तो वो उसको इतना क्लीन रखेगा घर को कि यार इतना भी कचरा नहीं दिखना चाहिए, है ना। तो ये उसका प्यार ही तो है उसके घर के प्रति। तो अभी जाते जाते एक आखिरी सवाल, अगर जिंदगी में आप राइटर नहीं बनते, कुछ लिखते नहीं, तो क्या करते?
0: यार लिखते नहीं तो मतलब बहुत कुछ कर सकते थे, कहीं मजदूरी कर लेते। मगर ये कुछ चीजें, जैसे मैं गाता भी अच्छा हूँ, मतलब ऑनेस्टी अगर दिखाऊं मैं इस जवाब को देने के प्रति, तो मैं बहुत कुछ कर सकता था, मगर नहीं, मैं खुश हूँ कि मैं लिखता हूँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं गा लेता हूँ। मेरे सारे काम मेरे इश्क से ही रिलेटेड है। मैं कुछ ना करता तो इश्क, वो एक
1: कुछ नहीं करता तो इश्क करता है ना,
0: तो कुछ नहीं करता तो शायद फिर इश्क करता, और कुछ नहीं करता। मुझे इश्क ही सूट करता है, मैं वही करता हूँ, मैं उसमें ज्यादा माहिर हूँ।
1: अच्छा,
0: और सबको मतलब सबको सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी इश्क करें, लोगों से मोहब्बत करें, अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग से मोहब्बत करें, अपने इन्वायरमेंट से मोहब्बत करें, अपने इकोसिस्टम से मोहब्बत करें, अपने बिल्डिंग वाले से मोहब्बत करें, अपने वॉचमैन से मोहब्बत करें, अपने गार्ड से मोहब्बत करें, सबसे मोहब्बत करें, प्यार बांटो यार।
1: इश्क करें, प्यार करें, इसका मतलब यह नहीं जाके इट जस्ट दैट यू नीड टू बी मोर ह्यूमन more gets bent towards the humanity
0: than anything.
1: Yeah, then anything gets bent towards humanity. Just get closer to just be the pure soul who can help, be kind, be positive. आपका पॉजिटिव होना भी शायद किसी को एक ऐसे नेगेटिव जोन से बाहर निकाले जिससे वो सालों से जूझ रहा हो, मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव।
0: मैं यही बताता हूँ कि जब जो हम जो भी We have been created for love. हमें मतलब ये बनाया ही इसीलिए गया कि आप प्यार करें, हमें प्यार से बनाया गया शब्बीर भाई। आप एक जब एक

0: बच्चा माँ के पेट में रहता है आप उसको देखिए प्लासेंटा से क्या क्या आता है, कितना न्यूट्रिशन आता है, प्यार नहीं तो क्या है। मैं तो हर चीज को इश्क से देखता हूँ यार, इश्क इश्क ही मेरा चश्मा है, मैंने बताया पहले आपको, मैं उसी नजर से देखता हूँ चीजों को, तो मुझे बड़ी खूबसूरत लगती है। मुझे अंधा आदमी भी खूबसूरत लगता है, मुझे किसी के हाथ पैर ना हो फिर भी खूबसूरत लगता है, मुझे बहुत खूबसूरती है इस दुनिया में, ये दुनिया में खूबसूरती के अलावा कुछ है ही नहीं।
1: वाह,
0: बहुत खूबसूरत
1: है। इससे अच्छी क्या ही एंड हो सकता था हमारे पॉडकास्ट का, कि हम आए इश्क पे, हमने दुनिया को खूबसूरत कहा और न जाने कितने अलग अलग इश्क के पहलू बताए, कितने अलग अलग उसके स्टेजेस बताए, उसकी कैटेगरीज बताई, कैसे हमने अलग अलग एग्जांपल बताए कि किस तरीके से मीरा का डिवोशन, बुल्ले शाह साहब का डिवोशन और अलग अलग डिवोशन, इन सारे डिवोशंस ने मिलकर एक ही सीख दी है लोगों को कि यू शुड बी वेरी काइंडफुल एंड वेरी much lovable, that your love should get spread in entire world, it should not get bounded, ye bound nahi rehna chahiye, ya aap isko close form mein na rakhe, if you have something to give please give it back, aap do, kyunki aapne thoda diya to wo bahut zyada form mein banke aapke paas hi lautega, lekin jab aap ek insaan tabhi apne zindagi mein aage badhta hai jab wo apne andar ki cheezon ko khali karta hai, जब तक आप अपने आप को खाली नहीं करोगे तब तक आपके अंदर फिर से आप कुछ भर नहीं सकते,
0: बर्तन उतना ही बड़ा है, उसको खाली करते रहिए, नई चीजें एब्जॉर्ब करिए, नई चीजें प्यार ऐसी चीजें कि आपको नए नए एक्सपीरियंस होते रहेंगे, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है जनाब,
1: ठहरा हुआ पानी में कीड़े मकोड़े सब आने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, कल या फिर या परसों या जब कभी समय मिले हम फिर आएंगे एक नवे कवि को लेकर, एक नई प्रतिभा को लेकर, एक नए कॉन्फिडेंस को लेकर आपके समक्ष। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे एंड करता हूँ इस शो को, मुझे उम्मीद है कि आपको ये शो पसंद आया होगा। टाटा बाय बाय,
0: थैंक यू।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस लोग? भाई सब चंगा है ना? जनाब सब ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि आचार्य 90 FM के ऑडियंस की सेहत का ख्याल रखना हमें आता है। अर्ज किया है, आए वो हमारी महफिल में कुछ इस तरह कि हर तरफ चांद तारे झिलमिलाने लगे। उनको देखकर दिल झूमने लगा और सबके मन खिलखिलाने लगे। आचार्य 90 FM के ऑडियंस हमारे लिए है बेहद खास। स्वाद का जायका निभाने की मेरे मन में आस। हमारे शो पर बनती है अनोखी सी रेसिपी, मतलब टेस्टी खाने की जायकेदार लीगसी। आ गई मैं वापस निभाने अपना वादा, यम्मी फूड को शेयर करना यही मेरा इरादा। आज हम बनाने जा रहे हैं एक खास रेसिपी, जो बनाने के लिए हमें चाहिए आम। भाई आम का मौसम चल रहा है तो मैंगो मूड सेलिब्रेशन तो बनता ही है। अमृत जैसी टेस्ट वाला आम इस्तेमाल करके हम बनाने वाले हैं एक महाराष्ट्रीयन रेसिपी, जिसका नाम है आंब्याची अमृत फळे। महाराष्ट्रीयन लोगों को वरण फळे मीन्स दाल ढोकली तो पता ही होगा। मसालेदार दाल में आटे के पतले टुकड़े डालकर हम वरण फळे बनाते हैं। लेकिन आंब्याची अमृत फळे ये लजीज खाना बिना ग्रेवी वाला है। इसे खुशबूदार आंबा मोहर चावल के साथ पकाकर किसी शेप में काटा जाता है। आप आंबा मोहर चावल को जानते हैं ना? आंबा मोहर चावल महाराष्ट्र का पारंपरिक और छोटे दाने वाला चावल है। इसे पकाते वक्त हर तरफ इसकी खुशबू छा जाती है। पूरी तरह से पकने पर इस आंबा मोहर चावल से आम्र कुसुम मीन्स आम के फूलों से खुशबू आती है, यानी कि आम्र मोहर की खुशबू। इसीलिए इस चावल को अंबा मोहर चावल के नाम से जाना जाता है। इसे ज्यादातर पुणे के आसपास वाले इलाके में उगाया जाता है। वैसे बासमती चावल भी काफी खुशबूदार होता है। बासमती चावल का दाना आकार में बड़ा होता है और अंबा मोहर चावल का दाना छोटे साइज वाला होता है। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी की ओर अब हम बढ़ते हैं। आंब्याची अमृत फळे बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: आंबा मोहर चावल 1 कटोरी, पके हुए अल्फोंसो मीन्स हापुस आम 2, पानी 1 कटोरी, देसी घी लगभग आधा कटोरी, कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 4 चम्मच, केसर के धागे 7 या 8, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, सॉल्ट पाउडर 5 चम्मच, खसखस मींस पॉपी सीड्स 1 चम्मच, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने ही वाली हैं। अब हम आंब्याची अमृत फळे बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पके हुए हापुस आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 घंटे तक हमें इसे पानी में भिगोकर रखना है। ऐसा क्यों करना है, भूल गए आप? जनाब आम की तासीर गर्म होती है। पानी में रखने से आम में से गर्मी निकल जाती है और ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक और बात, क्या आप सौंठ का मतलब जानते हैं? सौंठ मींस सूखा अदरक। सूखा अदरक पीसकर बनता है सौंठ पाउडर। इसका मतलब है कि हमारी आज की रेसिपी थोड़ी मसालेदार भी होगी, है कि नहीं? इस बात पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून।

वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम आंब्याची अमृत फळे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप चावल को अच्छे से धो लीजिए। अब हमें इन चावलों को सुखाना है। इसके लिए कॉटन के एक कपड़े पर इसे फैला कर रखिए। लगभग 2-4 घंटे के बाद इसका पानी पूरी तरह से सूख जाएगा। फिर इसे मिक्सर में डालकर इसका रवा बनाइए। उसके बाद मोटे बेस वाली एक कढ़ाई में हमें गरम करना है घी। यहाँ पर मैं 1/2 कटोरी घी को गरम कर रही हूँ। फिर उस गरम घी में हम डालेंगे मिक्सर में बनाया हुआ आंबा मोहर चावल का रवा। लगभग 10 मिनट के लिए इसे रोस्ट करना है। तब गैस की फ्लेम को आप लो ही रखिए। ऐसा करने से ये रवा गोल्डन कलर का होगा, नहीं तो वो जल सकता है और किचन में धुआंधार परफॉर्मेंस वाला सीन क्रिएट हो सकता है, इसलिए बी केयरफुल। लगभग 10 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे पानी और ताजा आमरस। फिर ऐड कीजिए ढेर सारा प्यार। इसे आप अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। फिर बारी आती है शक्कर, केसर और थोड़ी सी सॉल्ट पाउडर की। इसे भी उस मिश्रण में अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 2-4 मिनट में ये पक जाएगा। फिर इसमें डालिए थोड़ा सा और घी और साथ ही खुशबूदार इलायची पाउडर। इस देसी घी और इलायची पाउडर की खुशबू से आपका घर महक उठेगा। क्या बात! अब इस कढ़ाई पर ढक्कन रखकर लगभग 2-3 मिनट तक हमें इसे अच्छे से पकाना है। जब तक ये पक रहा है हम एक ब्रेक लेते हैं। हमारी आंब्याची अमृत फळे अब फाइनल टच के लिए है तैयार और इसे खाने के लिए हम कैसे करें और इंतजार। तो भाई अब आगे सुनिए। सूजी का हलवा मींस शीरे जैसे ये कढ़ाई वाला मिश्रण दिखने लगे तब आप गैस को कर दीजिए बंद। अब एक बड़ी सी प्लेट में इस मिश्रण को हमें निकालना पड़ेगा, लेकिन पहले उस प्लेट पर थोड़ा सा घी सब तरफ अच्छे से फैलाइए। फिर कढ़ाई में तैयार मिश्रण को उस घी वाली प्लेट में निकालिए। इस गर्मा गर्म मिश्रण को एक कटोरी के बेस की मदद से अच्छे से चपटा करके फैला देना है। जब तक ये मिश्रण गर्म है तब ही इस पर खसखस और ग्रेटेड फ्रेश कोकोनट को फैला दीजिए। बाद में कटोरी के बेस से इसे भी प्रेस कर दीजिए। लगभग 1 घंटे के बाद इस तैयार मिश्रण को छुरी की मदद से स्क्वायर शेप में काटिए। इस प्रकार आंब्याची अमृत फळे अब खाने के लिए है एकदम तैयार। एक सुंदर सी कटोरी में रखकर इस आंब्याची अमृत फळे का भोग आप भगवान को लगाइए। ऐसा करने से खाने की सात्विकता बढ़ जाएगी। अब इसका एक टुकड़ा उठाकर बड़े आनंद से इसका लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस आंब्याची अमृत फळ की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है प्रस्तुत हुआ अमृत। न्यारी सी एक मिठाई, नाम में जिसके अमृत, आमरस और चावल से इसे बखूबी किया प्रस्तुत। आम से बने व्यंजनों की इस शो में भरमार, स्वाद का जायका निभाने आई भारतीय सीमा बनकर कर्णधार। हम खाना खिलाते खिलाते सुनाएंगे कुछ गाने, कभी नए तो कभी भूले हुए फसाने। हमेशा बनी रहे ऑडियंस जी आपसे हमारी दोस्ती, आसानी से भूल जाओ ऐसी नहीं ये हस्ती। भारतीय खाने में छुपे हैं सेहत से जुड़े कुछ राज। अब बारी है अगली रेसिपी की, लेकिन पहले बजेंगे कुछ साज।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे गर्मी के सीजन में एक और फल मार्केट में आता है। इस फल के बीज निकालकर उसे नमक लगाकर धूप में अच्छे से सुखाया जाता है। ऐसा सुखाने से लाल रंग वाला ये खट्टा फल काले रंग का बन जाता है। इसे मेनली महाराष्ट्र, गोवा और कोंकण क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है। इस सूखे हुए फल में नारियल का दूध मिलाकर बनाई जाती है कोकम कड़ी, मींस सोल कड़ी। ये एक ताजगी भरा व्यंजन है। ये अपने खट्टे मीठे और पाचक गुणों के लिए फेमस है। इसका टेस्ट खट्टा मीठा होने के साथ हल्का मसालेदार भी होता है। इसका रंग हल्का गुलाबी या जामुनी होता है, जो कोकम से नेचुरली आता है। गर्मियों में इसका सेवन करने से हमारे शरीर में ठंडक छा जाती है और हीट स्ट्रोक से बचाने में ये बहुत ही प्रभावी मींस असरदार है। इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे हमारी स्किन और ओवरऑल हेल्थ को फायदा ही मिलता है। मींस अपनी ब्यूटी रेजिम में आप कोकम कड़ी को जरूर शामिल कीजिए। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। कोकम कड़ी को सिंपल चावल के साथ खाना मतलब कंफर्ट फूड खाने वाली बात। इस टेस्टी और हेल्दी कोकम कड़ी या सोल कड़ी को बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सूखा कोकम 8 से 10 टुकड़े, कोकम भिगोने के लिए गर्म पानी आधा कटोरी, फिर हमें चाहिए कद्दूकस किया हुआ ताजा नारियल 1 कटोरी, हरी मिर्च 1 या 2, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप 3 लीजिए, लहसुन की कलियां 3-4, ये ऑप्शनल है, जीरा 1 छोटा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। अब तड़का लगाने की सामग्री को जानते हैं। हमें चाहिए तेल या देसी घी लगभग 1 चम्मच, राई मतलब सरसों 1/2 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, कड़ी पत्ता 8 से 10 पत्ते, गार्निश करने के लिए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब हम कोकम

कड़ी मीन्स सोल कड़ी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले सूखे कोकम को आधा कटोरी गर्म पानी में भिगोकर रखिए। लगभग आधे घंटे बाद कोकम का टेक्सचर सॉफ्ट बनेगा। तब उसी पानी में कोकम को अपने हाथों से मसल दीजिए, मीन्स क्रश कीजिए। ऐसा करते समय उसके बीज आप हटा दीजिए। अब हम नारियल का दूध बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। मिक्सर के जार में कद्दूकस किया हुआ नारियल डालिए। उसमें हरी मिर्ची, थोड़ा सा जीरा और लहसुन ऐड कीजिए। फिर थोड़ा सा पानी डालकर उसे पीस लीजिए। अब इस पीसे हुए मिश्रण को महीन छलनी में डालें, छोटे छेद वाली छलनी से सॉलिड और लिक्विड पार्ट को अलग अलग कर दीजिए। सॉलिड वाले पेस्ट को अपने हाथों से निचोड़कर हमें नारियल का गाढ़ा सा दूध मिलेगा और वो लिक्विड वाला भी चाहिए। भाई, टेस्टी सोल कड़ी को एंजॉय करने थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब इस नारियल के दूध में मसल कर बनाया हुआ कोकम और उसका पानी दोनों को अच्छे से मिक्स कीजिए। फिर इसमें मिलाइए थोड़ा सा नमक। अब इस गुलाबी मिश्रण को हम खुशबूदार तड़का लगाकर स्वाद का जायका निभाने वाले हैं। इसके लिए एक छोटे से पैन में थोड़ा तेल या घी गरम कीजिए। उसमें सबसे पहले डालिए सरसों, मींस राई, मस्टर्ड सीड्स। फिर इसमें ऐड कीजिए कड़ी पत्ता। वाह वाह वाह, क्या बात! इस खुशबूदार तड़के को कड़ी में डाल दीजिए। एक चम्मच की मदद से इसे मिक्स कीजिए। इस तरह सोल को खुश करने वाली खट्टी मीठी और जरा सी मसालेदार कोकम कड़ी हो गई है तैयार, और इसे डेकोरेट करने हम हैं बिल्कुल ही तैयार। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सोल कड़ी को डेकोरेट करने से पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप यहीं पर बने रहें। मैं यू गई और यू आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब इस गुलाबी कोकम कड़ी को सुंदर से एक कांच के ग्लास में परोसिए। फिर इसकी सुर्खी को सजाने के लिए इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालिए। दैट्स इट। अब सोल कड़ी को एंजॉय कीजिए। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। सोल कड़ी का गुलाबी रंग निखारने के लिए मींस इसे डार्क पिंक बनाने के लिए आप इसमें बीट रूट का थोड़ा सा जूस मिक्स कर सकते हैं। ऐसा करने से इसका गुलाबी निखार और बढ़ेगा, साथ ही इसमें मौजूद पौष्टिक तत्व कुछ हद तक बढ़ जाएंगे। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? ऐसी ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज को एंजॉय करने आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब कीजिए। इस सोल कड़ी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है सोल को खुश करने वाली सोल कड़ी। गुलाबी रंग वाली सुंदर सी कड़ी दिखने में लगती है नजाकत से भरी। इसके टेस्ट से खुश होगा हर किसी का सोल और इसके स्वाद का ना कोई दूजा मोल। कोकम कड़ी है महाराष्ट्रीयन भोजन की शान। इसे टेस्ट करके आप जरूर करेंगे इसका गुणगान। नारियल का दूध और कोकम का कॉम्बिनेशन मतलब स्वाद का जायका निभाने वाला खट्टा मीठा क्रिएशन। आऊंगी आपसे मिलने हर सोमवार और शुक्रवार। शेयर करने कुछ रेसिपीज, मेरा दिल होता है बेकरार। अपने देश की खाद्य संस्कृति को जानने की हमारी ये छोटी सी कोशिश। हुकुम कीजिए ऑडियंस जी, हम पूरी करेंगे आपकी विश। देसी खाना खाकर पर्व, भारत की तरक्की का अब शुरू हुआ है पर्व। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, हमसे साझा कीजिए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। अब हम सुनते हैं एक झटपट रीकैप। आज के इस एपिसोड की शुरुआत में हमने बनाई आंब्याची अमृत फळे। अल्फोंसो मैंगो पल्प को खुशबूदार अंबा मोहर चावल के साथ पकाकर हमने मैंगो सीजन को सेलिब्रेट किया। उसके बाद हमने बनाई सोल को खुश करने वाली टेस्टी सोल कड़ी। नारियल का दूध और खट्टा मीठा कोकम, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारे टेस्ट बर्ड्स को दे रहा है फैसिनेशन, है कि नहीं? भारत के अलग अलग हिस्सों की खाद्य संस्कृति को हम स्वाद का जायका इस शो पर शामिल करने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। वैसे रेडीमेड खाना ऑर्डर करना ये ऑप्शन तो हर कोई चूज कर सकता है, राइट? लेकिन अपने देश की जड़ों से जुड़े रहने के लिए हमें लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना खाना चाहिए और बनाकर औरों के साथ एंजॉय भी करना चाहिए। ऐसा करने से हम अपनापन जताने की कोशिश करते हैं। हमारे मन की भावनाएं मतलब ढेर सारा प्यार हम हर रेसिपी में जरूर ऐड करते हैं। इसका नतीजा ये निकलता है कि सिंपल सी लगने वाली आसान रेसिपी भी कंफर्ट फूड बन जाती है। जब शबरी जी ने भगवान श्री राम के लिए बेर चुने तब उन्होंने पहले उनको टेस्ट किया, क्योंकि शबरी जी चाहती थी कि भगवान श्री राम को सिर्फ मीठे वाले बेर ही खाने चाहिए और भगवान श्री राम जी ने उनकी भावनाओं का आदर किया। शबरी जी के झूठे बेर भगवान श्री राम ने बिना हिचकिचाहट बड़े आनंद से ग्रहण किए, क्योंकि शबरी जी के मन की भावनाओं का भगवान श्री राम ने आदर किया। ठीक उसी तरह हमें भी खाना बनाते समय अपनी भावनाओं को सकारात्मक रखना चाहिए। हमारे मन की भावनाएं हम बना रहे खाने में उतरकर उस खाने वाले इंसान के शरीर में प्रवेश करती है। गुस्सा या चिड़चिड़ापन खाने की टेस्ट को बिगाड़ देता है। किचन में पकाए जाने वाले भोजन पर अच्छे संस्कार करने के लिए आपकी सोच मायने रखती है। भाई खाने और खिलाने का ये सिलसिला तो चलता ही रहेगा। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का।
वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा ही नहीं एकदम पक्का वादा। आज भारतीय सीमा की ओर से आप सबको कमिंग सून वाला मेरा बाय बाय।

बहुत सुंदर, बहुत प्रभावशाली। एक संगीत के जादू तो हम जानते ही हैं, संगीत का गरिमा क्या होता है इसके बारे हम सब जानते हैं। संगीत से सुबह होती है, संगीत से शाम होती है, संगीत से हमारा जीवन एक परिपूर्ण होता है। तो फ्रेंड्स, टुडे इन आचार्य कॉलेज वी हैव मिसेस सुनीता गंगरडे मैम। मैम, वेलकम टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो, एंड वी आर ब्लेस्ड टू हैव यू हियर। Ma'am has done her faculty at she is in faculty of Maya Somaiya School of Music and Performing Arts, Somaiya Vidyavihar University. She is an eminent classical and semi-classical vocalist. She has achieved gold medal in MA in vocal Indian classical music, and she is disciple of Vidushi Apurva Gokhaleji and Pandit Kiran Phatak and Vidushi Dhanashri Pandit Rai. She is a recipient of former President Dr. Shankar Dayal Sharma Award, Lata Mangeshkar Alankaran Award winner, and awarded a gold medal in memory of Sri R.C. Lal.

0: R.C. Jal, performed in International Storytelling Program Gatha in 2023, performed in Indo-Hungarian Program in 2024, and performed in Sri Lankan Program in 2025. She has published 2 papers in international peer-reviewed journals in 2023 and 24. She has been the judge at ZTV Little Champs and awarded a gold medal by Devi Ahila University in memory of Sri Rabindranath Tagore Janma Shatabdi Mahotsav. She is an active classical music-based YouTuber with 100 plus videos and 4,000 subscribers. Awarded Guru Gaurav Puraskar by Art and Bits Foundation Pune in 2024 and awarded by Sangeet Kala Samman by Akhil Bhartiya Shri Gangade Samaj Mahila Mandal Khandwa at 9th March 2025. So she was invited to our Acharya Marathe College for end of musical therapy. She has beautifully hosted the program and all were obliged by that. So today we have as a guest speaker over here. So ma'am, थोड़ा पहले के थोड़ा पीछे जाते हैं और जानते हैं आपका आप खांडवा से है, मध्य प्रदेश से है. मध्य प्रदेश से तो मिठाई बहुत पसंद है हमें और दूसरी चीज है मध्य प्रदेश की साड़ी. एक मध्य प्रदेश का अपने एक अलग सा कल्चर है जहाँ पे आप फुली फली बड़ी हो गई, तो थोड़े उसके बारे में आपका घर कैसा था, आपके माता पिता के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए.
1: जरूर जरूर तेजस्विनी जी, सबसे पहले तो आपने मुझे इन्वाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद. तो मुझे गर्व होता है कि मैं खंडवा, मेरी भूमि खंडवा है जहाँ के किशोर कुमार जी हैं, जगत विख्यात जिनका नाम है. तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं ऐसी नगरी से हूँ जहाँ से इतने बड़े बड़े आर्टिस्ट निकले हैं. सो मध्य प्रदेश जो है उसको तो भारत का हृदय कहा जाता है और संगीत के लिए मुझे लगता है बहुत ही अच्छा स्कोप है वहाँ पर. पंडित कुमार गंधर्व जी मध्य प्रदेश से ही हैं और खंडवा में और इंदौर में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर है. मेरे माता पिता जो थे उनको बहुत संगीत का शौक था और बचपन से ही उन्होंने संगीत की शिक्षा मुझे दिलाई. अच्छा. स्पेशली क्लासिकल म्यूजिक का बहुत शौक था मेरे पिताजी को. और ट्रांसफरेबल जॉब में थे लेकिन जहाँ भी ट्रांसफर होके जाते थे सबसे पहली प्रायोरिटी उनकी होती थी कि संगीत गुरु कौन हुआ. सो कभी भी उनके ही प्रयासों की वजह से हम पिताजी का ट्रांसफरेबल जॉब होने के बाद भी हम सीखते गए और ये जो पैशन है ये धीरे धीरे मैंने इसी में मेरा ग्रेजुएशन किया. एंड डेफिनेटली जब हम किसी चीज की साधना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं हमें किसी अच्छे मुकाम पर ले आता है. तो आज जो कुछ भी हूँ वो पिताजी के प्रयासों की वजह से हूँ. और बहुत अच्छी बांसुरी वादक थे वो.
0: अच्छा.
1: तो रागदारी का कोई नॉलेज नहीं था लेकिन अपने आप जब मैं गाती थी तो वो फ्लूट पर जुगलबंदी करते थे और बिना कुछ बताए कि कौन सा राग है क्या स्वर है. उनका इतना कमांड था. तो कहूंगी कि उनकी आत्मा में संगीत था. बहुत बहुत सुनने के शौकीन, रात रात भर प्रोग्राम सुनना, हम जो छोटे छोटे से थे हमें लेकर जाना और उन्हीं के कारण ये धीरे धीरे हम सीखते गए और आज यहाँ आ गए.
0: कोई भी मतलब म्यूजिक हो चाहे हमारी शिक्षा अध्ययन हो, गुरु का महत्व बहुत महत्वपूर्ण रहता है. तो गुरु कौन से थे आप?
1: बचपन में मैंने शिक्षा पाई श्री हरिश्चंद्र ठाकुर जी से. भोपाल में काफी सालों तक वो एमएलबी कॉलेज में जुड़ी रहे और उसके बाद जब मैं 1996 में शादी होकर मुंबई आ गई तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले श्री किरण फाटक सर से संगीत सीखा. लगभग 15 साल तो मैंने उनसे फिजिकल बाद में

0: अपूर्वा गोखले जी के पास ग्वालियर घराने की गायकी लेना शुरू किया, जो आज भी चालू है। और चूंकि मुझे सेमी क्लासिकल का बहुत शौक मेरे पिताजी मेरी आवाज सुनकर बचपन में ही कहा करते थे कि आपकी आवाज ठुमरी के लायक है। सो मुझे लगाव भी था बहुत। मुझे उस समय में कैसेट्स चलते थे, उन्होंने मुझे काफी सारे कैसेट्स लाकर दिए थे और सुनती रही मैं। सुन सुन के मुझे सेमी का बहुत शौक हो, क्योंकि उसमें जो भाव है वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। तो इस वजह से मैं धनश्री पंडित राय जो शोभा गोखले जी के डिसाइपल हैं उनके पास मैंने जाना शुरू किया। और कुछ थोड़ी बहुत भी जो मैं उनसे तालीम ले पाई हूँ सेमी की, वो धनश्री जी से ली है।
1: जी जी। और धनश्री जी से मेरी भी मुलाकात हुई थी, बिकॉज आई ऑल्सो हैव सम कनेक्ट्स विद इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। तो बहुत बड़ी विदुषी है। हाँ सुनीता जी, अभी आपने ठुमरी का जिक्र किया है तो हमारे दर्शकों के लिए एक छोटी सी कुछ बंदिश आप की पेशकश करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा।

0: सुनीता जी, जैसे हम आपने कहा आप कैसेट से बहुत सारे दिग्गजों को सुनती थी, तो आपके फेवरेट कौन है, मतलब इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में, शास्त्रीय संगीत में और उपशास्त्रीय संगीत में? आपने जिक्र किया शोभा गुड्डू जी का, तो आपके कौन से, मतलब आप किनको ज्यादा सुनती है, सुनना पसंद करती है और उनसे ज्यादा सीखती है?
1: मुझे क्लासिकल म्यूजिक में पंडित जसराज जी, उनके
0: अच्छा,
1: डिसाइपल संजीव अभ्यंकर जी और अजय चक्रवर्ती जी, इनको सुनना बहुत
0: ओके,
1: पसंद है। ऐसे तो मैं नाम बताना बहुत मुश्किल
0: हाँ
1: होता है,
0: मुश्किल
1: क्योंकि कई बार कुछ राग हमें कुछ आर्टिस्ट पे बहुत अच्छे लगते हैं, सो हम सुनते हैं इनको। और लाइट म्यूजिक में मुझे शोभा गुड्डू जी का शुरू से ही
0: पसंद
1: बहुत पसंद रहा, और इसी वजह से शायद कहीं ना कहीं धनश्री जी से मुलाकात हो गई
0: हाँ
1: और उनको गुरु रूप में मैंने पाया। बहुत मुझे गुरुओं का, बहुत सभी गुरुओं का मेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद है, इस बात के लिए मैं बहुत धन्य हूँ।
0: बिल्कुल। और हम ये मानते हैं कि गोइंग टू म्यूजिकल कॉन्सर्ट्स दैट गिव्स अ मेन इम्पैक्ट ऑन अस, मतलब हमारे अपब्रिंगिंग में जो म्यूजिकल कॉन्सर्ट है, जैसे कि आपने शोभा गुड्डू जी का जिक्र किया, मैंने उनको पहले सुना था जब मैं भी छोटी छोटी थी, तो मेरे मम्मी पापा गोवा में दीनानाथ मंगेशकर, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर सम्मेलन स्मृति समारोह होता था, वहां पे उनको सुना था।
1: अच्छा,
0: तो आप ऐसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में कहाँ कहाँ गए हैं?
1: देखिए मुझे शौक था म्यूजिक कॉन्सर्ट अटेंड करने का। खंडवा में जब जब भी, क्योंकि किशोर कुमार की नगरी है, तो वहाँ पर किशोर कुमार की स्मृति में बहुत सारे प्रोग्राम्स होते रहते थे। अब तो वहाँ उनकी स्मृति में गौरी कुंज नाम का एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया है, म्यूजिक
0: अच्छा
1: कॉलेज ओपन हुआ है। तो जब जब भी जैसे मौका मिलता था, तानसेन समारोह में मैं गई हूँ,
0: हाँ
1: वहाँ सुनती थी, कालिदास समारोह में गई हूँ, वहाँ

0: ओंकारेश्वर में नटराज उत्सव होता था जहाँ पर भी बड़े बड़े कलाकारों का गायन होता था। तो छोटी जगह से हूँ, खंडवा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन जब जब भी मौका मिलता था मैं ज़रूर कॉन्सर्ट्स अटेंड करती थी, क्योंकि लाइव म्यूजिक सुन के जो हमारे मन पर उसका प्रभाव होता है बहुत ही अलग होता है। इसीलिए शास्त्रीय संगीत में कहा है कि सुनना बहुत
1: और वो गुरु शिष्य परंपरा भी उसको ज़्यादा मायना रखती
0: जी।
1: खंडवा से कुमार गंधर्व जी भी वहाँ पे रहते थे।
0: कुमार गंधर्व जी देवास से।
1: देवास।
0: अच्छा,
1: यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। हम श्रोते आप सुनते रहिए आचार्य 98.5 ओल्ड रेडियो। टुडे वी आर हैविंग अ गेस्ट डॉक्टर सुनीता गंगरडे, हु इज अ डिसिपल ऑफ अपूर्वा बुकले जी, एंड शी इज बीइंग अ परफॉर्मर एंड शी इज डिलीवरिंग हर लेक्चर्स ऑन म्यूजिक थेरेपी।

0: Welcome after the break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio. And today in our guest interview, we have Dr. Sunita Gandharade, ma'am. Ma'am, आपको ये पूछना है कि आपका अपना अपना रियाज होता होगा, मतलब आप बच्चों को कैसे सिखाते हैं वो तो अगला मेरा क्वेश्चन होगा, लेकिन आप अपना रियाज या अपना जो म्यूजिक ऐसा है कि हम सीखते रहते हैं, हर दिन सीखते हैं, नया नया सीखते रहते हैं, तो आपका रियाज आप कैसे करते हैं?
1: हर एक संगीत का जो प्रेमी होता है, स्पेशली शास्त्रीय संगीत, उसके लिए रियाज बहुत जरूरी है. तो हर दिन मेरे दिन की शुरुआत रियाज से ही होती है. फ्रेश होने के बाद मुझे अपने लिए एक गाना चाहिए, कम से कम हाफ एन आवर. तो एक बार जो एक राग हम शुरू कर देते हैं मॉर्निंग में, और रियाज कहते हैं कि सिर्फ अपने लिए होता है. तो मैं एकांत पसंद करती हूँ उस समय में, और जो रियाज में राग लेती हूँ वो दिन भर मेरे दिमाग में चलता रहता है. तो रियाज बहुत जरूरी है. कहते हैं कि एक दिन भी रियाज छोटा तो हम एक स्टेप पीछे आते हैं. तो जितना मुझे लगता है कि मेरे लिए खाना खाना जरूरी है, उतना मेरे लिए रियाज जरूरी है.
0: पहले कहा जाता था सुबह से शाम तक वो रियाज करते थे, और इसलिए वो तानसेन और ये इतने बड़े कलाकार हुए हैं. तो आप वो बिलीव करते हैं कि इतना इतने देर का इतने घंटों का रियाज होना जरूरी है, या फिर आप दो चार घंटा आपका खुद का रियाज करें, या फिर आधा घंटा रियाज करें? क्योंकि आज हमें बहुत मतलब जॉब पे भी जाना है, बच्चों को भी पढ़ाना है, घर वालों को भी संभालना है, ये सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है. तो आप किस तरह से देखते हैं इस सब चीज को?
1: एक्चुअली इसके लिए सही तालीम मिलना बहुत जरूरी है. संगीत ऐसा विषय है जिसमें गुरु के सामने बैठ कर ही सीखा जाता है. आजकल लोग सोचते हैं हम यूट्यूब से सीख लेंगे और हम बड़े विद्वान बन जाएंगे, ऐसा नहीं है. आज के भी टाइम में सही गुरु का चुनाव करना, पूरी श्रद्धा और लगन के साथ गुरु के सामने बैठकर रियाज करना और गुरु के कहे अनुसार, तो निश्चित है कि आपकी प्रोग्रेस होगी ही. ऐसा नहीं है कि बहुत घंटों करने के बाद ही कुछ मिलता है. सही डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, और मैं तो सबको हमेशा सिखाते समय कहती हूँ कि जो भी करना है सब संभाल के करना है. एज ए लेडी हमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है. उसके बाद भी अगर हमें कला में कुछ करना है, कोई भी कला हो, तो हमें सब चीज़ें संभाल के करनी पड़ती है. पर बेशक बहुत साधना कहा गया है, तो हमें कई घंटों टाइम देना ही पड़ता है. तो रियाज जो है वो तीन तरीके से होता है ऐसा मैं मानती हूँ. फिजिकली बैठकर जितना हम कर सकते हैं, दूसरा सुनने से. अगर किसी दिन हमें नहीं टाइम मिल पाया तो एटलीस्ट हम सुन लें, और तीसरा मनन चिंतन करने से. अगर कुछ भी चीज़ें हमारे दिमाग में कंटिन्यूसली चल रही है कि राग है, तो उसके बोल अलग कैसे जाएंगे, तानी कैसे जाएगी, सरगम कैसे जाएगी, तो वो मन में पूरे टाइम चलते रहना, वो भी रियाज है.
0: जी बिल्कुल. अब बढ़ते हैं आपके अध्यापन की ओर. आप सुमेया कॉलेज में बहुत सालों से है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो अनुभव कैसा रहा आपके जीवन में?
1: मैंने जो शास्त्रीय संगीत सीखा, सबसे पहले तो गुरु से तो सीखा ही, लेकिन मैंने स्कूल में भी एक एज ए वन सब्जेक्ट स्कूल में मेरा म्यूजिक था. बाद में मेरा इंटरेस्ट जब मुझे लगा कि इसमें ही है, मेरे फादर को भी लगा, तो मैंने म्यूजिक में ही एमए किया. तो वहाँ से जो है मुझे एक दिशा मिल गई, सही दिशा. तो मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे करियर इसी में करना है. तो म्यूजिक में मैंने मास्टर्स किया, गोल्ड मेडलिस्ट रही मैं इंदौर यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से. के बाद मुंबई आने के बाद भी मैंने सीखना शुरू किया, और धीरे धीरे अध्यापन वाली जो बात कही आपने वो आज तक जारी है. क्योंकि संगीत के लिए एक जन्म ही कम है. तो मेरी गुरु को मैं हमेशा कहती हूँ इस जीवन में तो मैं आपको नहीं छोड़ने वाली हूँ, क्योंकि वो भी अभी तक मेरी गुरु अपूर्वा गोखले जी अभी तक यशवंत महाले जी और शंकर अभ्यंकर जी से सीख रहे हैं. मेरे गुरु श्री किरण फाटक सर जी अभी तक विकास कचालकर जी से सीख रहे हैं. सो उन्हीं से मुझे गुरुओं से ही प्रेरणा मिलती है कि हम ये तो हम सोच ही नहीं सकते कि अभी हमें आ गया, क्योंकि जहाँ ये हमने सोचा वहीं हमारी प्रोग्रेस रुकती है. सो जितना सीखेंगे, ये तो समंदर की तरह है कि जितना गोटा लगाएंगे अंदर उतना आनंद बढ़ने वाला है. तो एक जन्म ही कम है, इसलिए संगीत तो चल रहा है. और माया सुमैया में आने का मेरा ऐसा रहा कि 2015 में मैं सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक में अपॉइंटमेंट हुआ मेरा. और वहाँ पर ये सब आउटसाइडर भी अटेंड कर सकते थे, सुमैया के स्टूडेंट्स, ऐसा पार्ट टाइम था ये सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक. तो 2015 से लेकर ये 6 इयर्स चला, और 75 प्लस स्टूडेंट्स थे वहाँ, बहुत ही अच्छा रिस्पांस रहा। उसके बाद सुमैया जी जो हमारी ट्रस्टी हैं, उन्होंने ये डिसीजन लिया कि नहीं अभी इसको हम यूनिवर्सिटी में एज ए
0: डिग्री कोर्स
1: स्टार्ट करेंगे। तो 2021 से सुमैया स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स में मैं फैकल्टी हूँ, जहाँ पर BBA, MBA, PhD सर्टिफिकेट कोर्सेज इन सब।
0: मैम आजकल के बच्चे बहुत टेक्निकली मतलब टेक्निक ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो उनके प्रति जैसे हम देखते हैं पूना में है, कहीं कहीं बेंगलोर में है, जो संगीत आपने कहा मध्य प्रदेश में, वो म्यूज़िक के प्रति ज़्यादा उनका लगाव रहता है, लेकिन बॉम्बे जैसे सिटी में आप बोल रहे हैं तो इतना अच्छा आप डिलीवरी दे रहे हैं उनको, 75 स्टूडेंट्स है, तो उनका मतलब शास्त्रीय संगीत के प्रति कैसा उनका लगाव है उसके बारे में थोड़ा बताएं।
1: एक्चुअली आजकल के जो यंग बच्चे हैं वो शास्त्रीय संगीत के प्रति उनका रुझान कम है, लेकिन मेरी यही कोशिश रही कि मेरा सिखाने का जो तरीका था, जब मैंने यहाँ महसूस किया 2015 में आने के बाद कितनी भागदौड़ भरी लाइफ में कितने लोग शास्त्रीय संगीत सीखने आते हैं, सो जो जो भी स्टूडेंट्स आए वो इस वजह से बढ़ते गए क्योंकि उनको मेरा टीचिंग स्टाइल बहुत पसंद आया, बिकॉज थोड़ी सी मैं लाइट की बात करती थी, जैसे मैंने आज हमीर राग सिखाया है उनको और मैंने स्वर बता दिए हैं कि सा रे सा ग म ध नी ग सा। अभी उसके साथ अगर मैंने उनको रिलेट कर दिया कि मधुबन मेरा ठिकाना चल, तो ये जो थोड़ा सा हम लाइट की बात करते हैं उससे बच्चों को एक समझ में आता है कि अरे ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, लेकिन राग हमें आज कुछ भी नहीं आने के बाद भी जब मैं कोई राग सिखाती थी ना तो वो इमीडिएटली सॉन्ग्स बताते थे, मींस वो रिलेट कर पाते थे कि अरे मैम यमन राग आपने बताया तो ये सब गाने यमन के हैं विदाउट एनी नॉलेज, तो ये बहुत अच्छा लगता था और इस वजह से बहुत सारे लोग सीखने आने लगे। तो मुझे लगता है आज के टाइम में हम सिर्फ क्लासिकल की बात करें उसके बजाय अगर हम थोड़ी सी उनको इंटरेस्टिंग तरीके से जानकारी देते हैं तो उनका इंटरेस्ट बढ़ता है।
0: कि आप हम शास्त्रीय संगीत की बात कर रहे हैं तो आप बुक्स भी पढ़ते होंगे, क्योंकि बच्चों को ये भी जानना ज़रूरी है कि बुक्स तो पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है शास्त्रीय संगीत का अगर आप अध्ययन कर रहे थे, तो आप बुक्स के बारे में या पढ़ने के बारे में आपका क्या ख्याल है?
1: नहीं, डेफिनेटली थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दो पक्ष हैं, शास्त्र पक्ष है, कला पक्ष है, भाव पक्ष है। इतना कहते हैं परफॉर्मिंग आर्ट है तो ज़्यादातर तो वेटेज परफॉर्मेंस के तरफ रहता है, लेकिन फिर भी जब हम उसमें डिग्री ले रहे हैं तो हम थ्योरी का, हमारे यहाँ जो करिकुलम है उसमें 3 पेपर थ्योरी के,
0: अच्छा
1: 2 प्रैक्टिकल के, सो उसमें फंडामेंटल आ जाता है, हिस्ट्री आ जाता है, अप्लाइड थ्योरी आ जाता है, तो बच्चे आजकल थोड़ा पसंद कम करते हैं, लेकिन हमारा एज ए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको शास्त्र के बारे में भी पूरी जानकारी, बिकॉज क्या होगा कि शास्त्र नहीं पता है ना वो म्यूजिक को इतने अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो भरत के नाट्य शास्त्र से लेकर संगीत रत्नाकर क्या था, शारंगदेव जी ने उसमें क्या लिखा है, ये सब विक्रमी पुस्तक मालिका की बंदिशें हैं, और सारी चीजें हम उनको बहुत इंटरेस्टिंग वे में बताते हैं जिससे कि उनकी उनकी रुचि बनी रहे और वो थ्योरी में भी बहुत अच्छे से पढ़ सके।
0: और ऑटोबायोग्राफीज भी, कितने लोगों के ऑटोबायोग्राफीज है?
1: कई बार बच्चे बोलते हैं कि मैम क्या पता, हमें पता ही नहीं उनके नाम, हम क्यों पढ़े, लेकिन फिर हम उनको बड़े प्यार से समझाते हैं कि देखो जो विद्वान हुए वो आपको तो पता होने चाहिए कितना स्ट्रगल करके उन्होंने क्या हासिल किया, तो तब उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ते हैं। आजकल के जो है वो तो उनको समझ में आता है, वही हरिप्रसाद चौरसिया जी हैं या पंडित जसराज जी हैं या भीमसेन जोशी जी हैं जिनको उन्होंने देखा है, उनके बारे में सुना है, लेकिन जो बहुत पुराने हैं उसमें उनको थोड़ा सा कम इंटरेस्ट आता है, लेकिन उनको हम यही बताते हैं कि आपको इनसे प्रेरणा लेना है
0: जी,
1: सिर्फ ये नहीं है कि लिखना है और बस एग्जाम देना है, कि कहीं ना कहीं आपके जहन में रह जाएगा कि उन्होंने उसके लिए कितना संघर्ष किया और उस जमाने में जब ज्यादा साधन नहीं थे और उन्होंने कितना रिग्रस रियाज करके और वो सब अचीव किया जी।
0: और आजकल भी ये जमाने में मतलब 21st सेंचुरी में भी अभी राहुल देशपांडे जी है, महेश कार्य जी है, उनकी वजह से ये जो यूथ है वो फिर से शास्त्रीय संगीत की तरफ बढ़ चुके हैं, ऐसा आपको लग रहा है?
1: बिल्कुल सही कहा आपने। राहुल देशपांडे जी का मैं देखती हूँ कि वो वसंतराव देशपांडे जी के नाती हैं, लेकिन उसके बाद भी संगीत, मुझे ऐसा लगता है कि संगीत में जो हमें अच्छा लगता है वो हमारा हमें करना ही चाहिए। तो आज वो फिल्मी गीत भी गा रहे हैं और क्लासिकल भी कर रहे हैं, सो यूथ बहुत पसंद कर रहे हैं, क्योंकि यूथ आज के जो युवा हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो केवल क्लासिकल की तरफ नहीं है। हम सिर्फ क्लासिकल से बांध के नहीं रख सकते, बहुत मतलब बहुत थोड़े लोग मिलेंगे जो केवल क्लासिकल करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन जैसे हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ माया सोमैया में अभी 40+ स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो सीख रहे हैं क्लासिकल बिकॉज उनको डिग्री लेना है, लेकिन उनका सबका इंटरेस्ट देखा जाए तो वो मुंबई में एक ही लक्ष्य लेके आए हैं, प्लेबैक सिंगिंग। तो ये हम देख रहे हैं, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हर तरह का गाना आना चाहिए, लेकिन शास्त्रीय संगीत का जो बेस है वो तो होना ही चाहिए। कुछ भी गाए वो तभी अच्छा लगेगा जब आपको नॉलेज है, प्रॉपर श्रुतियों का ज्ञान है, तो आप बखूबी किसी भी तरह का

0: लेकिन वो जो शास्त्रीय संगीत को जो ग्लैमर है, मतलब जो फिल्मी म्यूजिक को जो ग्लैमर है, वो शास्त्रीय संगीत को नहीं है। ये जो है इसके लिए वो, ये जो यूथ है वो इसलिए अट्रैक्ट होते हैं ज्यादातर फिल्मी संगीत की तरफ, जैसे आपने कहा।
1: बराबर बराबर। मेरा यही इंटेंशन है तेजस्विनी जी, कि शास्त्रीय संगीत से जो लोग डरते हैं
0: हाँ
1: या जो ऐसा समझते हैं कि ये बहुत डिफिकल्ट है या बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, उनकी टेंडेंसी दूर करना। मैंने इसीलिए 2017 से शुरू किया मेरा यूट्यूब चैनल, बिकॉज वो टाइम में पेंडेमिक में काफ़ी, मतलब हमारे क्लासेस ऑनलाइन होते
0: ऑनलाइन
1: हैं,
0: होते थे।
1: हमने सोचा भी नहीं था कभी कि हम ऑनलाइन सिखा पाएंगे शास्त्रीय संगीत, लेकिन वो टाइम ने ही ये सब सिखा दिया। और उसके बाद जो बंदिशें मैं सिखाती थी, स्टूडेंट्स बोलते थे कि मैम वो हम ढूंढते, क्योंकि आजकल तो गूगल का ज़माना है, कोई भी चीज़ हमने सिखाई वो गूगल करते हैं। सो मैडम नहीं, वो जो आप सिखाते हैं वो हमें यूट्यूब पर नहीं मिलता है, सो प्लीज़ आप डालिए। तो मैंने उनको कहा कि मुझसे अच्छा काम बहुत लोगों ने किया है, लगे नहीं आप जो बंदिशें सिखाते हैं वो नहीं मिल रही। सो ऐसे स्टूडेंट्स के ही बोलने की वजह से मेरा यूट्यूब चैनल मैंने शुरू किया पेंडेमिक में, और बहुत अच्छा मुझे उसका रिस्पांस मिला। कई लोग यही कहने लगे कि मैम जिनको गुरु नहीं मिल पाते अच्छे, और इस वजह से हम सीख पा रहे हैं। तो वहाँ पर मैंने कुछ रैप बेस्ड वीडियोस बनाए हैं, और उनके ऊपर बॉलीवुड म्यूजिक में जो सॉन्ग्स आए हैं उनकी भी बात।
0: जरूर इसके बारे में आपसे अधिक जानकारी लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद फिर जुड़ते हैं सुनीता, डॉक्टर सुनीता गंगरडे मैडम से। आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM।

0: वेलकम आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक, यू आर लिसनिंग टू आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और आज हम डॉक्टर सुनीता गंगारेड्डी मैडम से बातचीत करें। मैम अभी पढ़ते हैं आपकी PhD की ओर। PhD में आपने बहुत सारे रिसर्च पेपर, मतलब उनके सब्जेक्ट भी बहुत अलग से हैं, उनके बारे में थोड़ा बताइए। और वो म्यूजिक थेरेपी का जो आपने हमारे कॉलेज में भी जो सेशन दिया, जो हम सारे अध्यापकों ने उसको बहुत सराहा, तो उसके बारे में वो आपको वो आइडिया आया कहाँ से कि कैसे लिंक करेंगे? आपने तो मेंशन किया पढ़ाते पढ़ाते वो आइडिया आपको आ गया, तो उसके बारे में हम दर्शकों को थोड़ा सा बताते हैं।
1: बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से वो मेरे माइंड में आया था, वो मैं जरूर शेयर करूंगी। एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल, जिसको SIES कॉलेज एंशेंड ने कोलैबोरेशन से ऑर्गेनाइज किया था, और प्लेस नहीं मिल रही थी उनको प्रॉपर। सो हमारे यहाँ सुमेया विद्या विहार ने उनको प्लेस अवेलेबल करवाई थी। तो हमारे यहाँ तब उस समय में सुंदराजन सर के सर थे हमारे यहाँ, तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया कि मैडम आप इसमें रिसर्च पेपर डालिए, इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस हो रहा है। सो जैसे कि मैंने बताया, मेरा शुरू से इंटरेस्ट रहा था म्यूजिक थेरेपी की वजह के ऊपर, तो मैंने उसमें एक रिसर्च पेपर डाला। और जब उसको प्रेजेंट करने का टाइम आया तो भी मैंने सोचा कि सब लोग ऐसे ही अपने अपने पेपर रीड करते हैं, लेकिन उसमें क्या मजा है? हम अगर परफॉर्मिंग एरिया से हैं तो परफॉर्मिंग आर्ट से, तो हमें कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से करना चाहिए। तो मैंने उसी रिसर्च पेपर को प्रैक्टिकली, और जो मैंने लिखा था उसमें, उसको मैंने प्रैक्टिकली गा के बताया। और वो साउथ इंडियन कम्युनिटी के सारे ऑडियंस थे। तो लेकिन ना उन्होंने उसको अप्रिशिएट किया, और वहीं से मुझे पहला कॉन्फिडेंस आया कि ये बहुत अच्छा है। और वो करके मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन मिला, बिकॉज हम सब कुछ अपने लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा लगा कि बिना औषधि के अगर हम किसी को थोड़ा भी रिलैक्स फील करवा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और तब से मैंने शुरू किया, और आज मुझे लग रहा है कम से कम 10 से 12 जगह पर मेरे ये म्यूजिक थेरेपी के सेशन हो चुके हैं।
0: मैंने भी सुना है, मतलब प्लांट्स ग्रो होते हैं, ये जो पेशेंट्स हैं हॉस्पिटल्स में ज्यादा करके म्यूजिक डाला जाता है ताकि वो सुन सके, और उसमें वो ज्यादा रिकवर भी ज्यादा फास्ट होते हैं। तो ये म्यूजिक थेरेपी एक अच्छा, इट वर्क्स इन डेली लाइफ, वो भी सुन। अगर सुबह में भी हम जब गाना सुनते हैं तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है, वो भी है। तो आप थोड़ा म्यूजिक थेरेपी का जो आपका सेशन है उसका थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन हमें देंगे?
1: जरूर जरूर। म्यूजिक थेरेपी में मैंने फिर जब मुझे इंटरेस्ट आया तो मैंने थोड़ा सर्च किया कि ऑलरेडी कितना काम हुआ है इसके ऊपर। तो मुझे शशांक कट्टी जी, जो मुंबई में म्यूजिक थेरेपी पर बहुत काम कर रहे हैं, उनका मुझे बहुत अच्छा लगा। और उन्हीं से थोड़ा सा मैंने उनके वीडियोस के थ्रू ही मैंने थोड़ा सा रेफरेंस लिया, और फिर मैंने ये फाइंड आउट किया कि कौन से प्रॉब्लम्स के ऊपर कौन से राग इफेक्टिव हैं और उन रागों का क्या प्रभाव है। सो मैंने कुछ कॉमन डिसऑर्डर चूज किए और उसके ऊपर इफेक्टिव रागों को चूज किया, और फिर उसको इंटरेस्टिंग तरीके से, बिकॉज हम अपनी पसंद के अनुसार संगीत सुने तो वो ज़्यादा काम करेगा। सो उसकी एक क्लासिकल बंदिश, अगर आप मराठी सॉन्ग सुनना चाहते हैं तो मराठी गाने, भावगीत, नाट्य गीत, और कुछ फिल्मी गीत, तो हर एक की पसंद के अनुसार मैं वो गाने बताती हूँ। और जब मैं उनको गा कर बताती हूँ और से हम इस प्रोग्राम को लेते हैं तो ऑडियंस भी बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि उसमें उनका भी कंट्रीब्यूशन हो जाता है। तो इस तरीके से ये सेशन सोचा ही नहीं था और शुरू हो गए, और बहुत जगह पर होते जा रहे हैं, और लोगों को पसंद आ रहा है मेरा काम।
0: तो थोड़ा वापस से गाना सुनना चाहेंगे
1: सर?
0: तो इसका रिलेटेबल थोड़ा, मतलब शास्त्रीय संगीत और फिल्मी म्यूजिक।
1: जैसे मैं म्यूजिक थेरेपी में स्ट्रेस के लिए रागे मन की बात करती हूँ, तो आजकल स्ट्रेस सभी को है। सो सबसे पहले थोड़ा सा स्वरूप बताती हूँ, क्योंकि ऑडियंस में से कई लोग जानकार भी होते हैं और कई लोगों को कुछ भी नहीं पता होता है। सो छोटे छोटे फ्रेजेस लेकर मैं ऑडियंस को उसमें गाने के लिए बोलती हूँ। जैसे यमन राग की अगर हम बात करें

तो जिनको कुछ नहीं भी पता है वो ऐसे छोटे छोटे फ्रेजेस को इजीली गा लेते हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है कि अरे हम गा पा रहे हैं, है ना। और उसके बाद कोई एक बंदिश लेती है।

0: और एक क्वेश्चन, अभी अभी हम एंड पे है इंटरव्यू के, तो वो पूछना चाहूंगी कि आजकल के बच्चे बहुत के, मैं ये नहीं करना चाहूंगी क्योंकि इट इज नॉट देयर फॉल्ट कि वो ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं टेलीविजन के जो रियलिटी शोज है उनके ऊपर, क्योंकि उनके मतलब छोटे से समय में उनको नेम फेम मनी सब मिल जाता है. तो आप रियलिटी शो के जज भी रह चुके होंगे या फिर कहीं पे भी आप प्रतियोगिता में जाते हैं तो आप परीक्षक के रूप में जाते होंगे, तो बच्चों को आपको क्या मतलब एडवाइस देना है, क्या मार्गदर्शन करना है कि रियलिटी शो को आपको किस तरह से देखना चाहिए?
1: रियलिटी शोज से डेफिनेटली बहुत क्लासिकल संगीत का रुझान बढ़ा है, क्योंकि जब बच्चे क्लासिकल बेस्ड सॉन्ग्स गाते हैं तो जैसे फिल्मों में शास्त्रीय संगीत आने के कारण शास्त्रीय संगीत सीखने बहुत लोग आते हैं, जो मेरा विषय भी है PhD का. तो इसी तरीके से रियलिटी शोज में देख के बच्चों को बहुत लगता है अरे मैं भी उनकी तरह गाऊं, इसलिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं थोड़ा. लेकिन वो उतना सा मुझे लगता है सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि जो थोड़े समय के लिए जो एक फेम मिलता है वो थोड़े समय बाद ही ख़त्म भी हो जाता है. अगर आपको लंबे समय तक टिकना है तो आपको प्रॉपर गुरु के साथ, गुरु के मार्गदर्शन में सालों तक सीखना होता है. मैं कहूँगी कम से कम 5-10 साल तो
0: जी
1: आपको उसका प्रॉपर गाइडेंस लेना होता है किसी गुरु, और उसके बाद भी प्रयास करना होता है. क्योंकि सीखना एक तरीके से सीख लिया, लेकिन जब तक हम उसको डाइजेस्ट नहीं करेंगे, जिस तरीके से हम कहते खाना खाना ही सफिशेंट नहीं है, उसको डाइजेस्ट करना इम्पॉर्टेंट है. इसी तरीके से गुरु ने सिखा दिया है, लेकिन जब तक हम उसको घंटों बैठ के रियाज नहीं करेंगे तब तक चीज़ें खुद से नहीं निकलेंगी. क्योंकि राग है ना, जब तक वो आत्मसात नहीं हो जाता
0: जी
1: तब तक हम उसका इम्प्रोवाइजेशन बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे. तो बच्चों में वो कमी है आजकल, उनको लगता है कि नहीं सब कुछ इंस्टेंट मिल जाए हमें, है ना. तो बहुत अच्छी कई प्रतिभाएं होती हैं जिनके पास इतना अच्छा सब कुछ है, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं, रियाज नहीं करते हैं, गुरु के पास नहीं जाते हैं, तो वो ज़्यादा लंबे समय तक
0: नहीं रह
1: नहीं टिकता है. तो मेरा यही एक गाइडेंस है कि प्रॉपर गुरु के पास शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए.
0: अंत में ये पूछना चाहूंगी कि आजकल लाइव कॉन्सर्ट्स ज्यादा होते हैं, मतलब इंडिया में भी होते हैं बाहर भी होते हैं, और लाइव कॉन्सर्ट्स में ज्यादा आशा जी बहुत मतलब उन्होंने ज्यादा लाइव कॉन्सर्ट्स को ये किया है, तो आपका लाइव कॉन्सर्ट मतलब कैसी तैयारी करना चाहिए अगर एक परफॉर्मर है, अगर लाइव कॉन्सर्ट में जैसे शंकर महादेवन जी का भी आपने जिक्र
1: जी
0: किया, वो भी इतना मतलब अच्छे से वो लाइव कॉन्सर्ट को मैनेज करना भी एक कला होती है.
1: जी
0: तो आप लाइव कॉन्सर्ट्स को अगर एक लाइव परफॉर्मर बनना है तो उसके लिए स्टेज परफॉर्मर बनना है तो बच्चों ने कैसी तैयारी करनी
1: सबसे
0: चाहिए?
1: पहले तो अगर आप संगीत में रुचि रखते हैं और आप एज ए परफॉर्मर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी हर तरह से होनी चाहिए. बिकॉज ऑडियंस कहाँ, कैसे ऑडियंस है, एक आर्टिस्ट को मुझे लगता है कि हर तरह से तैयार रहना
0: जी
1: चाहिए. कि अगर परवीन सुल्ताना जी का मुझे एक बार याद है, एक कॉन्सर्ट मैंने अटेंड किया था, कि मैं एक चीज़ गाती हूँ और दर्शकों की नज़रों से समझ जाती हूँ कि दर्शक
0: हाँ

0: क्लासिकल आर्टिस्ट हैं, लेकिन धीरे से वो टर्न हो जाते हैं, फिर कुछ थोड़ा सा झप ताल या रूपक ताल की कोई बंदिश ले लेंगे बहुत बड़ा ख्याल डिटेलिंग ना करते हुए, और फिर वो ठुमरी या दादरा पे आ जाती हैं, या जैसे वो गाती हैं हमें तुमसे प्यार कितना। तो ऐसे ही राशिद खान जी का भी मैंने देखा कि राशिद खान जी भी हमेशा देख लेते थे कि ऑडियंस कैसी
1: है,
0: प्रॉपर क्लासिकल सुनने वाली ऑडियंस है तो वो 2 घंटा भी गाएंगे क्लासिकल, लेकिन जब उनको पता है कि नहीं ऑडियंस और आर्टिस्ट वही खड़ा होता है जो समझ जाए कि हाँ ये ऑडियंस क्या चाहती है, इनका टेस्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि कॉन्सर्ट करने के लिए हमें उस तरीके की तैयारी रखनी चाहिए कि ऑडियंस के मुताबिक क्या। वैसे तो कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत किसी को रिझाने के लिए नहीं है, ये तो ईश्वर की आराधना के लिए है। और आजकल का लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे टाइम बदल रहा है कि आज हम सिर्फ उसी भावना को लेकर नहीं चल सकते, बिकॉज हमें अगर कॉन्सर्ट करना है तो हमें थोड़ा सा इस बात के लिए अवेयर रहना चाहिए कि ऑडियंस क्या चाहता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है।
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर सुनीता जी फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन आचार्य 90 FM। और अभी हम इस इंटरव्यू का आई थिंक एंड आपके सुरीले गानों से करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू से समथिंग।
0: मैं एक फिल्मी गाना सुना देती हूँ थोड़ा सा, पहले में जो मुझे बहुत पसंद है।

शाम रोक लई रोक लई रोक लई ढाई शाम रोक लई और चक मुख चूम लई मुख चूम लई मुख चूम लई सर से मोरी चुनरी गई।

दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी, दधकी भरी मटकी लई जात रही डगर बीच। आहट सुन, आहट सुन, आहट सुन, जियरा गयो धड़क धड़क।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछली बार हमने आपसे दोबारा मिलने का वादा किया था, भाई अपना वादा निभाने के लिए हमें तो आना ही पड़ा। कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड ना? अर्ज किया है आज का ये पल आपके नाम, इस शो का हर लम्हा भी आप ही के नाम है। इस पल के इंतजार में न जाने कब से हम बेकरार थे, आपके आने से ऑडियंस जी इस बेचैनी को मिला कुछ करार है। सोमवार की दोपहर में आप, शुक्रवार की शाम में भी आप, हर खाने के स्वाद में आप और हर स्वाद के जायके में भी आप। खाना बनाने की सोचूं तो ख्यालों में आप, गाना गुनगुनाने लगूं तो हर सुर में आप, सुरों की महफिल में आप और महफिल की रौनक भी आप, महफिल की शमा भी आप और उस शमा के परवाने भी आप। स्वागत है आपका इस जायकेदार महफिल में, आपके आने से तसल्ली पाई इस साहिल ने, आपके आने से बदले हमारे अंदाज और इस खुशी से खुश हुए सारे अल्फाज। हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी एक स्वीट डिश है। इसे बनाने के लिए जो मेन इंग्रेडिएंट यूज होने वाला है वो एक फेमस सब्जी और आयुर्वेदिक औषधि भी है। इस सब्जी से पेठा भी बनता है। इसमें कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज्यादा होती है। मेंटल स्ट्रेस को कम करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। हमारी इम्यूनिटी का स्ट्रॉन्ग बनाने की शक्ति इस सब्जी में है। इस अनोखी सब्जी को कुष्मांड के नाम से भी जाना जाता है। वैसे नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सफेद पेठा मींस एश गॉड की। मराठी में इसे कोहड़ा के नाम से जाना जाता है। सफेद पेठा दिखने में गोलाकार और भारी वजन वाला होता है। इसका बाहरी हिस्सा कड़क और अंदरूनी हिस्सा जूसी होता है। पूरी तरह से पकने के बाद इस पर सफेद पाउडर टाइप परख दिखाई देती है। इस हेल्दी पेठा की सब्जी से आज हम बनाने वाले हैं पेठे का हलवा। इसे काशी हलवा नाम से भी जाना जाता है। कद्दूकस किया हुआ पेठा, देसी घी, चीनी और खोया का परफेक्ट कॉम्बिनेशन करके हम बनाने जा रहे हैं पेठे का हलवा। पेठे का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सफेद पेठा अप्रोक्सीमेटली 1 किलो, चीनी अप्रोक्सीमेटली 1 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 5-6 चम्मच, हरी इलायची 4-5, केसर के धागे 7 या 8, मावा या खोया 1/2 कप, मिल्क मसाला 2 चम्मच, मिक्स ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता सब 2-2, मुनक्का 10-12 और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। सबसे पहले पेठा को अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका छिलका और बीज हटाना है। छिलका और बीज हटाने के बाद उसे कद्दूकस करना है। कद्दूकस करना है मींस उसके बारीक टुकड़े कर लीजिए या तो फिर उसे ग्रेट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हरी इलायची का छिलका हटाकर उसका फाइन पाउडर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती हूँ, साबुत इलायची को 1 या 2 चम्मच शक्कर के साथ मिक्सर में घुमाने से इलायची का पाउडर एकदम आसानी से बनता है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। फिर हम केसर के धागों को 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर साइड में रख देंगे अप्रोक्सीमेटली 10 मिनट के लिए। ऐसा करने से केसर उस दूध में अच्छे से घुल जाएगा और इस केसरिया रंग के दूध से पेठा हलवा बनाने की खूबसूरती में गजब का निखार आ जाएगा। अब आगे सुनते हैं। सारे ड्राई फ्रूट्स को लगभग 15 मिनट के लिए गर्म पानी में सोक करने रख दीजिए।
15 मिनट के बाद हमें छुरी की मदद से उन ड्राई फ्रूट्स के पतले टुकड़े करने हैं। माय गॉड, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम पेठा हलवा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले मोटे बेस वाली एक कढ़ाई लीजिए। उस कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालकर गैस को ऑन कीजिए। फिर उसमें डालिए कद्दूकस किया हुआ या बारीक टुकड़े किया हुआ पेठा। हमें इसे लो फ्लेम पर पकाना है। लगभग 10 मिनट तक इसे चलाते रहिए, अदरवाइज ये एक तरफ से ही पक जाएगा। 10-15 मिनट के बाद उस पेठे का कच्चापन दूर होगा। तब हम उसमें डालेंगे चीनी, केसर और ढेर सारा प्यार। फिर इस मिश्रण को मिक्स करते हुए अच्छे से पकाएं। चीनी पिघलने के बाद ये मिश्रण थोड़ा ढीला हो जाएगा। पेठा का मॉइस्चर और चीनी का गीलापन सूखना चाहिए और ये मिश्रण गाढ़ा बनना चाहिए। इस स्टेज तक पहुंचने के लिए हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। लगभग 8 से 10 मिनट के बाद ये मिश्रण सूख जाएगा। फिर हम इसमें ऐड करेंगे खोया यानी मावा और थोड़ी इलायची पाउडर। फिर सारे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कीजिए। इसे अच्छे से मिक्स कीजिए। लगभग 3-4 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए। अब हमें इसे डेकोरेट करना है। इसके लिए हम लेंगे एक सुंदर सा बर्तन और उस बर्तन में इस गर्मा गर्म पेठा के हलवा को ट्रांसफर करेंगे। आप चाहे तो रोज पेटल्स से इसे डेकोरेट कर सकते हैं या फिर काजू और बादाम के पतले टुकड़ों से फूलों वाला डिजाइन भी बना सकते हैं। फिर सबसे पहले भगवान को इस पेठा के हलवा का भोग लगा ही दीजिए। ऐसा करने से इसकी सात्विकता बढ़ेगी। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस पेठा हलवा की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है ट्रेडिशनल पेठा का हलवा। सुनहरी सी एक रेसिपी जो है एकदम ट्रेडिशनल। पेठे का हलवा मींस यमी और न्यूट्रिशनल। ऑडियंस जी, किचन में कीजिए एंट्री और दिखाइए अपना जलवा। ऐसा करने के लिए आप जरूर बनाइए पेठे का हलवा। पेठे को कहते हैं आयुर्वेद में औषधि। इलायची पाउडर डालकर इसे बनाया सुगंधी। पेठा घी और शक्कर का सुनहरा ये मिलाप। और साथ में सुनिए नए पुराने कुछ म्यूजिकल आलाप। खाने और गाने का ये मेल, मतलब सेहत और मनोरंजन का सुंदर सा खेल। खाना और गाना, यही है हमारे इस शो की जान। पारंपरिक खाना खाकर बढ़ाइए अपने देश का मान। सोमवार और शुक्रवार को रहूंगी मैं हाजिर, क्योंकि स्वाद का जायका शो के हम सब है मुसाफिर। मैं हूँ आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। भाई, पेठे का हलवा हमने बना लिया है, अब बारी आती है हमारी अगली रेसिपी की। एक खट्टा मीठा फल है जिसका आकार लगभग बेर जितना या उससे थोड़ा सा छोटा होता है। इसका पौधा कांटेदार और झाड़ियों वाला होता है। जब ये फल कच्चा होता है तब हरे रंग का दिखता है, पूरी तरह से पकने के बाद ये काले रंग का दिखता है। विटामिन सी से भरा ये फल एंटीऑक्सीडेंट माना जाता है। हमारे किसान भाई इसे अक्सर अपने खेतों की मेंढों पर एज अ फेंस लगाते हैं। ऐसा करने से जंगली जानवर खेतों में नहीं घुसते। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ करौंदे की। मराठी में इसे करवंद के नाम से जाना जाता है। इस करवंद से अचार, चटनी, जैम और जेली बनाई जाती है। आज के शो में हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को हम बनाने वाले हैं और इसका टेस्ट एकदम चटपटा है। इस चटनी को आप सिंपल दाल चावल या सीधे रोटी पर लगाकर एज अ कंफर्ट फूड एंजॉय कर सकते हैं। करौंदे की चटनी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: हरा करौंदा या करवंद 1/2 किलो, हरी मिर्ची के टुकड़े 3-4, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, ब्राउन गुड़ या चीनी 1 कटोरी, हल्दी 1 चम्मच, धनिया पाउडर 1 चम्मच, बड़ी सौफ पाउडर 1 चम्मच, जीरा 1/2 चम्मच, राई मींस सरसों 1/2 चम्मच, हींग 1 चुटकी, कटा हुआ हरा धनिया 2 चम्मच, मेथी दाना पाउडर 1/2 चम्मच, तेल 4 चम्मच अप्रोक्सीमेटली, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। सबसे पहले आप एक साफ बर्तन में पानी लीजिए, उसे अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच नमक को मिक्स करके साइड में रखिए। जब नमक घुल जाए तब उस सॉल्टी वाटर में सारे करौंदे लगभग 15 मिनट तक भिगो कर रख दीजिए। वैसे ये मेथड आप बाकी फल और सब्जियों के लिए भी यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से उन फल या सब्जियों में से कीड़े वगैरह निकल जाएंगे। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। फिर उन करौंदा मींस करवंद को एक कपड़े से पोंछ लीजिए। उसके बाद हरे करौंदे के हम 4 टुकड़े करने वाले हैं और अंदर का बीज हटाने वाले हैं। उसके बाद आप लीजिए एक मोटे बेस वाली कढ़ाई, उस कढ़ाई में डालिए थोड़ा सा तेल। इस तेल को हम धीमी आंच पर गरम करेंगे। अगर आप नारियल का तेल यूज करें तो इसका फ्लेवर एनहांस होगा। फिर उसमें वघार या तड़का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले उस तेल में डालिए सरसों। सरसों के बाद हम डालेंगे जीरा,
ये सीक्वेंस आप फॉलो करते रहिए, पहले सरसों फिर जीरा। सरसों और जीरा को चटकने दीजिए। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक, ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब तड़के में डालिए खुशबूदार हींग। हींग डालने के बाद नंबर आता है मेथी पाउडर और हरी मिर्ची का। हरी मिर्ची को अच्छे से फ्राई कीजिए। आप अपनी पसंद के मुताबिक हरी मिर्ची की मात्रा को बढ़ा सकते हैं या फिर घटा भी सकते हैं। अब बारी आती है हल्दी पाउडर और नमक की। फिर हम उस मिश्रण में ऐड करेंगे सौंफ पाउडर और धनिया पाउडर। उसके बाद हम डालेंगे करौंदे मींस करवंद के टुकड़े। इस मिश्रण को एक चम्मच की मदद से आप अच्छे से मिक्स कीजिए। अब बारी आती है थोड़ी सी मिठास की मींस अब हम शक्कर को ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर आप चाहें तो शक्कर के बदले ब्राउन गुड़ को यूज कर सकते हैं। ऐसा करने से ये चटनी ज्यादा पौष्टिक बनेगी। फिर इस मिश्रण पर एक ढक्कन रखिए। इसे लो फ्लेम पर हम लगभग 5 मिनट के लिए पकाएंगे। ऐसा करने से गुड़ या शक्कर अच्छे से मेल्ट होगा। 5 मिनट होने के बाद इसमें लगभग 1 या 1.5 कप पानी ऐड कीजिए। फिर उस पर ढक्कन लगाकर लगभग 15 मिनट के लिए उसे धीमी आंच पर पकाना है। 15 मिनट के बाद आप गैस को बंद कर दीजिए और पकी हुई चटनी को उसी तरह ढक्कन लगाकर छोड़ दीजिए। ऐसा करने से चटनी का टेक्सचर और गाढ़ा होगा। जब ये चटनी पूरी तरह से ठंडी हो जाए तब इसे कांच के बर्तन में ट्रांसफर कीजिए। उसका रीजन तो आपको पता ही है, खट्टी चीजों को धातु के बर्तन में रखने से उस धातु की मींस मेटल की क्वालिटी खराब हो जाती है, इसलिए बी केयरफुल। अब हम इसे थोड़ा डेकोरेट करते हैं। इस करौंदा मींस करवंद की चटनी को डेकोरेट करने आप इस पर छिड़किए बारीक कटा हुआ हरा धनिया। और अगर आपको तीखा खाना कुछ ज्यादा ही अच्छा लगता है तो उस पर मींस उस चटनी के मिश्रण पर आप रखिए एक हरी मिर्ची। दैट्स इट। इस प्रकार हमारी खट्टी मीठी टेस्ट वाली करौंदा या करवंद की चटनी हो गई है तैयार। और इसे टेस्ट करने घर के लोग कब से बैठे हैं एकदम बेकरार। तो जनाब, इस गर्मी के सीजन को थोड़ा आसान बनाने के लिए आप करौंदा की चटनी को जरूर बनाइए और इसे अपनों के साथ मिल बांट कर मजे से खाइए। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। ताजा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। वैसे ये करौंदा या करवंद की चटनी को आप एयर टाइट डब्बे में भरकर 3-4 दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर ही सकते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे ये करौंदा चटनी इतनी टेस्टी होती है कि एकदम फटाफट बनती है और गटागट खाकर खत्म भी हो जाती है। इस करौंदा चटनी की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है अपनी सी करौंदा की चटनी। खेतों की मेंढों पर पंछियों का घरौंदा, खट्टी मीठी चटनी बनाने आप लाए करौंदा। झाड़ियों में मिलने वाला अनोखा सा ये फल, इसके सेवन से मिलेगा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का हल। करौंदे से बनाई मजेदार चटनी, खट्टे मीठे टेस्ट से लगती बिल्कुल अपनी। खट्टे और मीठे स्वाद का ये संगम, मुश्किल से रखा मैंने अपने मन पर संयम। करौंदा का मतलब मराठी में करवंद, खाओ देसी खाना और सेहत बनाओ बुलंद। पारंपरिक खाने को क्यों करे नजरअंदाज, इसे खाकर करे नए ट्रेंड का आगाज। खट्टे मीठे फल में डाला मिर्ची मसाला, एक बार खाकर तो देखिए आधी टेंशन कशला। संस्कृति और स्वाद का स्वादिष्ट मेल मींस सेहत और मनोरंजन का सुपर हिट खेल। मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार, आपसे होने वाली हर मुलाकात करती मुझे बेकरार। आचार्य 90 FM है योर ओन रेडियो, बातें होंगी आपसे फ्रॉम अवर स्टूडियो।
स्टूडियो से रेडियो तक होने वाला सफर, मतलब सेहत और म्यूजिक का जुगलबंदी ऑफर। दिल से करती हूँ आपका धन्यवाद। अच्छा लगता है मुझे आपसे करना संवाद। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा।

जाने वाली इस सुपर कूल सब्जी में शक्कर, देसी घी और ड्राई फ्रूट्स डालकर हमने ये स्वीट डिश बनाई। इस काशी हलवा के नाम से भी फेमस रेसिपी को हमने एकदम शिद्दत से पकाया। इस प्रकार हमने एकदम मधुर अंदाज में अपने प्यारे ऑडियंस से दोस्ती निभाई। फिर बारी आई करौंदे की चटनी की। ये खट्टी मीठी चटनी है। मराठी में इसे करवंदाची चटनी के नाम से जाना जाता है। कच्चा करौंदा, चीनी और कुछ मसालों को इस्तेमाल करके हमने ये ट्रेडिशनल रेसिपी बनाई। सिंपल दाल चावल या फिर गरम रोटी के साथ इसे खाना मींस कंफर्ट फूड वाला मूड निभाने जैसा है। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना है तो वो भी हमें बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ही दीजिए, क्योंकि जल्दी ही रिमझिम बारिश का मौसम आएगा और लजीज खाने के साथ सुहाने गाने गुनगुनाने का आपका मन जरूर करेगा। इसलिए आचार्य 90 FM से जुड़े रहना बेहद जरूरी है। अर्ज किया है, एक खत लिखा था बादलों को, भीगा भीगा जवाब आया अभी। ठंडी छाव लेकर आए बादल, लेकिन आपकी याद ने ऑडियंस जी हमें भिगो दिया तभी। सोमवार और शुक्रवार का मनचाहा इंतजार, मतलब धूप में आए जैसे बारिश से बहार। आप ही हो ऑडियंस जी आचार्य 90 FM का परिवार। खुश नसीब है वो जिसे मिले आपका इकरार। टेस्टी व्यंजनों के साथ सुरीली सी तान मींस अपनापन जताने का मिल गया मान। अब कर ही दीजिए आचार्य 90 FM को सब्सक्राइब और दोस्ती की व्याख्या को जरूर कीजिए डिस्क्राइब। ज्यादा बातें करने का अब नहीं है टाइम। दोबारा मिलने आऊंगी और करूंगी रेसिपीज और सॉन्ग्स को कंबाइन। आपकी मौजूदगी से ये शो बना ब्राइट। दुनिया में रोशन हो हमारी संस्कृति की लाइट। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

अजय रेन एनडी एफएम के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? सब चंगा? भाई सबको ठीक होना ही चाहिए, क्योंकि अजय रेन एनडी एफएम के ऑडियंस हमारे खास दोस्त हैं और दोस्तों का ख्याल रखना मतलब स्वाद का जायका बखूबी निभाना है। अर्ज किया है, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे कांटों से भी आई खुशबू, हम करते हैं ऑडियंस जी आपसे ढेर सारा प्यार, आपके आने से आई स्वाद का जायका शो पर बहार। बारिश की बौछार से भीगा धरती का दामन, हमारे ऑडियंस जी की मौजूदगी से महका आचार्य 90 एफएम का चमन। भाई आम वाला खास मौसम तो फिलहाल चल ही रहा है, आम के साथ मार्केट में लीची भी पधारी है। हम यूजुअली आम और लीची को अलग अलग खाते हैं, राइट? लेकिन हमारी आज की रेसिपी इन दोनों को मिलाकर बनने वाली है। आम के शौकीनों के लिए गर्मियों का सीजन मींस मैंगो की वैरायटीज को आजमाने का मौसम होता है। रिफ्रेशिंग मैंगो ड्रिंक से लेकर नए नए स्नैक्स और टेस्टी मिठाइयाँ, भाई लिस्ट तो बढ़ती ही रहेगी। हमारी आज की रेसिपी मैंगो और लीची का फ्यूजन है, जिसके पहले निवाले में ही आप इसके दीवाने हो जाएंगे। लंच या डिनर पार्टी में परोसने के लिए ये एक शानदार मिठाई है और इस शानदार मिठाई का नाम है मैंगो स्टफ लीची। मैंगो स्टफ लीची बनाने में बेहद आसान है और आपकी स्वीट क्रेविंग को ये तुरंत शांत कर देगी। तो चलिए अब हम इसकी रेसिपी को सुनते हैं। मैंगो स्टफ लीची बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पूरी तरह से पकी हुई लाल लीची 15 या 20, गाढ़ा दूध आधा लीटर, फिर हमें चाहिए नींबू का रस 2 चम्मच, मिश्री पाउडर मींस खड़ी साखर का पाउडर 4 चम्मच, ताजे और पके हुए आम 2, इलायची पाउडर आधा चम्मच, सोक्ड पिस्ता 5 से 6, केसर के धागे 7-8, और एक जरूरी इंग्रेडिएंट मतलब ढेर सारा प्यार भी चाहिए, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में जरूर उतरेंगी। रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप आम को पानी में भिगोकर रख दीजिए। लगभग 1 से 2 घंटे के लिए हमें आम को पानी में भिगोना है। ऐसा करने से आम के अंदर की हीट थोड़ी सी रिड्यूस होगी। लगभग 1 घंटे के बाद आप आम का छिलका हटाइए, फिर आम की गुठली को भी हटाइए। इस मैंगो पल्प मींस आम के गूदे को चर्नर की मदद से स्मूथ बनाइए। ऐसा करने से मैंगो पल्प में से गुठलियां निकल जाएंगी। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। मोटे बेस वाले एक बर्तन में हमें दूध को उबालना है। जैसे ही दूध उबलने लगे हम उसमें नींबू का रस डालेंगे। अब 1 चम्मच की मदद से नींबू के रस को दूध में अच्छे से मिक्स कीजिए। ऐसा करने से दूध फट जाएगा और छेना मींस ताजा पनीर तैयार हो जाएगा। जब उस फटे हुए दूध से सॉलिड और लिक्विड पार्ट सेपरेट हो जाए, तब एक साफ और सूती कपड़े से हमें उसे छान लेना है। आप चाहे तो छलनी की मदद से छेना और मट्ठा को अलग कर सकते हैं। उसके बाद

छेना मीन्स ताजे बने हुए पनीर से आप पानी को निचोड़ लीजिए। बचे हुए ताजे छेना को अपनी हथेलियों से गूंथकर एकदम सॉफ्ट बनाइए। माय गॉड, इतनी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुनिए।

ब्रेक के बाद हमारे प्यारे ऑडियंस का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्मूथ मैंगो पल्प और सॉफ्ट ताजा ताजा छेना अब हो गया है तैयार और मैंगो स्टफ लीची बनाने हम नहीं कर सकते और ज्यादा इंतजार। अब सॉफ्ट छेना मीन्स गूंथ कर रखे हुए पनीर में हम ऐड करेंगे मैंगो पल्प। मिश्री मीन्स खड़ी शक्कर को भी हम ऐड करेंगे। खड़ी शक्कर पाउडर फॉर्म में है, इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। साथ ही इसमें इलायची पाउडर और ढेर सारा प्यार भी ऐड कीजिए। ऐसा करने से इसका स्वाद ज्यादा निखर आएगा। अब हमें क्या करना है तो जनाब, अब हम लेंगे हमारी लीची। सारी लीची को अच्छे से धो लीजिए। फिर हमें लीची का छिलका हटाना है। उसके बाद क्या करें? तो भाई, लीची को सिर्फ एक चीरा मीन्स कट लगाकर उसमें से हमें धीरे से बीज निकालना है। ध्यान रहे कि लीची कहीं फट ना जाए, अदरवाइज उसके अंदर स्टफिंग को भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब सारी लीची को हमने एक कट लगाकर उसके अंदर से बीज तो निकाल दिए हैं। अब आप लीजिए एक पाइपिंग बैग और उस पाइपिंग बैग में आप मैंगो पल्प और छेना वाला मिश्रण भर दीजिए। यहाँ पर आप चाहे तो अपनी उंगलियों से भी लीची के अंदर स्टफिंग भर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते समय आपको सावधानी बरतनी होगी। अब एक एक करके सारी लीची के अंदर स्टफिंग भर दीजिए। अब आगे क्या करें? तो भाई जरा रुकिए, पहले आप सुनिए हमारे शो का अगला गाना। तब तक मैं यूं गई और यूं आई।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। स्टफ्ड मैंगो लीची अब ऑलमोस्ट तैयार है, लेकिन लेकिन लेकिन इसे डेकोरेट करना फिलहाल बाकी है। अब आप लीजिए एक सुंदर सी प्लेट और उस प्लेट में सारी स्टफ लीची को अगल बगल में रख दीजिए। फिर आप सोक्ड पिस्ता के पतले टुकड़ों को उस पे सजाइए, साथ ही केसर के धागों को भी बड़ी नजाकत से डालिए। आप चाहे तो इसे कुछ समय के लिए फ्रिज में रख के ठंडा कर सकते हैं। भाई मुझ में उतना पेशेंस तो है नहीं, इसलिए मैं तो इसे बनते ही अपने मुंह में स्वाहा करूंगी। आहा, क्या बात, भाई मजा आ गया। वैसे क्या आप जानते हैं कि लीची में मौजूद विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इससे हमारे बाल और स्किन को पोषण मिलता है। तो अपनी ब्यूटी रेजिम में आप लीची को जरूर शामिल कीजिए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। वैसे हमारे बिहार के अलावा झारखंड, उत्तराखंड, बंगाल और असम में भी लीची उगाई जाती है। तो झटपट मार्केट हो आइए और स्टफ्ड मैंगो लीची बनाने के लिए रसीली लीची को अपने घर ले ही आइए। वैसे बिहार की शाही लीची तो वर्ल्ड फेमस है, तो क्यों ना इस वर्ल्ड फेमस लीची से हम स्वीट और टैंगी स्टफ्ड मैंगो लीची को बनाएं और अपने साथ अपनों को भी खिलाएं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर अन्न और जल समाप्त हो गया था, जिससे हर तरफ हाहाकार मच गया। तब सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर माता पार्वती की स्तुति की, उसमें देवता भी शामिल थे। जगत कल्याण के लिए माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। भगवान शिव जी ने भी माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी और मिली हुई भिक्षा के माध्यम से धरती पर सभी जीवों में अन्न का बंटवारा किया। इसलिए भोजन के पहले और अंत में माता अन्नपूर्णा का स्मरण करना बेहद शुभ माना जाता है। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। इसलिए हमें अन्न का आदर करना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतना ही खाना अपनी थाली में ले और एक्स्ट्रा खाना अपनों के साथ मिल बांटकर खुशी से खाएं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है लीची मैंगो और छेना। लीची उगाने में अव्वल है बिहार, इसका टेस्ट अनोखा सा, खुश हुआ संसार। मैंगो के साथ जब मिल गया छेना, तब चहक सी उठी मेरे मन की मैना। मिश्री की मौजूदगी ने बढ़ाई इसकी मिठास, पिस्ता और केसर से मिठाई बनी खास। जरूर खाकर देखिए ये लाजवाब स्वीट, इसका टेस्ट है ऐसा कि गर्मी को कर दे बीट। लीची के उत्पादन में बिहार है अग्रेसर, और मिठाई को सजाने साथ आया केसर। स्टफ्ड मैंगो लीची का लाजवाब स्वाद जुबान के साथ ही आपके दिल को भी रहेगा याद। अपनों संग बांटो होममेड मिठाई, अपनापन जताकर करो दोस्ती की कमाई। आचार्य 90 FM means your own radio. स्वाद का जायका निभाती हूँ from our studio. मिलती रहूंगी आपसे हर सोमवार और शुक्रवार। स्वाद का जायका लाएगा आपके किचन में बहार। हमें इंतजार है आपकी रेसिपीज का, सुन रहे हैं ना ऑडियंस। सराहना होगी आपकी भी जब मिलेगा हमें आपका गाइडेंस। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। इस रेसिपी का नाम है लीची पुदीना शिकंजी। शिकंजी एक फेमस और रिफ्रेशिंग भारतीय पेय है। ये ऑर्डिनरी नींबू पानी से अलग होता है क्योंकि इसमें नींबू और चीनी के साथ साथ कई खास मसालों का इस्तेमाल किया जाता है जो इसे खट्टा मीठा और चटपटा बनाते हैं। यूपी में गर्मियों के सीजन में गर्म हवा मींस लू से बचने के लिए और इंस्टेंट एनर्जी को पाने के लिए शिकंजी को एज अ देसी एनर्जी ड्रिंक इस्तेमाल किया जाता है। शिकंजी पीने से डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम दूर होती है, साथ ही हमारी बॉडी की इम्यूनिटी भी बढ़ती है। इसे ज्यादातर दोपहर के टाइम में पीना अच्छा माना जाता है। तो चलिए अब हम लीची पुदीना शिकंजी बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। लीची पुदीना शिकंजी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फ्रेश और पूरी तरह से पकी हुई लीची 8 से 10, पानी 2 ग्लास, पीसी हुई चीनी 2 बड़े चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच या स्वादानुसार, भुना हुआ जीरा पाउडर 1/2 चम्मच, नींबू 1, पुदीना 10-12 पत्ते, बर्फ 6 टुकड़े, ये ऑप्शनल है। अब हम इसे बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लीची को अच्छे से धो लेंगे, फिर हम लीची का छिलका और अंदर का बीज भी हटाएंगे। उसके बाद पुदीना के पत्तों को भी साफ पानी से धो लेना है। अब आगे सुनिए। एक ब्लेंडर लीजिए, उस ब्लेंडर में हम डालेंगे छील कर रखी हुई लीची। फिर उस लीची में हम ऐड करेंगे पुदीना के कुछ पत्ते। इससे क्या होगा कि पुदीना का रिफ्रेशिंग टेस्ट इस शिकंजी में स्वाद का जायका ऐड करेगा। अब इसमें डालिए थोड़ा सा पानी। आप चाहें तो इसमें बर्फ के कुछ टुकड़े भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपको ठंडा चाहिए तो। वैसे मुझे पर्सनली बिना बर्फ वाले मॉकटेल्स ज्यादा अच्छे लगते हैं। वैसे वो कौन सा मॉकटेल है जिसे आप किसी भी सीजन में पीने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं? मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा और आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। अब हम आगे की रेसिपी को सुनते हैं। ब्लेंडर में डाली चीजों को हमें अब मिक्स करना है, इसलिए आप इसका ढक्कन लगाकर उसे अच्छे से ब्लेंड कीजिए। अब ब्लेंडर का ढक्कन खोलिए, फिर उसमें बचा हुआ पानी, काला नमक और नींबू का रस, इन सब चीजों को डालिए। साथ ही भुना जीरा पाउडर भी ऐड कीजिए। इसे भी हमें अच्छे से मिक्स करना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। अगर हमने सारा पानी शुरुआत में ही ब्लेंडर में डालकर बाकी चीजों के साथ मिक्स किया तो हमारी लीची पुदीना शिकंजी अच्छे से मिक्स नहीं होगी। पानी एक तरफ और लीची पुदीना के टुकड़े दूसरी तरफ, ऐसी टाइटैनिक स्टाइल शिकंजी हमें उस ब्लेंडर में दिखाई देगी। इसलिए बी केयरफुल, हड़बड़ी में ऐसा कुछ भी ना करें जिससे हमारा आसान सा काम मुश्किल में बदल जाए। अब हमारी लीची पुदीना शिकंजी सर्व करने के लिए तैयार है और इसका लुत्फ उठाने हम कब से बेकरार है। लेकिन लेकिन लेकिन अभी डेकोरेशन वाला पार्ट बाकी है। इसके लिए हमें चाहिए 2 लंबे वाले कांच के ग्लास। एक प्लेट में आप लीजिए 1/2 चम्मच नमक और 1 चम्मच शक्कर। फिर क्या करें? तो भाई उन ग्लास के किनारों को थोड़ा पानी लगाकर उन्हें उस नमक और शक्कर वाली प्लेट पर पलट दीजिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों

क्रिस्टल लेयर बनेगी जो हमारी लीची पुदीना शिकंजी को प्रोफेशनल लुक देगी। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। अब हम उन ग्लास को सीधा खड़ा करेंगे, फिर एकदम संभाल कर एक नजाकत से तैयार शिकंजी को उन ग्लास में डालना है। इसे और सुंदर बनाने के लिए उस शिकंजी पर पुदीना के 2-3 पत्ते रख दीजिए। क्या बात। फिर अपने मोबाइल कैमरा में इस लीची पुदीना शिकंजी की छवि को कैप्चर कीजिए। उसके बाद अपनों के साथ बैठकर एकदम आराम से इस लीची पुदीना शिकंजी का लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस लीची पुदीना शिकंजी के लिए पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है तसल्ली वाली शिकंजी। झुलसती सी गर्मी में हमें देने तसल्ली, घर में बननी ही चाहिए लीची पुदीना शिकंजी। लीची और पुदीना का ये रिफ्रेशिंग कॉम्बिनेशन, मतलब शिकंजी के रूप में गर्मी भगाने वाला इनोवेशन। तेज गर्मी को जब देनी हो मात, तब हम थामेंगे देसी नुस्खे का हाथ। आसान से देसी नुस्खे हमें देंगे जोश, लीची पुदीना शिकंजी पीकर होंगे आप मदहोश। हमारे देसी खाने में है सेहत से जुड़े कई राज। आचार्य 90 FM के ऑडियंस जी, क्या आप सुन ले हम कुछ साज़?

आपका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। भाई मौसम को बदलते देर नहीं लगती, झुलसती गर्मी वाला मौसम बस अब बदलने ही वाला है और फिर रेनी सीजन स्पेशल रेसिपीज को हमें बनाना है। मौसम के अलग अलग रूपों को एंजॉय करने के लिए लोकल सीजनल और ट्रेडिशनल खाना हमें जरूर खाना चाहिए और उस टेस्टी खाने के साथ कुछ सुरीले साज भी बजने ही चाहिए। इसलिए आचार्य 90 FM इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज शुरुआत में हमने बनाई स्टफ्ड मैंगो लीची, जिसमें छेना मींस फ्रेश पनीर और मैंगो पल्प को लीची के अंदर भरकर हमने एक लजीज मिठाई बनाई। इस स्टफ्ड मैंगो लीची का रूप निखारने के लिए हमने उस पर पिस्ता और केसर वाला डेकोरेशन भी किया। किया कि नहीं? जी जरूर किया। उसके बाद हमने बनाई यूपी की फेमस शिकंजी, जिसका नाम था लीची पुदीना शिकंजी। रसीली लीची और पुदीना की परफेक्ट जोड़ी से हमने इस गर्मी के मौसम को थोड़ा सा इजी बनाने की कामयाब कोशिश की है कि नहीं? अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज हैं, तो हमें जरूर लिखिए और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें जरूर बताइए। हर अंत में एक नई शुरुआत छिपी होती है और हर नई शुरुआत से एक कहानी शुरू होती है। कहानी और रेसिपी का ये संगम अनोखा, मतलब स्वाद और जायके का मिलाप मींस सलोखा। बेसब्री से कीजिए आप सोमवार और शुक्रवार का इंतजार। आपके संग रेसिपीज को शेयर करने हम हैं एकदम बेकरार। खाने और गाने का ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि आप और हम हैं लजीज खाने के शौकीन और हमारे दोबारा मिलने का मुझे है पूरा यकीन। अगली बार कुछ और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लेकर हम आपसे दोबारा मिलेंगे। अब समय हो गया है आपसे विदा लेने का, आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। आरजे भारतीय सीमा की तरफ से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर लेके आया हूँ कहानियों की गुल्लक। आज हम सुनने वाले एक ऐसी कहानी जिसमें तीन अलग अलग किरदार है, और ये कहानी है प्री इंडिपेंडेंस एरा की, यानी आजादी के पहले की। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों, आजादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हमने आजादी के लिए कितना बलिदान दिया है, हमारे पूर्वजों ने कितने शहीद हुए हैं, कितनों ने जेल काटी है, कितनों ने ना जाने कितनी वेदनाएं सही हैं। तो उन्हीं कहानियों में से, उन्हीं गाथाओं में से एक कहानी मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। तीन रंग एक खून, एक आजादी की दास्तान। पूरा हिंदुस्तान अंग्रेजों के जुल्म के नीचे दबा हुआ था। गलियों में खौफ था, खेतों में भूख थी, और जवानों के दिल में एक ही आग जल रही थी, आजादी। हर शहर में पुलिस की सीटियां गूंजती थी और हर चौक पर गोरा सिपाही खड़ा होता था। किसी के हाथ में लाठी थी, किसी के कंधे पर बंदूक। लेकिन उस अंधेरे के दौर में भी कुछ लोग दिया बनके जल रहे थे, और उन्हीं दियों में तीन नाम सबसे अलग चमकते थे, आनंद, अशफाक और अमित। तीन दोस्त, तीन अलग कहानियां, तीन अलग मजहब और घर आने, लेकिन एक ही सपना, हिंदुस्तान आजाद होना चाहिए। और इसी सपने के लिए उन्होंने अपनी जवानी, अपनी मोहब्बत, अपना घर और आखिर में अपनी जान तक त्याग दी। ये कहानी है दोस्तों की, मोहब्बत की, बलिदान की, और उस मिट्टी की जिसके लिए लोग हंसते हंसते शहीद हो गए। बनारस की सुबह हमेशा से अलग होती थी। गंगा घाट पे मंदिरों की घंटियां बजती थी, कहीं अजान की आवाज थी, कहीं से वंदे मातरम धीरे धीरे हवा में ठहरता था। 1942 का साल था। सुबह के 5 बजे आनंद घाट की सीढ़ियों पर बैठा था। हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में सपने। सफेद कुर्ता, पतला सा शरीर और चेहरे पर अजीब सा सुकून। तभी पीछे से आवाज आई, अरे कवि बाबू, देश आजाद करोगे या घाट पे शायरियां ही लिखते रहोगे? आनंद मुस्कुरा दिया, अशफाक तू सुबह सुबह बकवास की फैक्ट्री खोल देता है। अशफाक हंस पड़ा।

टेंशन से भरा हुआ, क्योंकि घर की जिम्मेदारियां उसके कांधों पर जो थी। अमित के पिता बीमार ही रहते थे, घर में माँ और दो छोटे भाई थे, इसलिए अमित बचपन से ही वक्त से पहले बड़ा हो गया था। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा। अरे नेताजी, आज का प्लान बताओ। अमित ने धीरे से कहा, कल रात पुलिस ने दो लड़कों को पकड़ लिया है। अंग्रेजों को शक है कि यहाँ क्रांतिकारी पैम्पलेट बांटे जा रहे हैं। आनंद का चेहरा सीरियस हो गया। नाम रघु और करीम, तीनों चुप हो गए, क्योंकि बनारस में अब सिर्फ दोस्ती या मोहब्बत नहीं चल रही थी, अब हर दिन मौत पास खड़ी रहती थी। हेमा, उसका नाम सुनते ही आनंद की सांसें बढ़ जाती थी। हेमा बनारस की एक स्कूल मास्टर की बेटी थी, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत समझदार। उसकी आंखों में अजीब सी हिम्मत थी। वो लड़कियों को पढ़ाती थी और चुपचाप क्रांतिकारियों के लिए संदेश भी पहुंचाती थी। आनंद पहली बार उसे लाइब्रेरी में मिला था। वो हरिश्चंद्र की किताब ढूंढ रही थी। आनंद ने किताब बढ़ाते हुए कहा था, ये लो। हेमा ने किताब ली और पूछा, आपने पढ़ी है? आनंद ने मुस्कुराकर जवाब दिया, 3 बार।

हमें मिलना कम कर देना चाहिए, हेमा ने कहा। आनंद का दिल धक से रह गया। क्यों? पुलिस नजर रख रही है, डर लगता है। हेमा ने उसकी आंखों में देखा। अपने लिए नहीं डर लगता, पर तुम्हारे लिए जरूर लगता है, आनंद धीरे से बोला। अगर आजादी के रास्ते में मोहब्बत आ गई तो? हेमा मुस्कुराई। तो मोहब्बत भी कुर्बान कर देंगे और क्या। उस रात आनंद ने डायरी में लिखा, कुछ लोग जिंदगी में प्यार बन के आते हैं और कुछ लोग वतन बन जाते हैं। अशफाक जब 9 साल का था तब उसके अब्बा की मौत हो चुकी थी। तब से उसकी दुनिया सिर्फ उसकी अम्मी थी। उसकी अम्मी सिलाई करती थी, दिन भर कपड़े सिलती, तब जाके घर चलता। अशफाक रात को अक्सर उठकर देखता उसकी अम्मी धीमी रोशनी में आंखों पर कपड़ा रखकर सुई में धागा डाल रही होती। एक दिन अशफाक ने कहा, अम्मी मैं पढ़ाई छोड़ देता हूं। उसकी अम्मी गुस्से में बोली, एक थप्पड़ दूंगी, तुम पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे, लेकिन पैसे? अशफाक ने कहा, तुम्हारे अब्बा का सपना था मेरा बेटा अफसर बने, अशफाक की अम्मी ने जवाब दिया। अशफाक चुप हो गया, लेकिन वक्त बदलता गया और अफसर बनने का सपना क्रांतिकारी बनने में बदल गया। एक रात अशफाक देर से घर आया, कपड़ों पर खून था। उसकी अम्मी घबरा गई, या अल्लाह क्या हुआ? अशफाक ने झूठ बोला, कुछ नहीं अम्मी, गिर गया था, लेकिन माँ सब समझ जाती है। उसने धीरे से पूछा, अंग्रेजों से लड़ रहे हो ना? अशफाक चुप रहा। उसकी अम्मी की आंखें भर गई। एक बार तुम्हारे अब्बा को खोया है अशफाक, तुम्हें नहीं खोना चाहती। अशफाक ने मां का हाथ पकड़ा, अम्मी अगर हम नहीं लड़ेंगे तो ये जुल्म कब खत्म होगा? हम कैसे चैन से जी पाएंगे? हम कैसे खुले आसमान में सांसें ले पाएंगे? हम कैसे अपनी जरूरतों का सामान आसानी से ले पाएंगे? हम कैसे आसानी से घूम सकेंगे, कहीं आ जा सकेंगे? अशफाक जब ये कह रहा था तो उसकी अम्मी रो पड़ी और रोते रोते कहा, तुम बिल्कुल अपने अब्बा जैसे हो। अमित की दुनिया अलग थी। उसके घर में हर वक्त परेशानी रहती थी। माँ राशन का हिसाब करती, छोटे भाई फीस के लिए रोते, पिता खांसी में खून थूकते। एक दिन माँ ने कहा, बेटा कोई नौकरी देख ले। अमित चुप रहा। उसके पास एक तरफ घर था और दूसरी तरफ देश। उस रात आनंद ने पूछा, तू टेंशन में लग रहा है? अमित ने बस एक बात कही, हर आदमी को आजादी चाहिए, लेकिन घर वाले रोटी भी मांगते हैं। अशफाक ने उसका कांधा पकड़ा, तू अकेला नहीं है अमित। अमित की आंखें भर गई, क्योंकि दोस्ती कभी कभी घर से भी ज्यादा सहारा बन जाती है।

स्वागत है दोस्तों आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे तीन दोस्तों की कहानी, अमित, आनंद और अशफाक। कैसे तीनों के घर पे अलग अलग जिम्मेदारियां थी। आनंद अपनी मोहब्बत में गुम था, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल में, उसके जहन में, उसके दिमाग में देश चल रहा था। वही दूसरी ओर अशफाक है जिसके फादर नहीं है, और उसके लिए अगर सब कुछ जो है तो वो उसकी माँ है। तीसरी तरफ अमित है जिसके घर पे उसके पिताजी अक्सर बीमार रहते हैं, भाइयों के लिए स्कूल देखना है और घर में ज़रूरतों का सामान भी ज़्यादा तरीके से नहीं होता। तो तीन दोस्त तीन अलग अलग कहानियाँ जी रहे थे, तीन अलग अलग जिंदगी जी रहे थे, पर इन तीन दोस्तों में एक चीज़ कॉमन थी, वो एक सपना, वो एक आज़ादी का सपना। तो चलिए सुनते हैं आज़ादी के लिए अब इन तीन दोस्तों ने क्या किया। अगस्त 1942, महात्मा गांधी ने आवाज उठाई, अंग्रेजों भारत छोड़ो। पूरा देश जल उठा। रेलवे स्टेशन पर नारे लगने लगे, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद। बनारस भी उबल रहा था। तीनों दोस्त अब खुले आंदोलन में शामिल हो गए, पैम्फलेट बांटने लगे, गुप्त मीटिंग्स करने लगे। पुलिस की मूवमेंट देखना हर दिन खतरा बढ़ रहा था। एक रात अमित ने कहा, कल ट्रेजरी ऑफिस के सामने प्रोटेस्ट है। अशफाक हंस पड़ा, मतलब कल लाठी भी पड़ेगी। आनंद बोला, पड़ेगी तो साथ में पड़ेगी। तीनों हंस दिए, उन्हें क्या पता था ये हंसी धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ रही है। अगले दिन बनारस की सड़कें भर चुकी थी, हजारों लोग, महिलाएं, बच्चे, स्टूडेंट्स, सबके हाथ में तिरंगा। आनंद जोर जोर से चिल्ला रहा था, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तभी गोरा ऑफिसर आया और उनपे चिल्लाया, लेकिन भीड़ नहीं हटी। और अगले ही पल लाठी चार्ज, चीखे गूंज उठी, लोग चिल्लाने लगे, लोग भागने लगे। एक सिपाही ने एक बूढ़े आदमी को मारा। अशफाक का खून खोल उठा, उसने सिपाही को धक्का दे दिया। अमित ने आनंद को खींचकर साइड किया, लेकिन तभी एक लाठी आनंद के सिर पर लगी, खून बहने लगा। हेमा दूर से सब देख रही थी, वो भागकर आनंद तक पहुंची। आनंद बेहोश हो चुका था। उस रात हेमा ने आनंद के सर पर पट्टी बांधते हुए पूछा, तुम पागल हो? आनंद धीरे से हंस पड़ा, हां, मर जाते तो? हेमा ने सवाल किया। आनंद ने उसका हाथ पकड़ा, तो याद रखना, किसी ने तुमसे बहुत मोहब्बत की थी। और ये सुनते ही हेमा रो पड़ी। हर आंदोलन में एक गद्दार होता था, बनारस में भी था। किसी ने पुलिस को क्रांतिकारियों के नाम बता दिए, एक एक करके लोग उठाए जाने लगे। एक रात अमित भागते हुए आया, पुलिस को हमारे अड्डे का पता चल गया है, तीनों तुरंत वहां से निकलो। लेकिन तभी गोलियों की आवाज गूंजी, पुलिस पहुंच चुकी थी। सब भागने लगे, अशफाक पीछे रह गया। एक सिपाही ने उस पर बंदूक तानी, तभी आनंद उसके सामने आ गया, भागो अशफाक, गोली चली। आनंद बच गया, लेकिन उसके कंधे को छू गई गोली। तीनों मुश्किल से बच निकले। उस रात पहली बार तीनों को महसूस हुआ, मौत अब बहुत पास आ चुकी है। हेमा के पिता को आनंद और उसके क्रांतिकारी होने का पता चल गया था। उन्होंने गुस्से में कहा, तुम उस लड़के से नहीं मिलोगी। हेमा ने पूछा, क्यों? क्योंकि वो जिंदा नहीं बचेगा हेमा। लेकिन हेमा ने उस वक्त जवाब दिया, जो देश के लिए जीता है उससे प्यार करना गुनाह नहीं है पिताजी। उसके पिता ने हेमा को थप्पड़ जड़ दिया, लेकिन हेमा चुप नहीं रही। वो उस रात आनंद से दोबारा मिली और उसने कहा, आनंद, शायद घर वाले मेरी शादी कहीं और कर दें,

आनंद कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर मैं लौटकर ना आया तो? हेमा की सांसें रुक गई। ऐसी बात मत करो आनंद, आनंद ने धीरे से कहा। क्रांति में लोग कहानियां नहीं, लाशें बनकर लौटते हैं। हेमा ने उसकी होठों पर उंगली रख दी। तुम लौटोगे, लेकिन दोनों जानते थे शायद ये झूठ है। एक रेड में अमित पकड़ा गया, पुलिस उसके घसीटकर जेल ले गई। उसके घर में मातम सा छा गया। मां पुलिस स्टेशन के बाहर रोती रही, मेरा बेटा निर्दोष है, मेरा बेटा निर्दोष है। लेकिन अंग्रेजों को इंसानियत से मतलब नहीं था। जेल में अमित को पीटा गया, नाम बताओ, किसके कहने पर काम करते हो? लेकिन अमित चुप रहा। एक गोरा ऑफिसर ने उसके मुंह पर पानी फेंका, तुम लोग कभी नहीं जीतोगे। अमित खून थूकते हुए हंस पड़ा, फिर इतना डरते क्यों हो हमसे? ऑफिसर ने उसे और मारा। बाहर आनंद और अशफाक अमित को छुड़ाने का प्लान बना रहे थे, लेकिन अमित ने जेल के अंदर ही फैसला कर लिया था, वो टूटेगा नहीं चाहे जान क्यों ना चली जाए। बनारस में क्रांतिकारी एक्टिविटीज अब और ज्यादा तेज हो गई थी। आनंद अंडरग्राउंड काम कर रहा था और अशफाक बॉम्ब बनाने वाले ग्रुप के कांटेक्ट में आ गया था। अमित जेल से छूटकर और ज्यादा खतरनाक बन चुका था। अब तीनों दोस्त सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे, वो अंग्रेजों के लिए नाइटमेयर बन चुके थे। एक दिन अशफाक ने हंसकर कहा, अगर हम बच गए ना तो आजादी के बाद साथ में दुकान खोलेंगे। अमित हंसा, तू हिसाब रखेगा? नहीं, मैं ग्राहकों से लड़ूंगा। तीनों जोर से हंस पड़े, लेकिन हंसी के पीछे सच छुपा था। उनमें से किसी को यकीन नहीं था कि वो जिंदा बचेंगे, पर वो हमेशा जिंदा दिल रहना जानते थे, हमेशा हंसना जानते थे, हमेशा अपने देश के लिए जान देने के लिए खड़े रहते थे। उन तीनों के दिल में, उन तीनों के जहन में महज एक ही सपना था, एक ही मिशन था, और वो था आजादी।

ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों आचार्य 90 FM में। आप सुन रहे थे कहानियों की गुल्लक और इसमें कहानी चल रही थी हमारी तीन दोस्तों की। जैसे कि पहले हिस्से में आपने सुना कि कैसे तीन दोस्त तीन अलग कहानियां तीन अलग जिंदगियां जी रहे थे, लेकिन तीनों का मकसद एक ही था, आजादी। और अब धीरे धीरे वो आजादी इस तरह बढ़ चुकी थी कि आनंद, अमित और अशफाक को सिवाय आजादी के दूसरा कुछ नजर नहीं आ रहा था। और वो तीनों अपने अपने तरीके से प्लान बनाने लगे थे, प्लान जिससे देश को आजादी मिल सके, युवाओं के दिल में आजादी के लिए जोश जग उठे। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी किस मोड़ पर जाएगी। बनारस में ब्रिटिश ट्रेन आने वाली

क्रांतिकारियों ने प्लान बनाया, ट्रेन को उड़ाना है। ये मिशन बहुत डेंजरस था और इस मिशन के लिए तीन नाम चुने गए थे, आनंद, अशफाक और अमित। रात को तीनों घाट पर मिले, चांद आधा था, हवा में अजीब सा सन्नाटा था। आनंद ने धीरे से पूछा, डर लग रहा है? अशफाक बोला, मरने से नहीं। अमित ने पूछा, तो? अशफाक ने आसमान देखा, बस अम्मी अकेली रह जाएगी। सब चुप हो गए। फिर आनंद बोला, हिमा। अमित ने उसका कांधा दबाया और फिर तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ही बात थी, अगर हम गिरे तो हिंदुस्तान उठना चाहिए। रात के 2 बजे ट्रेन पटरियों पर दौड़ रही थी। तीनों ने एक्सप्लोसिव लगा दिए, लेकिन किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, गोलियां चलने लगी, भागो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। अशफाक ने ट्रिगर एक्टिवेट किया, एक्सप्लोशन हुआ, ट्रेन के डब्बे हवा में उड़ गए। ब्रिटिश एम्यूनिशन जल उठा, लेकिन उसी वक्त एक गोली अशफाक के सीने में लगी। अशफाक, आनंद उसकी तरफ भागा। अशफाक जमीन पर गिर चुका था। उसने मुश्किल से कहा, अम्मी से कहना बेटा डरा नहीं। उसकी सांसें रुक गई। आनंद चीख पड़ा। तभी अमित को भी गोली लगी, वो घुटनों पर गिर गया। आनंद भाग। आनंद कह रहा था नहीं। अमित हंसा, देश पहले, आनंद आनंद भाग। और उसका सर एक तरफ झुक गया। आनंद की आंखों के सामने दोनों दोस्त मर चुके थे। पुलिस पास आ रही थी। आनंद ने तिरंगा उठाया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। गोलियों की बारिश हुई और आनंद भी मिट्टी पर गिर गया। उसके हाथ में तिरंगा था, आंखों में हेमा थी और होठों पर आजादी। 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हो गया। हर गली में जश्न था, तिरंगा लहरा था, तिरंगा लहरा रहा था। लेकिन बनारस के एक कोने में 3 माएं रो रही थी। अशफाक की अम्मी ने उसकी तस्वीर छाती से लगा कर रखी थी। अमित के छोटे भाई फौज में भर्ती हो गए थे और हेमा ने तो कभी शादी ही नहीं की। वो हर साल 15 अगस्त को घाट पर जाती, 3 दिए जलाती और धीरे से कहती, तुम तीनों जीत गए। हवा धीरे से चलती, जैसे कहीं दूर से 3 आवाजें आ रही हो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो दोस्तों, इसी के साथ होता है इस कहानी का अंत। हम सुन रहे थे 3 रंग 1 खून 1 आजादी की दास्तां, जिसमें हमने सुना, हमने जाना कि
कैसे तीन दोस्तों के लिए सिर्फ आजाद ही सब कुछ था, उसके अलावा कुछ नहीं। हमारे बड़े बुजुर्ग सही कहते हैं कि आजादी के लिए जो उस समय लोग थे वो बहुत पागल थे, जो अपनी जान देने के लिए, जो अपने वतन पे मर मिटने के लिए तैयार रहता है वो एक पागल ही होता है। वतन से प्यार करने वाले की प्यार की सीमा, प्यार की हद इस कदर सारी हदें पार कर देती है कि फिर उस व्यक्ति के लिए कोई हद नहीं रहती। और इसी हद को पार कर चुके थे तीन दोस्त, अमन, अशफाक और अमित। और तीनों ने बिना हिचकिचाए, बिना कोई संकोच किए, बिना किसी डर के हंसकर शहीद हो गए, हंसकर मौत को स्वीकारा। ना ब्रिटिशों के आगे झुके, ना उनकी गोलियों के आगे झुके, जमीन पर गिर गए, छातियों पर गोलियां खाते रहे, पर दिल में एक ही सपना जिंदा रखे, आजादी। और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों हम सुन रहे थे ये कहानी है, एंड आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। प्री इंडिपेंडेंस एरा में ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो न जाने किसी शहर में, किसी गली में, किसी गांव में, हर एक जगह से न जाने सैकड़ों हजारों कहानियां उस समय बनी होंगी। कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी कहानियां, कुछ ऐसे पहलू हमेशा लाते रहे और आपके दिल को छूते रहे। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर विदा लेता हूँ आपसे। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।

आचार्य 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस जी? ऑल गुड ना भाई? सब अच्छा होना ही चाहिए क्योंकि सावन का महीना शुरू हो चुका है और सुहाना सा सावन अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आया है। वैसे त्योहार और खुशियाँ ये दो बातें आपस में जुड़ी हुई हैं और हमारे आचार्य 90 FM के इस शानदार स्टूडियो में हमने सावन स्पेशल सेलिब्रेशन को ऑलरेडी शुरू कर दिया है। अर्ज किया है, सावन की लड़ी ने मिटाई धरती की तृष्णा, जन्माष्टमी के अवसर पर प्रकट हुए कृष्णा, इस बार हम लगाएंगे भगवान श्री कृष्ण को भोग, मनाएंगे जन्माष्टमी धनिया पंजीरी बनाने का योग, नटखट कान्हा के मुखड़े का ग्लो जैसे सुनहरी सी धूप और साथ में रेनबो, हेल्दी खाना खाकर पाए हम स्वीकृति, खाने से ही जुड़ी हमारी भारतीय संस्कृति, आचार्य 90 FM को अब कर भी दीजिए चूज, यहाँ पर मिलेगी आपको एंटरटेनमेंट ह्यूज। ऑडियंस जी, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है धनिया पंजीरी। धनिया पंजीरी मुख्य रूप से श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान को चढ़ाया जाने वाला एक पवित्र प्रसाद है। ये भुने हुए धनिया पाउडर, देसी घी, मखाना, ड्राई फ्रूट्स और चीनी के बूरे से बनता है। ये एकदम टेस्टी होने के साथ साथ पाचन और सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। तो भाई, जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर हम इसे बना ही लेते हैं। धनिया पंजीरी बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: साबुत धनिया 1 कटोरी, देसी घी 1/2 कटोरी, चीनी का बूरा या पीसी हुई चीनी 3/4 कटोरी, काजू और बादाम 5-5, किशमिश 2 बड़े चम्मच, सूखा नारियल 1/2 अप्रोक्सीमेटली, मखाने 1/2 कटोरी, इलायची 4-5 और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। रेसिपी को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हम साबुत धनिया का पाउडर बनाएंगे। मिक्सर के जार में इसे डालकर हम धनिया का पाउडर बना लेते हैं। उसके बाद हम सूखे नारियल को कद्दूकस करेंगे। हमें अप्रोक्सीमेटली 2 बड़े चम्मच कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल चाहिए। फिर हमें इलायची का पाउडर बनाना है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, लगभग 2 चम्मच शक्कर के साथ इलायची डालकर हम मिक्सर में डालेंगे। ऐसा करने से एकदम आसानी से इलायची पाउडर तैयार हो जाएगी, है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? अब हम काजू और बादाम को भी टुकड़ों में काट लेंगे। चलिए, हमारी तैयारी तो हो गई, अब हम बढ़ते हैं धनिया पंजीरी की रेसिपी की ओर। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाली एक

कढ़ाई, उसमें हम डालेंगे एक चम्मच देसी घी। हमें धीमी आंच पर इसे गर्म करना है। उस गर्म घी में हम डालेंगे धनिया का पाउडर। इसे भी धीमी आंच पर हम लगभग 2-3 मिनट तक भूनेंगे। 2-3 मिनट के बाद उसमें से अच्छी खुशबू आने लगेगी। तब उस भुने हुए धनिया को हम एक बर्तन में निकालेंगे। फिर उसी कढ़ाई में हम सारे ड्राई फ्रूट्स को हल्का भून लेंगे। लगभग 2-3 मिनट तक हमें इन्हें चम्मच से चलाना है। इन्हें भी हम अलग से निकालेंगे। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने धनिया पाउडर और ड्राई फ्रूट्स को घी में डालकर भून लिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। बचे हुए घी को हम गरम करेंगे। उसमें मखाना डालकर हमें भूनना है। लगभग 3-4 मिनट तक हमें इसे चलाना है। फिर एक बड़ी सी प्लेट में हम सारे मखाना को रखेंगे। अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट के बाद ये ठंडे हो जाएंगे। फिर हम इन्हें डालेंगे मिक्सर के जार में। पल्स मोड पर मिक्सर चलाते हुए हमें इसे पीसना है। हमें इन मखाना को दरदरा मींस मोटा मोटा पीसना है। ध्यान रहे कि इसका फाइन पाउडर ना बने। अब हम लेंगे एक बड़ा बर्तन। सभी भुनी हुई सामग्री को हमें इसमें डालना है, मतलब धनिया पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, मखाना, ये सब। इसके साथ हम ऐड करेंगे इलायची पाउडर को। एक चम्मच की मदद से हमें इन सारी चीजों को मिक्स करना है। फिर इस मिश्रण में हम डालेंगे चीनी का पाउडर। इसे भी एकदम अच्छे से मिलाइए। अब हम इसमें मिलाएंगे ढेर सारा प्यार। इस प्रकार हमारे प्यारे ऑडियंस के मन की भावनाएं भी इसमें मिल गई हैं। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं भी मत जाइए। मैं यूं गई और यूं आई।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। हमारी धनिया पंजीरी अब हो गई है तैयार और इसे टेस्ट करने हमारे ऑडियंस जी हो रहे हैं कितने बेकरार। लेकिन आप जरा सुनिए तो, थोड़ा रुकिए तो। पहले हमारे नटखट कान्हा को इस धनिया पंजीरी का भोग तो लगाने दीजिए। इसके लिए हमें चाहिए एक प्यारी सी कटोरी। उस कटोरी में हम एकदम प्यार और सात्विक भाव से डालेंगे धनिया पंजीरी। फिर उसकी सात्विकता को और बढ़ाने के लिए हम उस पर रखेंगे छोटा सा तुलसी का दल। भाई वाह, इस धनिया पंजीरी की खूबसूरती तो देखते ही बनती है। अब हम इस धनिया पंजीरी का भोग हमारे नटखट कान्हा को लगाते हैं। उसके बाद क्या करें? तो भाई उसके बाद अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी धनिया पंजीरी का लुत्फ उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। क्या आप जानते हैं, ये धनिया पेट और पाचन तंत्र के लिए बहुत फायदेमंद होता है। धनिया पंजीरी में मौजूद ड्राई फ्रूट्स हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं और ड्राई फ्रूट से हमें पोषण भी मिलता है। वैसे व्रत के दौरान महसूस होने वाली कमजोरी को धनिया पंजीरी काफी हद तक दूर करती है ना इंटरेस्टिंग जानकारी। वैसे धनिया पंजीरी एक ट्रेडिशनल भारतीय प्रसाद है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से यूपी, विशेषकर ब्रज में हुई थी। वहाँ के प्राचीन धार्मिक और आयुर्वेदिक परंपराओं से ये धनिया पंजीरी की रेसिपी जुड़ी हुई है। भगवान लड्डू गोपाल मीन्स बाल कृष्ण को विशेष भोग के रूप में धनिया पंजीरी अर्पित की जाती है। जन्माष्टमी के समय हमारे प्यारे माखन चोर कान्हा को माखन मिश्री के साथ धनिया पंजीरी का प्रसाद चढ़ाना अनिवार्य माना जाता है। कहते हैं कि बारिश के मौसम में भगवान श्री कृष्ण जब अपने सारे सखाओं को लेकर गाय चराने ले जाते थे, तब यशोदा मैया उन्हें ऐसा पौष्टिक और ऊर्जावान खाना देती थी जो लंबे समय तक खराब ना हो। माँ चाहे जन्म देने वाली हो या फिर पाल पोसकर बड़ा करने वाली, माँ तो माँ ही है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस धनिया पंजीरी की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है माखन चोर का भोग। धनिया पंजीरी का लगाने भोग, धनिया और मेवे का किया उपयोग। पारंपरिक खाने से होंगे लाभ, इसके लिए थामिए आयुर्वेद का हाथ। माखन चोर को पसंद धनिया पंजीरी और तुलसी के बीज को कहते हैं मंजीरी। धनिया पंजीरी में डाला शक्कर का पाउडर, इसे खाकर हम फील करेंगे प्राउडर। ऐसा भोग का प्रसाद होता है हेल्दी, हमारी भारतीय संस्कृति है कितनी वेल्दी। इसमें ऐड किया हमने सूखा मेवा, नटखट कान्हा के लिए हमारी छोटी सी सेवा। शरारती कान्हा को कहते हैं नटखट। बना ही लीजिए धनिया पंजीरी अब एकदम फटाफट। हमारे कान्हा का हर रूप है अनोखा। आचार्य 90 FM मीन्स खुशियों का झरोखा। झरोखे में से निकला स्वाद का जायका। हमारे प्यारे ऑडियंस की खिदमत में हाजिर इस शो की नायिका। नायिका का नाम भारतीय सीमा। मिलेंगे एक ब्रेक के बाद, आप जाइए कहीं ना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। हमारी नेक्स्ट रेसिपी का नाम है गोपाल काला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दही हंडी के उत्सव के दौरान बनाया जाने वाला पवित्र और पारंपरिक प्रसाद, जिसे गोपाल काला नाम से जाना जाता है, उसे आज हम इस शो में बनाएंगे। गोपाल मीन्स श्री कृष्ण और काला मीन्स विभिन्न खाद्य पदार्थों का मिश्रण, जैसे कि दही, पोहा, खीरा और कुछ फल। ये एक हेल्दी रेसिपी है। अब हम इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग है, जिसे श्री कृष्ण और उनके बाल सखा मीन्स ग्वालों के प्रेम और

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम बढ़ते हैं अगली रेसिपी की ओर। हमारी नेक्स्ट रेसिपी का नाम है गोपाल काला। श्री कृष्ण जन्माष्टमी और दही हंडी के उत्सव के दौरान बनाया जाने वाला पवित्र और पारंपरिक प्रसाद, जिसे गोपाल काला नाम से जाना जाता है, उसे आज हम इस शो में बनाएंगे। गोपाल मीन्स श्री कृष्ण और काला मीन्स विभिन्न खाद्य पदार्थों का मिश्रण, जैसे कि दही, पोहा, खीरा और कुछ फल। ये एक हेल्दी रेसिपी है। अब हम इसके धार्मिक महत्व के बारे में जानकारी लेते हैं। ये भगवान श्री कृष्ण का प्रिय भोग है, जिसे श्री कृष्ण और उनके बाल सखा मीन्स ग्वालों के प्रेम और समानता का प्रतीक माना जाता है। इससे हमें सामूहिकता का संदेश मिलता है, क्योंकि वृंदावन के सारे सखा मिलकर अपनी अपनी पोटली से भोजन निकालकर एक साथ मिलाते थे, जिसे काला कहा गया है। हमारे महाराष्ट्र में दही हांडी फोड़ने के बाद प्रसाद के रूप में इसी गोपाल काला का

वितरण किया जाता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं गोपाल काला की रेसिपी की ओर। गोपाल काला बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: पोहा एक कटोरी, ताजा दही आधा कटोरी, ककड़ी मतलब खीरा एक छोटी सी, मूंगफली के दाने दो चम्मच, अदरक एक चम्मच मींस अप्रोक्सीमेटली एक इंच का टुकड़ा, ताजा नारियल एक टुकड़ा, हरा धनिया एक बड़ा चम्मच, अनार के दाने पाव कटोरी, नमक स्वाद के अनुसार। यहाँ पर मैं लगभग एक छोटा चम्मच नमक ले रही हूँ। फिर हमें तड़का लगाने की सामग्री चाहिए, जैसे कि देसी घी एक बड़ा चम्मच, राई पाव चम्मच, जीरा पाव चम्मच, हरी मिर्च एक छोटी, कड़ी पत्ता 5-6 पत्ते, हींग एक चुटकी। अब हम थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले पोहा अच्छे से धो लीजिए, फिर हमें उसका पानी निकाल देना है। यहाँ पर हम छलनी को यूज कर रहे हैं। फिर हमें खीरा यानी कि ककड़ी के बारीक टुकड़े करने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर ककड़ी कड़वी हो तो उसे इस्तेमाल ना करें, उस कड़वी ककड़ी को आप फेंक दीजिए। रेगुलर टेस्ट वाली ककड़ी को हमें इस्तेमाल करना है। फिर हमें ताजा नारियल को कद्दूकस करना है। लगभग एक बड़ा चम्मच भर के ताजा नारियल हमें चाहिए। उसके बाद हम अदरक को भी कद्दूकस कर लेंगे। फिर हरा धनिया हम बारीक काट लेंगे। अब हम गोपाल काला की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। भिगोए हुए पोहा में हम मिलाएंगे ताजा दही। इन सब चीजों को हम एक बर्तन में मिक्स करते हैं। सब चीजों को हम एक बर्तन में मिक्स करते जाएंगे। सबसे पहले दही और पोहा को हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। फिर उसमें हम बाकी सामग्री भी डालेंगे, मींस ककड़ी के टुकड़े, मूंगफली, ताजा नारियल, धनिया पत्ता, अदरक और नमक। इन सब को हम चम्मच की मदद से मिक्स करेंगे। इसमें हम अब तड़का लगाएंगे। एक तड़का पैन में हम गरम करेंगे देसी घी। उसमें सबसे पहले हम डालेंगे सरसों मतलब राई। राई चटकने के बाद हम डालेंगे जीरा, फिर हम डालेंगे कड़ी पत्ता और हरी मिर्ची। अब स्वाद का जायका ऐड करने के लिए हम डालेंगे चुटकी भर हींग। भाई वाह, इस खुशबू से तो मेरा दिल एकदम खुश हुआ। अब इस तड़के को हम बर्तन में तैयार मिश्रण पर डालेंगे। ऐसी जबरदस्त तैयारी देखकर कोई भी इसे खाने के लिए बेचैन ही होगा। यकीन ना आए तो इसे बनाकर तो देखिए जनाब। अब चम्मच की मदद से इन सब चीजों को अच्छे से मिला लीजिए। फिर एक सुंदर सी कटोरी में एकदम सात्विक भाव से इस गोपाल काला को निकालिए। उसकी सुंदरता को और ज्यादा निखारने के लिए हम उस पर अनार के लाल दाने डालेंगे। आहा, क्या डेकोरेशन है। अब इस सुंदर से गोपाल काला पर एक तुलसी पत्र को भी रखिए। फिर बड़ी श्रद्धा से इस सात्विक गोपाल काला का भोग हमारे प्यारे नटखट कान्हा को लगाइए। उसके बाद क्या, तो भाई अपनों के साथ मिल बांट कर इस टेस्टी और हेल्दी गोपाल काला का लुफ्त बड़े मजे से उठाइए। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। इस गोपाल काला की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है गोपाल काला वाले कान्हा। कान्हा की लीला से खुश हुआ गोकुल, गोपाल काला का सेवन सेहत के लिए अनुकूल, गोपाल काला में डाला हेल्दी वाला पोहा, दुनिया में अब मनवाएंगे भारतीय संस्कृति का लोहा, पोहा में मिलाया ताजा ताजा दही, कान्हा के संग ग्वालों की टोली सही, पोहा और दही संग नारियल ताजा,
गोविंदा आला रे आला, बजाओ बैंड बाजा। इस मिश्रण में डाला थोड़ा सा नमक, कान्हा की मुस्कान से दुनिया में छाई चमक। गोपाल काला की खूबसूरती को बढ़ाए अनार, जन्माष्टमी के अवसर पर स्वाद का जायका लाया बहार। इसके साथ डाला जब धनिया हरा, जय श्री कृष्ण का लगाइए नारा। आया कान्हा और मच गई धूम, खुश हुआ आसमान और गोपियां गई झूम। बनाइए गोपाल काला करके कान्हा का स्वागत, हेल्दी खाना खाने की अब डाल ही लीजिए आदत। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। आज के जन्माष्टमी स्पेशल एपिसोड में हमने सबसे पहले बनाई एक स्पेशल रेसिपी जिसका नाम था धनिया पंजीरी। धनिया पाउडर, ड्राई फ्रूट्स, मखाना को देसी घी में मिक्स करके हमने शक्कर की मिठास मिलाई। इसे और हेल्दी बनाने के लिए हमने उसमें ताजा नारियल और खुशबूदार इलायची भी डाली। जन्माष्टमी के इस पावन अवसर को हमने एकदम पारंपरिक तरीके से सेलिब्रेट किया। ऑडियंस जी, किया के नहीं? जी बिल्कुल किया। हमारे नटखट कान्हा जी के प्रति हमारे मन की श्रद्धा को दिखाने के लिए हमने एक और स्पेशल रेसिपी बनाई। गोपाल काला नाम की इस सात्विक रेसिपी में हमने भिगोया हुआ पोहा, दही, खीरा और अनार को मिक्स किया। फिर देसी घी का तड़का लगाकर हमने गोपाल काला को और ज्यादा टेस्टी बनाया। फिर उस पर तुलसी का पत्ता रखकर हमने गोपाल काला की सात्विकता को बढ़ाया। इस प्रकार हमने स्वाद का जायका शो पर जन्माष्टमी का त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया। अगर आपके पास भी ऐसी इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए, और अगर आपको अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना हो तो वो भी हमें बताइए। लेकिन उसके लिए आपके फेवरेट आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऐसा करने से हमारी दोस्ती एकदम पक्की होगी। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

आज हरी 90 FM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं हमारे प्यारे ऑडियंस? अरे भाई, बारिश के मौसम में इंद्रधनुष को देखा कि नहीं? वैसे आप सबकी मौजूदगी से हमारे स्वाद का जायका शो पर सतरंगी खुशियों का माहौल सा ऑलरेडी छा चुका है। अर्ज किया है बारिश का मौसम और ऑडियंस का साथ, मतलब जैसे आसमान में इंद्रधनुष और अपनेपन की बात। खुशियों का पैगाम लेकर आया अगस्त। मनोरंजन के लिए आचार्य 90 FM का परिवार मींस आप ही हो समस्त। स्वाद का जायका की होस्ट भारतीय सीमा टेंशन की स्पीड को कर देगी धीमा। अच्छा खाना खाकर हो जाइए खुश, बेकार वाले टेंशन को दूर कीजिए पुश। भारत की तरक्की से खुश हुआ आसमान, आचार्य 90 FM मतलब दोस्ती की पहचान। हाल ही में मारा हमने शानदार 4, हर कोई मांगे आचार्य 90 FM मोर। अब ना होगा मुमकिन हमें करना इग्नोर, नाउ वी आर बेटर देन नेवर बिफोर। आचार्य 90 FM मतलब परफेक्ट एंटरटेनमेंट, खाने और गाने की यहाँ पर एंजॉयमेंट। पहली रेसिपी का नाम है शीर खुरमा, खाकर इसे अब खुश होंगे हमारे सूरमा। ईद की बधाई का लेकर संदेश, पधारे हैं और भी त्योहार लेकर खुशियों का आदेश। आचार्य 90 FM के आप संग है खास ताल्लुकात, टेस्टी शीर खुरमा से होगी इस शो की शुरुआत। तो जनाब, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है शीर खुरमा। भाई, ईद को मनाने के लिए शीर खुरमा बनाया जाता है। हैदराबादी और लखनवी खाद्य संस्कृति में शीर खुरमा का एक अलग और खास स्थान है। ये एक ट्रेडिशनल और बेहद टेस्टी मिठाई है। इसे मेनली दूध, सेवई और खजूर इस्तेमाल करके बनाया जाता है। शीर मींस दूध और खुरमा मींस खजूर होता है और इन दोनों को मिलाकर बनता है शीर खुरमा। है ना इंटरेस्टिंग जानकारी? आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। चलिए अब हम इस ट्रेडिशनल शीर खुरमा को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। शीर खुरमा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: फुल क्रीम दूध 1.5 लीटर, बारीक सेवई 50 से 60 ग्राम, इसे हाथ से तोड़कर छोटा करना है, खजूर 5 या 6, इसे रात भर पानी में भिगोकर पतला और लंबा काटना है, बादाम 10-12, इसे भी रात भर पानी में भिगोकर छिलका हटाना है, फिर लंबे टुकड़ों में काटना है, काजू 10-12 बारीक कटे हुए, फिर हमें चाहिए पिस्ता 10-12 बारीक कटे हुए, चिरौंजी मींस चारोली 2 बड़े चम्मच, किशमिश 1 बड़ा चम्मच, चीनी 1/2 कप या स्वाद के अनुसार, देसी घी 3-4 बड़े चम्मच, हरी इलायची पाउडर 1/2 छोटा चम्मच, केसर के धागे 10 से 12, इन्हें लगभग 1 चम्मच गरम दूध में भिगोकर रखना है, केवड़ा जल या गुलाब जल 1 छोटा चम्मच, ये ऑप्शनल है, और मेन इंग्रेडिएंट ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपकी मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली है। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दूध को उबालकर गाढ़ा करना है। इसके लिए हमें चाहिए मोटे बेस वाली एक कढ़ाई। उस कढ़ाई में हमें दूध को गर्म करना है। जैसे ही उस दूध में उबाल आए, आप गैस की आंच को धीमा कर देंगे। इसे घटाकर हमें 1/3 करना है। लगभग 1/2 घंटे तक हमें दूध को पकाना है। इस दौरान करछी की मदद से हम दूध को चलाते रहेंगे। ऐसा करने से मलाई उस बर्तन के किनारों पर जमा नहीं होगी। उफ, इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब।
आई नीड अ ब्रेक। तब तक आप एक गाना सुन लीजिए।

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम शीर खुरमा बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले हम लेंगे मोटे बेस वाला एक पैन। उस पैन में लगभग एक चम्मच घी डालकर हमें उसे गर्म करना है। फिर उसमें कटे हुए बादाम, काजू, पिस्ता, चारोली और किशमिश डालकर हमें भूनना है। लगभग 2-3 मिनट तक हम इसे लो फ्लेम पर भून लेंगे। जब ये हल्के सुनहरे रंग के हो जाए तब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। फिर उसी पैन में बचा हुआ घी डालकर हम भूनेंगे बारीक सेवई। इसे भी लगभग 2-3 मिनट तक हमें भून लेना है, मींस धीमी आंच पर जब इसकी खुशबू आए तब तक। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। हमने दूध को उबालकर गाढ़ा कर लिया था, अब हम उसमें भुनी हुई सेवइयां और खजूर ऐड करेंगे। इसे लगभग 5-7 मिनट तक पकाना है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे चीनी, ड्राई फ्रूट्स के टुकड़े और खुशबूदार इलायची पाउडर। भाई वाह, इसे लगभग 5 मिनट तक चलाते हुए धीमी आंच पर पकाना है। अब गैस को बंद कर दीजिए। इस प्रकार हमारा स्वादिष्ट शीर खुरमा अब हो गया है तैयार और इसे टेस्ट करने हम हो रहे हैं एकदम बेकरार। तो भाई अब हमें चाहिए कांच की एक सुंदर सी कटोरी। उस कटोरी में बड़ी नजाकत से हम डालेंगे शीर खुरमा। क्या बात, दूध में से झलकती हुई सेवइयां और साथ में ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि सावन के मौसम में खिली खिली सी धूप। अब अपनों के साथ मिल बांट कर इस शीर खुरमा का लुफ्त एकदम तसल्ली से उठाइए। ऐसा करने से

0: हाय हॅलो नमस्कार, मी तुमची मैत्रीण आरजे रुपाली तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तुम्ही ऐकत आहात आचार्य 90 FM. मंडळी, आजचा एपिसोड खूप स्पेशल आहे, कारण की इथे आपण निमंत्रित केलेली आहे एक अशी व्यक्ती जी खरंच अष्टपैलू आहे, जी कविता करते, लहान मुलांसाठी खूप सुंदर पुस्तक काढते, कंटेंट डेव्हलपर आहे आणि अनेक पुरस्कारांनी ती सन्मानित आहे. आपण स्वागत करूया अश्विनी अतकर यांचं. नमस्कार अश्विनी.
1: नमस्कार.
0: कशा आहात तुम्ही?
1: एकदम मस्त, मजेत.
0: आमच्या आचार्य 90 FM च्या स्टुडिओमध्ये मी तुमचं मनापासून स्वागत करते.
1: खूप खूप आभार 90 FM चे आणि आपले सुद्धा.
0: खरं तर मी खूप एक्सायटेड आहे तुमच्याशी खूप साऱ्या गप्पा मारण्यासाठी. जसे की मी अश्विनीताईंची ओळख करून दिली, त्या खूप सुंदर कविता करतात आणि कंटेंट डेव्हलपर आहेत, तर मी थेट काही न बोलता थेट प्रश्नांकडेच वळते. अश्विनीताई, मी तुमच्या कविता वाचल्या आहेत, आपण कॉम्पिटिशन्समध्ये पार्टिसिपेट केलेल्या, तिथे आपली भेट झालेली, आणि मला सांगायला आवडेल की अश्विनीताईंना पहिल्या क्रमांकाचं बक्षीस मिळालेलं होतं. तर ज्यावेळेला मी त्यांची कविता वाचली होती, ऐकली होती, तर एक वेगळाच नाद आणि वेगळीच धाटणीची त्यांची कविता होती. एक सामाजिक कविता लिहित त्या वेगळ्या धाटणीच्या कविता पण लिहितात, म्हणजे बालकविता पण लिहितात. म्हणजे हे वेगवेगळं टोकं सांभाळताना त्या साहित्य चळवळ करतात, साहित्य सेवा करतात. तर अश्विनी मॅम, मला एक विचारायला आवडेल तुम्हाला की जसं आपण घडत जातो, आपल्याला कल्पना नसते की भविष्यात आपण कुठल्या गोष्टी करणार आहोत, म्हणजे आपलं पॅशन काय आहे आणि आपले छंद आपण जोपासत आपण कुठल्या टप्प्यावर जाणार आहोत. तर कविता तुम्हाला कुठे भेटली आणि कशी सुरुवात झाली?
1: खूप सुंदर आणि मनातला प्रश्न तुम्ही विचारलाय आणि याबद्दल रसिकांशी संवाद साधायला मला खूप छान आवडेल. खरं म्हणजे कविता आपल्याला कशी मिळाली यापेक्षाही एक माझ्यासमोर एक आदर्श होता की माझे आजोबा, म्हणजे लहान असताना ते बोलायचे काही साधं वाक्य असेल तर त्याला यमक जोडून
2: बोलायचे. स्वाद का जायका इस शो पर मैं आरजे भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ. कैसे हैं आप सब लोग? एंजॉयिंग रेनी सीजन, भाई बारिश का सुहाना मौसम और सावन की रिमझिम फुहारे. आचार्य 90 FM पर ऑडियंस को लुभाने के बहाने, सावन के मौसम में हसीन से नजारे. आचार्य 90 FM के हमारे ऑडियंस जी प्यारे, धूप और छांव का खेल ये अजीब, आपका साथ पाकर हम भी हुए खुश नसीब. आज की फर्स्ट रेसिपी है लौकी का हलवा, स्वाद का जायका शो पर हम दिखाएंगे जलवा. बरखा का मौसम और बारिश का जाल, बनाकर लौकी का हलवा पूछिए अपनों का हाल. सावन को सेलिब्रेट करने लौकी का हलवा बनाना, मतलब टेस्ट के साथ सेहत का खजाना अपनाना. व्रत और त्योहारों पर बनाकर देसी फूड, सेलिब्रेशन की चाहत को आप कीजिए कंक्लूड. खाने और खिलाने से मजबूत होंगे रिश्ते, अपनापन दिखाने वाले आप ही होंगे फरिश्ते. स्वाद का जायका शो मीन्स अपनों संग अपनापन, सावन की फुहारों से भर दीजिए अपना जीवन. परंपरा और संस्कृति वाला जब करना हो काम, याद आएगा तब आचार्य 90 FM यही नाम. तो जनाब, हमारी आज की फर्स्ट रेसिपी का नाम है लौकी का हलवा, मीन्स कद्दू का हलवा, म्हणजे आपला दूधी हलवा. दूधी हलवा का ओरिजिन मिडल ईस्ट है. हलवा शब्द अरबी भाषा से आया है, इसका मतलब मीठा होता है. ओरिजिनली खजूर, दूध और आटा, इन चीजों से हलवा बनता है. जब मिडल ईस्ट कंट्रीज से ये भारत पहुंचा, तब हलवा हमारी भारतीय संस्कृति में ढल गया. उसके बाद भारत में गाजर, मूंग दाल और लौकी जैसे चीजों से हलवा बनाने की परंपरा शुरू हुई. आज हमारे उत्तर प्रदेश और अन्य क्षेत्रों में विशेष अवसरों और त्योहारों पर लौकी का हलवा बनाया जाता है। लौकी को हमारे महाराष्ट्र और गुजरात में दूधी कहा जाता है। पोषण और फाइबर से भरपूर इस मिठाई को उपवास के लिए मींस व्रत के लिए एक आदर्श रेसिपी माना जाता है। चलिए अब हम दूधी हलवा बनाने की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। दूधी मींस लौकी का हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। लौकी मींस दूधी लगभग 600 ग्राम, देसी घी 4 बड़े चम्मच, काजू और बादाम 5-5, किशमिश 2 बड़े चम्मच, दूध 2 बड़ी कटोरी, चीनी 1/4 कटोरी मींस 3/4, मिल्क पाउडर 1/2 कटोरी, इलायची 4 या 5, और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। दूधी हलवा की रेसिपी को शुरू करने से पहले हमें थोड़ी तैयारी करनी है। सबसे पहले दूधी को अच्छे से धो लीजिए। अब हमें दूधी को छीलकर कद्दूकस करना है, लेकिन उसके पहले हम दूधी का छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे टेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, अगर दूधी का टेस्ट जरा सा भी कड़वा लगे तो उसे फेंक दीजिए। हमें कड़वा दूधी यूज नहीं करना है, रेगुलर टेस्ट वाला दूध ही हम इस्तेमाल करेंगे। उस छीले हुए दूधी को हमें कद्दूकस करना है। फिर मिक्सर के जार में इलायची और 2 चम्मच शक्कर डालकर हम बनाएंगे इलायची का पाउडर। उसके बाद हम काजू और बादाम को पतले टुकड़ों में काटेंगे। 1 चम्मच घी को हम मोटे बेस वाले पैन में गरम करेंगे। उसमें 1/4 कटोरी दूध और मिल्क पाउडर को डालकर हमें पकाना है। इस दौरान गैस की फ्लेम को आप लो रखिए। लगभग 10-15 मिनट के बाद ये मिश्रण पककर इसका खोया मींस मावा बनेगा। यहाँ पर हम ले रहे हैं एक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई। तब तक आप एक गाना सुनिए।

0: वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम दूधी हलवा बनाने की रेसिपी को सुन रहे थे। अब एक कढ़ाई में बाकी बचे घी को हम गरम करेंगे। इस दौरान हम गैस की आंच को धीमी गति पर रखेंगे। उस गरम घी में हमें सारे ड्राई फ्रूट्स को भून लेना है। लगभग 2-3 मिनट तक इसे चलाते रहिए। फिर इन भुने हुए ड्राई फ्रूट्स को हम एक प्लेट में निकाल कर रखेंगे। बाद में उसी घी में हम ऐड करेंगे कद्दूकस की हुई लौकी। इसे लो फ्लेम पर चलाते हुए हमें पकाना है। लगभग 10 मिनट के बाद हम इसमें ऐड करेंगे दूध और इसे भी हमें पकाना है। इस दौरान इसे बीच बीच में चलाते रहिए, मींस करछी की मदद से इसे मिक्स करते रहिए। थोड़ी देर बाद दूध गाढ़ा होगा, तब हम इसमें ऐड करेंगे शक्कर। इसे भी करछी की मदद से हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 3-4 मिनट के बाद इस मिश्रण में हम ऐड करेंगे खोया। ये वही खोया है जिसे हमने मिल्क पाउडर को यूज करके बनाया था। इसके साथ हम मिलाएंगे ढेर सारा प्यार ताकि इसकी मधुरता और ज्यादा निखर आए। इतना सारा काम करके मैं तो थक गई भाई साहब। आई नीड अ ब्रेक।
1: अरे हे ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला

आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। ब्रेक पर जाने से पहले हमने लौकी का हलवा इंस्टेंट खोया के साथ मिला दिया था। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। खोया को कढ़ाई वाले मिश्रण में हमें अच्छे से मिक्स करना है। लगभग 2 मिनट के बाद हम गैस को बंद कर देंगे। अब इस मिश्रण में हम मिक्स करेंगे खुशबूदार इलायची पाउडर। आहाहा, क्या महक! इस खुशबू से तो सारा घर खिलसा जाएगा। यकीन ना आए तो लौकी का हलवा बनाकर देखिए तो सही। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि इसे आप जरूर पसंद करेंगे। अब हम इसे डेकोरेट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए एक सुंदर सा सर्विंग बोल। उस बोल में हम बड़े प्यार से हमारे तैयार दूधी हलवा को निकालेंगे। फिर उतने ही प्यार से उसके ऊपर हम सारे ड्राई फ्रूट्स को फैलाएंगे। भाई वाह, हरे रंग के दूधी हलवा पर गोल्डन कलर के ड्राई फ्रूट्स, जैसे कि मधुबन में राधिका और साथ कान्हा की फ्लूट। क्या बात भाई, मजा आ गया। अब इस तैयार दूधी हलवा पर हम रखेंगे ताजा तुलसी पत्र। फिर बड़ी श्रद्धा से इस दूधी हलवा का भोग हम भगवान को लगाएंगे। ऐसा करने से इस दूधी हलवा की सात्विकता और बढ़ेगी। उसके बाद अपनों के साथ मिल बांटकर इस पारंपरिक दूधी हलवा का लुफ्त हम मजे से उठाएंगे। ऐसा करने से अपनापन बढ़ता है और हमारी दोस्ती भी एकदम पक्की हो जाती है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस दूधी हलवा की तारीफ में पेश है एक कविता। कविता का नाम है दूधी हलवा का जलवा। व्रत के मौके पर बनाया दूधी हलवा, भारतीय खाद्य संस्कृति में तरह तरह का जलवा। हलवा में डाला जब हेल्दी दूधी, तब डाइटिंग छोड़ दूंगी मैं भी। भारतीय संस्कृति में सेहत का राज बोया, और दूधी हलवा में डाला हमने इंस्टेंट खोया। इंस्टेंट खोया मतलब मिल्क पाउडर और दूध। खाकर दूधी हलवा, आप भी बनिए सुपर कूल। जब रखनी हो अच्छी हमें अपनी प्रकृति, तब जरूर अपनाइए हमारी भारतीय संस्कृति। प्रकृति से संस्कृति का जब होगा मिलाप, तब जरूर सुनिए आप कोई सुरीला सा आलाप। सुरीले गानों का खाने संग संगम मतलब आचार्य 90 FM के गाने एकदम मन भावन। खुशियों को बांटने आई भारतीय सीमा, निभाएगी अपनी दोस्ती आप जाइए कहीं ना। खाने और गाने का यहाँ होगा संगम, सुनिए आचार्य 90 FM हर दिन हर दम। स्वाद का जायका शो पर दोस्ती की परिभाषा और हमारे प्यारे ऑडियंस जी के आशीर्वाद की अभिलाषा। बहुत मायने रखती है आपकी ये दोस्ती। आप जैसे दोस्त मींस जबरदस्त हस्ती। दोस्तों के संग शेयर करेंगे रेसिपी, अपनापन जताने की अनोखी सी केमिस्ट्री। अपनापन निभाने वाला तरीका ये अनोखा। हमारा आचार्य 90 FM लाया खुशियों का झरोखा। झरोखा मतलब हैप्पीनेस की लाइट। चलो साथ मिलकर जिंदगी को करे ब्राइट। चाहत है हमारी मिले आपका साथ। सब्सक्राइब आचार्य 90 FM। अब सोचने की क्या बात। बनाया ये हलवा डालकर लौकी, लजीज खाने के हम भी हैं शौकीन। इस बात पर हम ले रहे हैं एक क्विक ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और बातें होंगी। स्टे ट्यून्ड।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हमारे आज के शो की शुरुआत हमने मीठा बनाकर की, अब कुछ चटपटा सा बनाते हैं। ये हमारे गुजरात के कच्छ जिले का फेमस स्ट्रीट फूड है। इसे 1960 के दशक में कच्छ के मांडवी कस्बे में केशवजी गभा चुड़ासमा ने इन्वेंट किया। आलू के साथ कुछ मसालों को भरकर इसे बेचा गया। इस रेसिपी के नाम का मीनिंग है दबा हुआ, क्योंकि मसाला वाले आलूओं को पाव के बीच में दबाकर इसे बनाया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है फेमस स्ट्रीट फूड कच्ची दाबेली की। दाबेली मसाला, आलू की भराई, इमली की चटनी, लहसुन की चटनी और ऊपर से सेब और अनार के दाने डालकर इसे बनाया जाता है। ये खट्टा, मीठा, तीखा और नमकीन, ऐसे अनेक स्वादों का अनोखा मेल है। भाई, बारिश के मौसम में ऐसी चटपटी चीजें खाने का मजा तो कुछ और ही है। गुजरात से निकलकर ये स्ट्रीट फूड महाराष्ट्र और अन्य पड़ोसी देशों में फेमस हुआ। तो चलिए आज हम भी हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए गुजरात स्पेशल कच्ची दाबेली बना ही देते हैं। कच्ची दाबेली बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स, बनपाव 6, लहसुन की चटनी लगभग 2 चम्मच, इमली की चटनी 4 चम्मच, मसालेदार मूंगफली 4 बड़े चम्मच, नायलॉन सेव 4 बड़े चम्मच, देसी घी या तेल 3 चम्मच। ये हो गई दाबेली पाव की सामग्री। अब हम सुनते हैं दाबेली स्टफिंग की सामग्री। दाबेली मसाला 2 चम्मच, ये रेडीमेड मिल जाता है। मीठी चटनी 2 चम्मच, मींस खजूर और इमली की चटनी। तेल 2 चम्मच, उबले आलू 2 मीडियम साइज के। बारीक कटा हुआ प्याज 6 चम्मच अप्रोक्सीमेटली। बारीक कटा हुआ हरा धनिया अप्रोक्सीमेटली 2 चम्मच। अनार के दाने 4 चम्मच। कसा हुआ नारियल 3 से 4 चम्मच। नमक स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं लगभग 1 चम्मच नमक ले रही हूँ। अब हम कच्ची दाबेली की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे एक कटोरी, उसमें सबसे पहले हम डालेंगे दाबेली मसाला और मीठी सी चटनी। उसमें लगभग 4 चम्मच पानी डालकर हम मिक्स करेंगे। अब एक नॉनस्टिक पैन में हमें तेल को गरम करना है। फिर आप धीमी आंच पर उस तेल में डालिए दाबेली के मसाले का मिश्रण। लगभग 2 मिनट तक हमें इसे चलाना है। फिर हम उसमें डालेंगे मसले हुए उबले आलू। इसे चम्मच की मदद से मिक्स करते हुए पकाना है। अब हम इन आलूओं में ऐड करेंगे नमक। लगभग 3-4 मिनट के बाद ये मिश्रण पक जाएगा, तब हम इसे एक प्लेट में निकालेंगे। हमें इस मिश्रण को ठंडा करना है। उसके ऊपर हम डालेंगे ताजा धनिया के पत्ते और कसा हुआ नारियल। इसे भी अच्छे से मिक्स करना है। वैसे नारियल डालना ऑप्शनल है, इट इज अप टू यू। अब हम बनपाव को बीच में से काटेंगे। इसे काटते वक्त हमें ध्यान रखना है कि पाव दूसरी तरफ से जुड़ा रहे, मींस पाव भाजी के पाव की तरह हमें इसे 2 पतले हिस्सों में डिवाइड करना है। अब उस पाव के अंदर की तरफ चम्मच की मदद से हम लगाएंगे लहसुन की चटनी और मीठी चटनी। इसमें हम आलू का मिश्रण भरेंगे और ऊपर से मूंगफली और प्याज डालेंगे। उसके बाद हमें तवा गरम करना है। फिर पाव को बंद करके, मींस दबाकर, उसके दोनों तरफ तेल या घी लगाना है। इसे धीमी आंच पर 4 से 5 मिनट तक सेकना है। वाह वाह, इसकी खुशबू ने तो कमाल कर दिया, क्या बात। अब एक सुंदर सी प्लेट में हम इसे निकालेंगे। फिर हम इसका डेकोरेशन स्टार्ट करेंगे।
सबसे पहले हम इस पर छिड़केंगे सुनहरी नायलॉन सेव। भाई वाह, फाइनल टच देने के लिए हम उस पर डालेंगे अनार के लाल दाने। इतना सुंदर डेकोरेशन देखकर हमारे प्यारे ऑडियंस जी एकदम खुश हो जाएंगे। अब अपनों के साथ बैठकर बड़ी तसल्ली से इस कच्ची दाबेली का लुफ्त मजे से उठाइए। भाई वाह, मजा आ गया। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस कच्ची दाबेली की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है कच्ची दाबेली। बारिश के मौसम में खिल गई बेला चमेली, चटपटा खाना खाने की चाहत में बना भी दीजिए कच्ची दाबेली। दाबेली के अंदर उबला हुआ बटाटा। सुनिए आचार्य 90 FM और दूर कीजिए सन्नाटा। बटाटा के साथ डाली मीठी चटनी, दाबेली भी है बिल्कुल देसी और अपनी। साथ में डाला थोड़ा दाबेली मसाला, आचार्य 90 FM पर स्वाद के जायके का निवाला। इसका डेकोरेशन करने डाले ताजे अनार, बना ही दीजिए कच्ची दाबेली, पक्का हो गया अब सोच विचार। कच्ची दाबेली खाकर सेलिब्रेट कीजिए बारिश, हमारे इस शो पर लजीज खाने की फरमाइश। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रीकैप। हमारे आज के एपिसोड में हमने पहले बनाया व्रत स्पेशल लौकी का हलवा। हमने दूधी शक्कर खोया को घी में डालकर उसे दूध में पकाया, फिर ड्राई फ्रूट्स से उस दूधी हलवा को डेकोरेट किया। उसके बाद हमने बनाई एक चटपटी रेसिपी जिसे स्ट्रीट फूड के नाम से जाना जाता है। उबला आलू, दाबेली मसाला, सिंगदाना, इन चीजों को चटनी वाले पाव में मिलाकर हमने थोड़ा रोस्ट किया, फिर नायलॉन सेव और अनार के दाने डालकर उसे डेकोरेट किया। इस प्रकार बारिश के सुहाने मौसम को हमने आचार्य 90 FM के हमारे स्टूडियो में एकदम शिद्दत से मनाया। ऑडियंस जी, मनाया के नहीं जी, बिल्कुल मनाया। आपको हमारी आज की रेसिपीज कैसी लगी ये हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके लिए हमारे आचार्य 90 FM चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी दोस्ती एकदम पक्की हो जाएगी। चलिए अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का, वापस मिलने का ये मेरा वादा। सिर्फ वादा नहीं, एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशन से भरपूर है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली हुई जीत की कहानी है। एक ऐसी जीत की कहानी जो आपके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ देगी, क्या हमें सच में कोशिश कितनी करनी चाहिए, ये वाला। क्योंकि हम अक्सर कोशिश नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं यार कर लेता तो हो जाता, लेकिन काश हम चीजें करते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गोल्ड मेडल। सुबह के 4 बजे थे, पूरा शहर अब भी गहरी नींद में था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन एक पतली सी गली के छोटे से घर का दरवाजा धीरे से खुला। 17 साल का अर्जुन अपने पुराने घिसे हुए रनिंग शूज पहनकर बाहर निकला। उसके शूज के सोल 2 जगह से फट चुके थे, लेस भी अलग अलग रंग की थी। उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा रुक। अर्जुन मुड़कर देखता है, माँ एक स्टील के ग्लास में गरम गरम दूध लेकर खड़ी थी। बस इतना ही है, घर में पी ले। अर्जुन मुस्कुरा दिया, माँ एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं तुझे दुनिया का सबसे महंगा दूध पिलाऊंगा। माँ हंस पड़ी, मुझे महंगा दूध नहीं चाहिए, बस तेरा नाम टीवी पर देख लूं इतना ही काफी है। ये लाइन अर्जुन के दिल में बस गई और वो दौड़ने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर, ना जिम, ना कोच, ना प्रोटीन, सिर्फ एक सपना, और उस सपने का नाम था गोल्ड मेडल। अर्जुन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, दिन भर मेहनत करते थे, कभी 500 रुपए तो कभी 300 रुपए कमाते थे, और कभी कभी पूरे दिन में 150 रुपए भी मिलते थे। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और अर्जुन। टीवी पुराना था, फ्रिज नहीं था और कूलर भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर एक फोटो जरूर लगी थी, मिल्खा सिंह की। हर रोज अर्जुन उस फोटो के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। पापा हमेशा हंसते, बेटा सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेट भी भरना पड़ता है। अर्जुन सिर्फ इतना कहता अपने पापा से, पापा एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, 100 मीटर रेस का कॉम्पिटिशन भी था। सब स्टूडेंट्स नए नए शूज में आए थे, किसी ने नाइकी, किसी ने एडिडास, और अर्जुन अपने फटे पुराने हुए शूज में आया। सबने शूज को देखा और अर्जुन का मजाक बनाने लगे, सब उस पर हंस पड़े। अरे देख, गोल्ड मेडल विनर आ गया, कहीं रास्ते में शूज टूट गए तो ये तो फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन चुप था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट, और विसल बजी, सब की तीर की तरह भागने लगे। शुरू हुई 40 मीटर तक, सब तीर की तरह भागे। शुरू के 40 मीटर तक अर्जुन पीछे था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आखिरी 50 मीटर में जैसे उसके पैरों में बिजली आ गई, एक एक करके सब पीछे छूट गए। और क्या, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स टीचर भी हैरान रह गए, ये लड़का कौन है। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया, लेकिन मेडल से ज्यादा अर्जुन को एक बात याद आ रही थी। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे साइड में बुलाकर कहा, बेटा तेरे अंदर ना टैलेंट है, टैलेंट। पहली बार किसी को देख रहा हूं जो बिना ट्रेनिंग के इतना फास्ट भाग रहा है, कल से मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, सर फीस कितनी देनी होगी। टीचर मुस्कुरा दिए, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती बेटा, बस तू आ जाना। उस दिन से अर्जुन की असली जर्नी शुरू हुई। अगले ही सुबह 4 बजे वो प्रैक्टिस के लिए स्कूल पहुंच गया। शाम को पापा के साथ ऑटो साफ करना, रात को पढ़ाई करना, दिन के 18 घंटे मेहनत होती थी। और 1 साल बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप, ये उसकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी रेस थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रनर्स आए थे, सबके पास कोच थे, डाइट था, रनिंग किट थी, और अर्जुन सिर्फ एक ट्रैक सूट जो स्पोर्ट्स सर ने अपनी सैलरी से खरीदा था। रेस के पहले सर ने कांधे पर हाथ रखा अर्जुन के और कहा, याद रख
रेस पैर नहीं जीतते, रेस हौसला जीतता है। और क्या, जैसे ही विसल बजी रेस शुरू हुई, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। अर्जुन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर सबसे आगे, लेकिन अचानक उसका पुराना शू फट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, बाकी रनर्स उसके आगे निकल गए। स्पोर्ट्स सर चीखे, अर्जुन उठ! उसके घुटने से खून निकल रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन उसने माँ की बात याद रखी थी, मुझे बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा भागना शुरू किया। अब रेस जितना मुश्किल था, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो फर्स्ट नहीं आया, फोर्थ आया, मेडल भी नहीं मिला। रात को घर आकर वो पहली बार रोया, माँ शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और बाद में उसके पास बैठकर कहा, बेटा जो लोग पहली हार के बाद सपना छोड़ देते हैं उनके नाम को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिरकर खड़े हो जाए, भागे और अपने सपने को जीत ले, उनका नाम सारे लोग याद रखते हैं। उस रात अर्जुन ने आंसू पोंछे और एक कसम खाई, अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे ट्रैक से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये जो तूफान आने वाला है अर्जुन की जिंदगी में, ये कौन सा तूफान है? क्या ये अर्जुन को चैंपियन बनने से रोक देगा, या अर्जुन के पैर ही अर्जुन से छीन लेगा जिससे उसकी भागने की क्षमता ही खत्म हो जाए, भागने की शक्ति खत्म हो जाए, या फिर घर की कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, या फिर घर पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो अर्जुन के सपने को तार तार कर देगी। ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों की गोलक।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज 26 सुना रहा था आपको गोल्ड मेडल की कहानी। अब गोल्ड मेडल में अर्जुन जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उसमें फोर्थ आता है और वो मन ही मन सोचता है क्या उसके पिताजी सही कहते थे कि सपने देखना सही है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। लेकिन अर्जुन की माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिद को पूरा करोगे और जीतोगे एक दिन। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट रेस में हारने के बाद अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, टैलेंट जरूरी है लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे फिर से ग्राउंड पहुंच गया। स्पोर्ट्स सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था तू जरूर आएगा अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर इस बार सिर्फ रेस नहीं जीतनी, जिंदगी जीतनी है। सर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तो फिर आज से ही असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब रूटीन और भी मुश्किल हो गया। सुबह 4 से 7 प्रैक्टिस होती, फिर स्कूल होता, शाम को पापा के साथ ऑटो चलाने में मदद होती और रात को पढ़ाई और फिर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स सर उसे हर दिन एक ही बात बोलते, बॉडी थकने से पहले दिमाग हार मानता है अर्जुन। और अर्जुन धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बनने लगा। उसने अपने सर की कही हुई सारी बातों को तवज्जो दी, उनको मानना शुरू किया और सर की बताई हुई ट्रेनिंग से ही वो सारी चीजें करने लगा। एक दिन स्पोर्ट फेडरेशन के सेलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट में आए थे, स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स होने वाले थे। ग्राउंड में 200 से ज्यादा एथलीट्स थे, सबके पास ब्रांडेड किट्स थी, न्यूट्रिशंस थे, प्रोफेशनल कोचेस थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक पानी और माँ के हाथ के बने 2 पराठे। एक लड़के ने हंसकर कहा, भाई पिकनिक पे आया है क्या? दूसरा बोला, गोल्ड मेडल व्हाट्सएप पे मिलता है क्या? अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ हेडफोन लगाए, आंखें बंद की और माँ की आवाज याद की। बस तेरा नाम टीवी पे देखना है, बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। ट्रायल रेस शुरू हुई, विसल बजी, सब रॉकेट की तरह निकले। शुरू के 100 मीटर में अर्जुन तीसरे नंबर पे था। 150 मीटर, 200 मीटर उसने स्पीड बढ़ाई, 250 मीटर अब वो दूसरे नंबर पर जा गया और आखिर के 100 मीटर में पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाए, लेन नंबर 4 अर्जुन, अनबिलीवेबल कमबैक और फर्स्ट पोजीशन। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स सर की आंखों में आंसू आ गए, कांग्रेचुलेशंस, तुम स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर माँ रो पड़ी, बेटा आज लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टेट चैंपियनशिप से सिर्फ 10 दिन पहले पापा का ऑटो एक ट्रक से टकरा गया, एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट। पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, घर में 1 भी रुपया नहीं था। माँ अपनी शादी के कंगन लेकर ज्वेलर के पास गई। ज्वेलर बोला, बस इतने ही मिलेंगे। माँ चुपचाप मान गई। अर्जुन दूर से सब देखता रहा। एक दिल में तूफान चल रहा था, उसने सोचा मैं रेस छोड़ देता हूँ। स्पोर्ट्स सर को पता चला, वो सीधा हॉस्पिटल आए, पागल हो गया है क्या तू, रेस छोड़ेगा? अर्जुन बोला, सर घर ज्यादा जरूरी है। सर ने गुस्से में कहा, घर के लिए ही तो भागना है, तू रेस नहीं भागेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। पापा ने भी ऑक्सीजन मास्क के साथ धीरे से कहा, बेटा मेरे लिए मत रुक, एक दिन जब लोग मुझे गोल्ड मेडल विनर का बाप बोलेंगे ना तो मुझे और प्राउड फील होगा, तब मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तब मेरी सारी खुशी बस तुझ में नजर आएगी। अर्जुन टूट गया, उसने पापा का हाथ पकड़कर बोला, आप देखना पापा, मैं जीत कर ही आऊंगा। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आ गया, हजारों लोग स्टेडियम में बैठे थे, टीवी कैमरास, मीडिया, नेशनल सिलेक्टर्स। अर्जुन पहली बार इतनी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा था, उसके पैर कांप रहे थे,
सर ने उसे एक छोटा सा तिरंगा दिया और कहा, इसे पॉकेट में रख, जब डर लगे याद रख तू अकेला नहीं भाग रहा, पूरा भारत देश तेरे साथ भाग रहा है। रेस शुरू हुई, सब एथलीट्स बहुत स्ट्रांग थे। 200 मीटर तक अर्जुन पीछे था। कमेंटेटर बोला, लगता है प्रेशर में आ गया, लेकिन आखिरी बेंड पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, 1, 2, 3 रनर्स को पीछे छोड़ दिए। फर्स्ट लाइन में और फोटो फिनिश में पूरे स्टेडियम की नजर थी, सांसें रुक गई। रिजल्ट आया, विनर अर्जुन, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स गेम के लिए सभी मीडिया उसके पास दौड़ पड़ी। अर्जुन आप अपनी जीत किसे डेडिकेट करना चाहोगे? अर्जुन ने कैमरा की तरफ देखा और कहा, ये मेडल मेरी मां के बेचे हुए कंगन का नतीजा है। मेरे पापा का खून पसीने की कमाई है और मेरे स्पोर्ट्स सर के भरोसे का मेडल है। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन नेशनल गेम से सिर्फ 1 महीने पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन के पैर में चोट बुरी तरह लग गई। एक डॉक्टर ने सीधा कह दिया, हो सकता है तुम दोबारा कभी रेस नहीं भाग पाओगे। और ये सुनते ही अर्जुन के पैर की जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन दोबारा रेस भाग पाएगा या फिर अर्जुन को रेस छोड़नी पड़ेगी या फिर कोई और नया मोड़ आएगा कहानी में? मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते कि आगे कहानी में क्या होगा। पर इतना जरूर जानता हूं कि जो हौसला रखते हैं, जिनके अंदर जिद होती है और जो हर एक चीज को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं, उनका सपना कभी खाली नहीं जाता, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखेंगे अर्जुन का परिश्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: हाजरी ने मैं मेरा साथ दी, अंतरों से घूम के जब मैं मुखरे पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सैर पर एक गम हो जाए।
3: हाँ, हो जाए, हो जाए, हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, अगर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
4: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
5: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है, वरना दुख होगा इसे।
6: छलक रहा है।

एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर स्वागत करता हूं आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि हम जान रहे हैं, अर्जुन एक रेस हारा, फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसे सर मिले, सर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर एक कंपटीशन गया, उस कंपटीशन को उसने जीता, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, उसकी जिद काफी बड़ी थी, उसके माँ का जो सपना था उसे वो पूरा करना था, और अर्जुन उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा, अर्जुन ने बस यही कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने माँ के सपने को जिंदा रखे और अपने माँ के सपने को पूरा करे। तो चलिए देखते हैं अब कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर्स की बात अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी, लिगामेंट टियर हो चुका था, अगर जल्दी रेस भागे तो करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था, एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगने लगा था, नेशनल गेम्स सिर्फ एक महीने दूर थे। जिस सपने के लिए उसने सालों तक पसीना बहाया, वही सपना उसके हाथों से अब दूर जा रहा था, फिसल रहा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैं ही क्यों, आखिर मेरी क्या ही गलती है, मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, तो मेरे साथ ही ये क्यों। उसकी माँ चुपचाप उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा भगवान कभी किसी का सपना नहीं तोड़ते, वो सिर्फ देखते हैं, सपना देखने वाला कितना मजबूत है, और अगर तुम मजबूत हो तो जरूर तुम ये अपनी परेशानी अपनी कठिनाई को पार कर जाओगे। और उसके बाद अगले एक महीने रेस से ज्यादा मुश्किल था, पेन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स, एक्सरसाइज, हर दिन दर्द, कभी घुटना जवाब दे देता, कभी कॉन्फिडेंस, और क्या, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स सर हर रोज बस उसे एक ही बात बोलते, गोल्ड मेडल ट्रैक पर नहीं जीता जाता, गोल्ड मेडल पहले दिमाग में जीता जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, हर रात आंखें बंद करके फिनिश लाइन इमेजिन करता और हर बार उसके सामने तिरंगा लहराता और खुद को देखता। अब धीरे धीरे एक महीना गुजर चुका था, नेशनल गेम्स अब आने ही वाले थे और आखिरकार नेशनल गेम्स वाला दिन आ गया। देश के हर स्टेट के चैंपियंस एक ही स्टेडियम में खड़े थे, कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, आज का 400 मीटर का फाइनल रेस, यहां से निकलेगा भारत का अगला चैंपियन। स्टैंड में हजारों लोग, टीवी कैमरास, मीडिया और वीआईपी गैलरी में अर्जुन के पापा, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर स्टेडियम आए थे, उनके पास माँ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा, देखो। पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्या, रेस शुरू हुई। ऑन योर मार्क्स सेट एंड विसल बजी, सब एथलीट्स बिजली की तरह निकल पड़े। 100 मीटर अर्जुन चौथे नंबर पर था, कमेंटेटर्स बोला अर्जुन स्लो स्टार्ट ले रहा है, 200 मीटर अब तीसरे नंबर पर, स्पोर्ट्स सर चिल्लाए पेशेंस, 300 मीटर अब तीसरे नंबर पर, लेकिन उसके इंजर्ड पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ, एक सेकंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, करियर खत्म हो जाएगा, लेकिन उसी पल उसने वीआईपी गैलरी की तरफ देखी, पापा व्हीलचेयर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, माँ हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी, स्पोर्ट्स सर दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाए और इतनी जोर से चिल्लाए, अर्जुन तिरंगे के लिए जीतना है। बस ये कुछ शब्द सुनते ही जैसे अर्जुन के अंदर एक रोशनी दौड़ पड़ी, उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक रनर क्रॉस किया, फिर दूसरा, अब सिर्फ उसके आगे दो एथलीट बचे थे। आखिरी 50 मीटर
पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर चीख रहे थे, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा फिनिश बहुत कम देखने को मिलता है, और आखिरी के 20 मीटर में तो पूछिए ही मत। दोनों रनर्स खड़े हो गए, कांधे से कांधा मिलाकर भाग रहे थे। 10 मीटर, 5 मीटर और क्या, फिनिश लाइन और फोटो फिनिश, और पूरा स्टेडियम खामोश। सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। कुछ सेकंड जो अर्जुन को घंटों जैसे लग रहे थे, फिर स्क्रीन पर रिजल्ट फ्लैश हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, उसके खांधों पर तिरंगा था, गोल्ड मेडल उसके गले में था। जैसे ही तिरंगा सबसे ऊपर गया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेडल को चूमा और धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का सेक्रीफाइस है, पापा की मेहनत है और स्पोर्ट्स सर के भरोसे का नतीजा है, और हर उस इंसान का है जैसे जिसे कभी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने वो कर दिखाया। अब एक अनोखा फैसला आने ही वाला था कि अर्जुन ने अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया से पूछा अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब आपका अगला सपना क्या है? सबको लगा वो ओलंपिक्स बोलेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं ओलंपिक जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव में एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा, ताकि किसी और बच्चे को फटे हुए शूज की वजह से सपना ना छोड़ना पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद जहां कभी अर्जुन अकेला सुबह 4 बजे दौड़ता था, आज वहीं 300 से ज्यादा बच्चे हर सुबह 4:30 बजे दौड़ते हैं। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था अर्जुन गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स एकेडमी, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वालों की कभी जीत नहीं होती। एक छोटा सा लड़का अर्जुन, जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके पास वो मेहनत, वो जीत, वो लगन थी, और उसी जीत के चलते, उसी मेहनत के चलते उसने अपना वो सपना पूरा किया। उसने वो गोल्ड मेडल जीता, उसने अपना हौसला बुलंद किया, और उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस पूरे शहर में, उस पूरे मोहल्ले में इतने स्टूडेंट्स अब रेस में और अलग अलग तरह के खेलों में हिस्सा लेने लगे, जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपसे कहता हूँ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं सात अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होता है। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच सात लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस, फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यश भी। सब ने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई। और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजेस धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी। फोटो

Photography, traveling, life, dreams, पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था। सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बापुराव, गाइड। उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलो वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है। बापुराव ने जवाब दिया, जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे। उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेट था, लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी September 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया, अंकल आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकेंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते 2 हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि
कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब? तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों को।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन 1 घंटा बीत गया, फिर 1.5 घंटा, फिर 2 घंटे। रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने GPS चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई। कंपास ऐप भी वियर्ड डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ? कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी। क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे। विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया। टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था? बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था। उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के छिलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई। उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला। उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने? कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर, क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर
पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया, बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई। रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था। उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइस रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ एक सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया। उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत थी, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया, बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी। मीरा पैनिक में आ गई। सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए। उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी, रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी, उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो। उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया, सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी, पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था, वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे। उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हां में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर, एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया, सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमे हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहां गिरा था? बापूराव ने आंखें बंद कर दी, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसे ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, 6 लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब
मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन सात लोगों को अब बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के गुल्लक।

स्वागत है आपका आचार्य 90 एफएम में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उनकी आवाज भर गई। मैं गाइड था। मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी। हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी। उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है। जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था। पेज पर खून जैसा लगा था और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी। बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा डार्कनेस में छुपा हुआ था और वो सीधा केव के अंदर देख रहा था उसकी तरफ। और फिर बिजली चमकी। एक सेकेंड के लिए उसका चेहरा दिख गया और बापूराव की चीख निकल गई, क्या नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जिस चेहरे को उसने देखा वो 2019 में गायब हुए ट्रेकर में से एक था। एक ऐसा आदमी जिसे मरे हुए 7 साल हो चुके थे। केव के अंदर मौत जैसी खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी, और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो।
बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी, सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी, पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक, केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था, पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंट्स। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा, पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर, बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हग किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित, 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया, उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की, ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं।
उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये सात लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और सातों के सातों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

अजय NTFM के ऑडियंस को मेरा प्यार भरा नमस्कार और जय हिंद। स्वाद का जायका इस शो पर मैं RJ भारतीय सीमा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब लोग? इस गर्मी वाले सीजन से कुछ राहत मिली आपको? थोड़ी सी तो मिली ही होगी। वैसे आचार्य 90FM के प्यारे ऑडियंस से मिलकर हमें तो खुशी ही मिलती है, क्योंकि आप हैं हमारे प्यारे प्यारे दोस्त और दोस्तों से मिलकर होने वाली खुशी का इजहार करना हमें बखूबी आता है। अर्ज किया है, अगर चलती रहूं मैं अपनी मंजिल की ओर तो हो सकती है इनमें से एक बात या तो मिल जाएगी मंजिल, मतलब ऑडियंस का साथ, या फिर यूं ही चलता रहेगा सफर और मिलूंगी आपसे शुक्रवार की शाम और सोमवार की दोपहर, जब साथ होंगे यहाँ ऑडियंस जी आप जैसे हम सफर, तब गर्मी की मार होगी धीरे धीरे बेअसर। स्वाद का जायका निभाने का ये वादा, मनोरंजन से भरपूर और गाने भी ज्यादा, खाने के माध्यम से दिल को लुभाना मीन्स अपनापन जताकर दोस्ती को निभाना। स्वागत है ऑडियंस जी आपका इस शो पर, नई रेसिपीज को लाई हूँ आप ही के लिए ढूंढ कर। भारतीय सीमा के रसोई वाले राज साथ में बजेंगे सुमधुर और सुरीले साज। हमारी आज की पहली रेसिपी है एक स्पेशल टाइप का लड्डू। इस लड्डू में इस्तेमाल होने वाली एक स्पेशल

चीज गर्मी को मात देने के साथ हमारे देसी खाने को खूबसूरत भी बनाएगी। ये गर्मियों में शरीर को ठंडा रखती है, दिखने में मोतियों जैसे है और इसे खाने से लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है। इसे पानी में भिगोकर इस्तेमाल किया जाता है। आइसक्रीम, फालूदा और शरबत बनाते समय इसे यूज किया जाता है। जनाब, सही पहचाना आपने, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ सब्जा की। जब सब्जा को पानी में भिगोकर रखते हैं, तब ये फूल कर जेली की तरह बनता है। सब्जा की तासीर ठंडी होती है, इसीलिए बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप सब्जा का सेवन हर रोज कीजिए। इससे एसिडिटी कंट्रोल में रहती है और हमारा वेट भी कंट्रोल में रहता है। अब हम इस सब्जा के लड्डू को बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सब्जा के लड्डू बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स: सब्जा के बीज 100 ग्राम, नारियल का पानी आवश्यकता के अनुसार। नारियल के पानी में हमें सब्जा के बीज को सोक करना है, तो अप्रोक्सीमेटली 3 कटोरी भर के पानी मैं यहाँ ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए ताजा नारियल 1, हेल्दी वाला ब्राउन गुड 200 ग्राम, देसी घी 4 चम्मच, मिल्क मसाला 4 चम्मच या फिर काजू और बादाम 7-8। उसके साथ हमें जरूरत पड़ेगी काला मुनक्का 15 से 20, इलायची पाउडर आधा छोटा चम्मच, जायफल पाउडर 1 चुटकी भर। जायफल पाउडर को यूज करना ऑप्शनल है। और हमें चाहिए ढेर सारा प्यार, क्योंकि आपके मन की भावनाएं इस रेसिपी में उतरने वाली हैं। इसकी रेसिपी को सुनने से पहले हमें थोड़ी सी तैयारी करनी पड़ेगी। सबसे पहले एक बड़ी कटोरी लीजिए, फिर उसमें डालिए सब्जा के बीज। हमें सब्जा के बीज को भिगोना है। इसे ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए हम इन्हें नारियल के पानी में सोक करके कुछ टाइम के लिए साइड में रख देंगे। लगभग 2 घंटे तक सब्जा के बीज को नारियल के पानी में भिगोकर हमने रख दिया है। 2-3 घंटे के बाद वो अच्छी तरह से फूल जाएंगे। एक ट्रांसपेरेंट जेली टाइप टेक्सचर आपको जब दिखे, तब समझ लीजिए कि बीज अब यूज करने के लिए सब्जा के बीज अब यूज करने के लिए रेडी हो गए हैं। उसके बाद हमें ताजा नारियल कद्दूकस करके लेना है। कद्दूकस मीन्स ग्रेटेड। फिर ब्राउन गुड को बारीक टुकड़ों में काटकर रेडी रखना है। अगर आप ड्राई फ्रूट्स यूज कर रहे हैं तो उन्हें पतले टुकड़ों में काटकर तैयार रखिए। हे भगवान, इतनी सारी तैयारी करके मैं तो थक गई भाई साहब। अब एक गाना सुनते हैं। आप कहीं भी मत जाइए, मैं यूं गई और यूं आई।

के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। सब्जा के लड्डू बनाने की तैयारी तो हो गई, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। सबसे पहले आप लीजिए एक नॉनस्टिक पैन या बड़ी सी कढ़ाई, फिर इसमें डालिए शुद्ध देसी घी, उसके बाद इसमें ताजा नारियल और गुड़ डालकर अच्छे से मिक्स करते हुए पकाइए। इसे पकाते समय गैस को लो फ्लेम पर ही रखें, अदरवाइज ये मिश्रण जल सकता है और आपकी मेहनत बेकार ना हो, इसलिए आपको प्रिकॉशन लेनी है। लगभग 15 से 20 मिनट के बाद इसमें ऐड कीजिए सब्जा के बीज। अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 मिनट के बाद ये मिश्रण रेडी हो जाएगा और तब तक इसे अच्छे से पकाते हुए आपको चम्मच चलाते रहना है। गुड़ और नारियल का टेक्सचर जब एक साथ मिलेगा तब इसे टेस्ट करने के लिए आपका मन जरूर लग जाएगा। लेकिन लेकिन लेकिन अभी कर लीजिए थोड़ा इंतजार, क्योंकि सब्जा के लड्डू चखने के लिए हम भी बैठे हैं कब से बेकरार। अब आगे क्या करें तो भाई सुनिए, आगे हमें ये करना है कि इस मिश्रण में ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर और जायफल पाउडर को डालना है। इसे भी मिक्स करते हुए धीमी आंच पर पकाना है। ऐसा करते समय आपका किचन मनमोहक खुशबू से भर जाएगा। फिर आप गैस को बंद कर दीजिए, इस मिश्रण को ठंडा होने दीजिए और तब तक हमें वेट करना है। लड्डू बनाने का मिश्रण अब थोड़ा ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बनाते हैं। इसके लिए आप एक बड़ी सी प्लेट लीजिए, फिर अपने हाथों पर आप थोड़ा सा घी लगाइए। उसके बाद तैयार मिश्रण से नींबू के साइज के लड्डू को बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर एक एक करके सब्जा के सारे लड्डुओं को आप उस प्लेट में रख दीजिए। जब सारे लड्डू तैयार हो जाए तब लगभग एक घंटे तक उन्हें सूखने के लिए ऐसे ही खुला छोड़ दीजिए, या तो आप उन्हें फैन के नीचे भी रख सकते हैं। चूंकि ये लड्डू हमने ताजे नारियल को यूज करके बनाए हैं, इसलिए इन्हें फ्रिज में रखना बेहतर होगा। इन लड्डुओं को एक एयर टाइट कंटेनर में रखकर आप फ्रिज में ही स्टोर कीजिए। वैसे ये सब्जा लड्डू होते हैं इतने टेस्टी कि झटपट खत्म भी हो जाते हैं, लेकिन फ्रिज में एटलीस्ट एक हफ्ते तक आप इसे स्टोर कर सकते हैं। आपको जब भी इन्हें खाने का मन करे तब आप आधा घंटा पहले इन्हें बाहर निकाल कर रखें। ऐसा करने से इसका ठंडापन कम होकर ये रूम टेम्परेचर वाले हो जाएंगे। इस तरह से हमारे टेस्टी और हेल्दी सब्जा के लड्डू हो गए हैं तैयार। सुबह के नाश्ते में आप इन सब्जा के लड्डुओं को जरूर खाएं। ऐसा करने से आप दिन की शुरुआत एक हेल्दी तरीके से करेंगे। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। इस सब्जा के लड्डू की खिदमत में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है गोल मटोल लड्डू। गोल मटोल से मीठे लड्डू बनाने डाला सब्जा, इसका टेस्ट है ऐसा अनोखा कि मेरे दिल पर किया कब्जा। जब जब देखूं मैं थाल में भरे ये मीठे मीठे लड्डू, तब सारा डाइटिंग भूलकर इन पर हो जाऊं लट्टू। जब जब हो जाता संगम घी गुड़ और कोकोनट, तब इनका सेवन करके आप जरूर पाएंगे हेल्दी गट। देसी घी और ब्राउन गुड़ देगा इतनी ताकत कि बीमारी रहेगी दूर और ना आएगी कोई आफत। लड्डू में भी छुपे हैं सेहत से जुड़े कुछ राज, हमारे शो में शामिल है रेसिपीज और सुरीले साज। जब होगी ऑडियंस जी किचन में आपकी एंट्री, तब लगाइए आचार्य 90 FM और सुनिए गाने, वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। अब बढ़ते हैं अगली रेसिपी की तरफ। हमारी अगली रेसिपी का नाम है क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। गर्मी के लिए ये बेहद ताजगी भरा और हाइड्रेटिंग ड्रिंक है। इसे घर पर बनाना एकदम आसान है। खीरा, नींबू, पुदीना डालकर बनाया गया ये रिफ्रेशिंग ड्रिंक आपको चिलचिलाती धूप में तुरंत ठंडक और एनर्जी देगा। यूजुअली मॉकटेल में ताजे फलों का रस,
सिरप, जड़ी बूटियां और सोडा या कार्बोनेटेड पानी का इस्तेमाल किया जाता है। वर्जिन पिना कोलाडा, वर्जिन मोहितो, स्ट्रॉबेरी लेमनेड और सिंड्रेला ऐसे कई सारे मॉकटेल्स फेमस हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल, ये ड्रिंक लैटिन अमेरिकन अगुआ फ्रेस्का और इंडियन खीरा नींबू शिकंजी का लेटेस्ट वर्जन है। वैसे दुनिया भर के कैफे में ये काफी फेमस है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM, योर ओन रेडियो, और मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने के लिए हमें चाहिए इंग्रेडिएंट्स। क्यूकम्बर मीन्स खीरा, म्हणजे आपली काकड़ी, एक बड़ी सी। नींबू का रस 2 बड़े चम्मच। पुदीने की पत्तियां 10 से 12। चीनी या शहद स्वाद के अनुसार, यहाँ पर मैं 2 चम्मच चीनी ले रही हूँ। फिर हमें चाहिए काला नमक 1 चुटकी, स्प्राइट 2 ग्लास, बर्फ के टुकड़े 4 या 5, ये ऑप्शनल है। अब हम क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल बनाने की रेसिपी को सुनते हैं। सबसे पहले आप ककड़ी को अच्छे से धो लीजिए। फिर आगे क्या, आगे हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार आपसे और भी बातें होंगी।

ब्रेक के बाद आप सबका फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। हम बना रहे हैं क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। ककड़ी को हमने अच्छे से धो तो लिया है। इसे यूज करने से पहले आप उस ककड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा काटकर उसे टेस्ट कीजिए। अगर उसका टेस्ट कड़वा है तो उसे बिल्कुल भी यूज नहीं करना है, क्योंकि कड़वी ककड़ी मीन्स खराब ककड़ी। हमें नॉर्मल टेस्ट वाली ककड़ी को यूज करना है। फिर उस ककड़ी को आप बारीक टुकड़ों में काट लीजिए। उसके बाद हमें लेना है मिक्सर का जार। उस जार में हम डालेंगे खीरा मीन्स ककड़ी के टुकड़े और पुदीना के कुछ पत्ते। इसके साथ आधा कप पानी डालकर हमें इसका पेस्ट बनाना है। जब तक ये मिश्रण एकदम स्मूथ ना हो तब तक हमें इसे मिक्सर में पीसना है। इसका स्मूथ पेस्ट बनने के बाद क्या करें? तो भाई अब हमें इसे छानना है। इसके लिए हमें चाहिए एक छलनी। उस छलनी की मदद से इस पेस्ट को हम छान लेते हैं। ऐसा करने से खीरा मीन्स क्यूकम्बर के रेशे अलग हो जाएंगे। फिर उस छाने हुए स्मूथ जूस को हम एक बर्तन में निकालेंगे। अब उसमें मिलाना है नींबू का रस, शक्कर और थोड़ा सा नमक। फिर एक चम्मच की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करना है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लीजिए 2 सर्विंग ग्लास। फिर हमेशा वाला क्रिस्टल डेकोरेशन मीन

नमक और शक्कर वाला डेकोरेशन करना है। उन ग्लास के किनारों को आप थोड़ा पानी लगाइए। उसके बाद एक छोटी प्लेट में हम लेंगे 1 चम्मच शुगर पाउडर और 1 चम्मच नमक। इस प्लेट में नमक और शक्कर को मिक्स करना है। अब उन गीले किनारों वाले ग्लास को उस प्लेट में पलट दीजिए, आई मीन टू से उन्हें अपसाइड डाउन करके उस प्लेट में रखिए। फिर एकदम आराम से उन्हें सीधे रखिए। ऐसा करने से ग्लास के किनारों पर क्रिस्टल डेकोरेशन वाला प्रोफेशनल लुक आएगा। उसके बाद क्या करना है तो जनाब अब सुनिए आगे। अब बड़ी नजाकत से उन ग्लास में हम डालेंगे क्यूकम्बर लाइम का जूस। आप चाहे तो सबसे पहले बर्फ के कुछ टुकड़े डालिए और फिर क्यूकम्बर लाइम का जूस डालिए। वैसे मुझे पर्सनली विदाउट आइस वाले मॉकटेल्स ही ज्यादा अच्छे लगते हैं। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त RJ भारतीय सीमा। अब उस क्यूकम्बर लाइम जूस के ऊपर हमें डालना है स्प्राइट। फिर इस मिश्रण को 1 चम्मच की मदद से आप मिक्स कीजिए। अब बारी आती है फाइनल टच की। उस ग्लास के किनारों पर हम लगाएंगे नींबू की पतली स्लाइस और उसके साथ रिफ्रेशिंग पुदीना की एक सुंदर सी पत्ती। अब इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की सुंदर छवि को आप कीजिए अपने मोबाइल कैमरा में बंद, क्योंकि इसे टेस्ट करने लम्हे बचे हैं चंद। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए आप इसमें चुटकी भर ग्रेटेड अदरक इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज विदाउट जिंजर भी इसका टेस्ट एकदम कमाल का ही होगा। इस तरह हमारा क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल हो गया है एकदम तैयार। और इसे टेस्ट करने के लिए हमारे प्यारे ऑडियंस जी हैं एकदम बेकरार। तो भाई देर किस बात की, झटपट अपने किचन में जाइए और फटाफट से क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल को बनाइए। इस क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल की तारीफ में पेश है एक छोटी सी कविता। कविता का नाम है राहत वाला मॉकटेल। झुलसती सी गर्मी से जब पानी हो राहत और ककड़ी को खाने की मुझे हो चाहत, तब क्यों जाए हम कोई रेस्टोरेंट या होटल, घर में ही बनाएंगे टेस्टी और रिफ्रेशिंग मॉकटेल। गर्मी से बेहाल होकर आए जब पसीना, तब ठंडा ठंडा कोल्ड ड्रिंक मांगे कोई हसीना, उस वक्त जरूर पेश कीजिए अनोखा सा नगीना जिसमें है खीरा और रिफ्रेशिंग पुदीना। खीरा और पुदीना संग डालो थोड़ा स्प्राइट, इसको सिप करके एक्सप्रेशन दो ब्राइट। इसका टेस्ट निखारने डालो थोड़ी सी शक्कर, क्यूकम्बर पुदीना मॉकटेल गर्मी को देगा टक्कर। ट्रेडिशनल और वेस्टर्न वाले कल्चर का ये मेल, मींस किचन में कलाकारी दिखाने वाला खेल। आपकी उपस्थिति से स्वाद का जायका में आई है बहार। सोमवार और शुक्रवार के इंतजार में भारतीय सीमा हुई बेकरार। इस शो पर बनाएंगे हम टेस्टी टेस्टी खाना। आगे बात होगी और पहले सुनिए अगला गाना।

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM और मैं हूं आपकी दोस्त आरजे भारतीय सीमा। अब हम सुनते हैं एक क्विक रिकैप। आज के इस शो पर सबसे पहले हमने बनाए हेल्दी वाले सब्जा के लड्डू। आलू मींस हलीम के लड्डू की रेसिपी से मेल खाने वाले इन लड्डुओं को बनाकर हमने हमारी और हमारे प्यारे ऑडियंस की दोस्ती की मिठास बढ़ाने की एक कामयाब कोशिश की है कि नहीं। जी बिल्कुल की। ताजा नारियल, गुड़, सब्जा के बीज को घी और ड्राई फ्रूट्स के साथ मिलाकर बड़े प्यार से हमने हेल्दी लड्डू बनाए। उसके बाद हमने बनाया वेस्टर्न स्टाइल वाला एक मॉकटेल जिसका नाम था क्यूकम्बर लाइम मॉकटेल। इसे बनाने के लिए हमने इस्तेमाल किया खीरा मींस ककड़ी, उसके साथ पुदीना और स्प्राइट, जिसने टेम्परेचर को कम करने की दी हाइट। इसे खूबसूरत बनाने के लिए प्रोफेशनल टच देने के लिए हमने नमक और शक्कर को मिक्स करके क्रिस्टल डेकोरेशन भी किया। इस प्रकार से हमने हमारे प्यारे ऑडियंस के लिए गर्मी सीजन स्पेशल सुपर कूल रेसिपीज को पेश किया। आई होप दैट आपको हमारी आज की रेसिपीज अच्छी ही लगी होगी। अगर आपके पास भी कुछ इंटरेस्टिंग रेसिपीज है तो हमें जरूर बताइए। अच्छा खाना खाइए और हमारे आचार्य 90 FM के गीत गुनगुनाइए। लेकिन लेकिन लेकिन उसके पहले हमारे आचार्य 90 FM चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपसे मिलती रहूंगी हर सोमवार दोपहर 1 बजे और हर शुक्रवार शाम 4 बजे। अर्ज किया है, जिक्र करते हैं ऑडियंस जी, हवा से अब सोमवार और शुक्रवार आएगा कब? जब भी होती है आपसे मुलाकात तब लगता है ऐसे जैसे धूप में हो बरसात। हमारे इस स्टूडियो में होता है ऐसा दृश्य जैसे आसमान में बिखरा सतरंगी इंद्रधनुष। स्वाद के जायके का म्यूजिकल मेल मींस हेक्टिक स्केड्यूल में मनोरंजन का खेल। सोमवार और शुक्रवार की मुलाकात का ये वादा आरजे भारतीय सीमा कभी ना छोड़ेगी आधा। अब समय हो गया है आप सबसे विदा लेने का। आपसे दोबारा मिलने का ये मेरा वादा, सिर्फ वादा नहीं एकदम पक्का वादा। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आरजे भारतीय सीमा की ओर से आप सबको सी यू सून वाला मेरा बाय बाय।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्द स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो मोटिवेशन से भरपूर है, जो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे संघर्ष और संघर्ष के बाद मिली हुई जीत की कहानी है। एक ऐसी जीत की कहानी जो आपके दिल में एक ऐसा सवाल छोड़ देगी, क्या हमें सच में कोशिश कितनी करनी चाहिए, ये वाला। क्योंकि हम अक्सर कोशिश नहीं करते और हमेशा ये कहते हैं यार कर लेता तो हो जाता, लेकिन काश हम चीजें करते तो रिजल्ट कुछ और होता। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी जिसका नाम है गोल्ड मेडल। सुबह के 4 बजे थे, पूरा शहर अब भी गहरी नींद में था। गलियों में सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी, लेकिन एक पतली सी गली के छोटे से घर का दरवाजा धीरे से खुला। 17 साल का अर्जुन अपने पुराने घिसे हुए रनिंग शूज पहनकर बाहर निकला। उसके शूज के सोल 2 जगह से फट चुके थे, लेस भी अलग अलग रंग की थी। उसकी माँ पीछे से बोली, बेटा रुक। अर्जुन मुड़कर देखता है, माँ एक स्टील के ग्लास में गरम गरम दूध लेकर खड़ी थी। बस इतना ही है, गर्म पी ले। अर्जुन मुस्कुरा दिया, माँ एक दिन ऐसा आएगा ना जब मैं तुझे दुनिया का सबसे महंगा दूध पिलाऊंगा। माँ हंस पड़ी, मुझे महंगा दूध नहीं चाहिए, बस तेरा नाम टीवी पर देख लूं इतना ही काफी है। ये लाइन अर्जुन के दिल में बस गई और वो दौड़ने लगा। हर सुबह 10 किलोमीटर, ना जिम, ना कोच, ना प्रोटीन, सिर्फ एक सपना, और उस सपने का नाम था गोल्ड मेडल। अर्जुन महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता था। पापा एक ऑटो ड्राइवर थे, दिन भर मेहनत करते थे, कभी 500 रुपए तो कभी 300 रुपए कमाते थे, और कभी कभी पूरे दिन में 150 रुपए भी मिलते थे। घर में 3 लोग थे, पापा, माँ और अर्जुन। टीवी पुराना था, फ्रिज नहीं था और कूलर भी नहीं था, लेकिन घर की दीवारों पर एक फोटो जरूर लगी थी, मिल्खा सिंह की। हर रोज अर्जुन उस फोटो के सामने खड़ा होकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। पापा हमेशा हंसते, बेटा सपना देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन पेट भी भरना पड़ता है। अर्जुन सिर्फ इतना कहता अपने पापा से, पापा एक मौका दे दीजिए और फिर देखिए। स्कूल में स्पोर्ट्स डे था, 100 मीटर रेस का कॉम्पिटिशन भी था। सब स्टूडेंट्स नए नए शूज में आए थे, किसी ने नाइकी, किसी ने एडिडास, और अर्जुन अपने फटे पुराने हुए शूज में आया। सबने शूज को देखा और अर्जुन का मजाक बनाने लगे, सब उस पर हंस पड़े। अरे देख, गोल्ड मेडल विनर आ गया, कहीं रास्ते में शूज टूट गए तो ये तो फिनिश लाइन तक भी नहीं पहुंच पाएगा। अर्जुन चुप था, सब उसका मजाक उड़ा रहे थे। रेस शुरू हुई, ऑन योर मार्क सेट, और विसल बजी, सब की तीर की तरह भागने लगे। शुरू हुई 40 मीटर तक, सब तीर की तरह भागे। शुरू के 40 मीटर तक अर्जुन पीछे था, सब लोग हंस रहे थे, लेकिन आखिरी 50 मीटर में जैसे उसके पैरों में बिजली आ गई, एक एक करके सब पीछे छूट गए। और क्या, फर्स्ट पोजीशन अर्जुन, पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स टीचर भी हैरान रह गए, ये लड़का कौन है। प्रिंसिपल ने मेडल पहनाया, लेकिन मेडल से ज्यादा अर्जुन को एक बात याद आ रही थी। स्पोर्ट्स टीचर ने उसे साइड में बुलाकर कहा, बेटा तेरे अंदर ना टैलेंट है, टैलेंट। पहली बार किसी को देख रहा हूं जो बिना ट्रेनिंग के इतना फास्ट भाग रहा है, कल से मेरे साथ प्रैक्टिस करेगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, सर फीस कितनी देनी होगी। टीचर मुस्कुरा दिए, टैलेंट की कोई फीस नहीं होती बेटा, बस तू आ जाना। उस दिन से अर्जुन की असली जर्नी शुरू हुई। अगले ही सुबह 4 बजे वो प्रैक्टिस के लिए स्कूल पहुंच गया। शाम को पापा के साथ ऑटो साफ करना, रात को पढ़ाई करना, दिन के 18 घंटे मेहनत होती थी, और 1 साल बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियनशिप, ये उसकी जिंदगी की पहली सबसे बड़ी रेस थी। पूरे डिस्ट्रिक्ट के बेस्ट रनर्स आए थे, सबके पास कोच थे, डाइट था, रनिंग किट थी, और अर्जुन सिर्फ एक ट्रैक सूट जो स्पोर्ट्स सर ने अपनी सैलरी से खरीदा था। रेस के पहले सर ने कांधे पर हाथ रखा अर्जुन के और कहा, याद रख
रेस पैर नहीं जीतते, रेस हौसला जीतता है। और क्या, जैसे ही विसल बजी रेस शुरू हुई, पूरे स्टेडियम में शोर मच गया। अर्जुन ने जबरदस्त स्टार्ट लिया, 100 मीटर, 200 मीटर, 300 मीटर सबसे आगे, लेकिन अचानक उसका पुराना शू फट गया, बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। पूरा स्टेडियम एक पल के लिए खामोश हो गया, बाकी रनर्स उसके आगे निकल गए। स्पोर्ट्स सर चीखे, अर्जुन उठ! उसके घुटने से खून निकल रहा था, दर्द बहुत था, लेकिन उसने माँ की बात याद रखी थी, मुझे बस तेरा नाम टीवी पर देखना है। अर्जुन धीरे से खड़ा हुआ और दोबारा भागना शुरू किया। अब रेस जितना मुश्किल था, लेकिन उसने गिवअप नहीं किया। फिनिश लाइन क्रॉस करते ही वो जमीन पर गिर गया। इस बार वो फर्स्ट नहीं आया, फोर्थ आया, मेडल भी नहीं मिला। रात को घर आकर वो पहली बार रोया, माँ शायद पापा सही कहते थे, ये सपना मेरे लिए नहीं है। माँ ने उसकी बात बड़ी शांति से सुनी और बाद में उसके पास बैठकर कहा, बेटा जो लोग पहली हार के बाद सपना छोड़ देते हैं उनके नाम को कोई याद नहीं रखता, लेकिन जो गिर कर खड़े हो जाए, भागे और अपने सपने को जीत ले, उनका नाम सारे लोग याद रखते हैं। उस रात अर्जुन ने आंसू पोंछे और एक कसम खाई, अब सिर्फ डिस्ट्रिक्ट नहीं, मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीतूंगा। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि अगले ही हफ्ते उसकी जिंदगी में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसे ट्रैक से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। तो दोस्तों, ये जो तूफान आने वाला है अर्जुन की जिंदगी में, ये कौन सा तूफान है? क्या ये अर्जुन को चैंपियन बनने से रोक देगा, या अर्जुन के पैर ही अर्जुन से छीन लेगा, जिससे उसकी भागने की क्षमता ही खत्म हो जाए, भागने की शक्ति खत्म हो जाए, या फिर घर की कोई ऐसी मुसीबत आ जाएगी, या फिर घर पे कोई ऐसी मुसीबत आएगी जो अर्जुन के सपने को तार तार कर देगी। ये मैं भी नहीं जानता, ये आप भी नहीं जानते। ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और मिलना पड़ेगा उस ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों की बोलक।

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 एफएम। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे शब्बीर सुना रहा था आपको गोल्ड मेडल की कहानी। अब गोल्ड मेडल में अर्जुन जो है एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कंपटीशन में हिस्सा लेता है और उसमें फोर्थ आता है और वो मन ही मन सोचता है क्या उसके पिताजी सही कहते थे कि सपने देखना सही है लेकिन पेट भरना भी जरूरी है। लेकिन अर्जुन की माँ उसे हौसला देती है और कहती है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिद को पूरा करोगे और जीतोगे एक दिन। तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। डिस्ट्रिक्ट रेस में हारने के बाद अर्जुन ने एक बात समझ ली थी, टैलेंट जरूरी है लेकिन टैलेंट से ज्यादा जरूरी है हिम्मत। अगले ही दिन वो सुबह 4 बजे फिर से ग्राउंड पहुंच गया। स्पोर्ट्स सर उसे देखकर मुस्कुरा दिए। मैं जानता था तू जरूर आएगा अर्जुन। अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, सर इस बार सिर्फ रेस नहीं जीतनी, जिंदगी जीतनी है। सर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तू फिर आज से ही असली ट्रेनिंग शुरू करते हैं। अब रूटीन और भी मुश्किल हो गया। सुबह 4 से 7 प्रैक्टिस होती, फिर स्कूल होता, शाम को पापा के साथ ऑटो चलाने में मदद होती और रात को पढ़ाई और फिर स्ट्रेचिंग, मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन। स्पोर्ट्स सर उसे हर दिन एक ही बात बोलते, बॉडी थकने से पहले दिमाग हार मानता है अर्जुन। और अर्जुन धीरे धीरे डिस्ट्रिक्ट का सबसे तेज रनर बनने लगा। उसने अपने सर की कही हुई सारी बातों को तवज्जो दी, उनको मानना शुरू किया और सर की बताई हुई ट्रेनिंग से ही वो सारी चीजें करने लगा। एक दिन स्पोर्ट फेडरेशन के सेलेक्टर्स डिस्ट्रिक्ट में आए थे, स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए ट्रायल्स होने वाले थे। ग्राउंड में 200 से ज्यादा एथलीट्स थे, सबके पास ब्रांडेड किट्स थी, न्यूट्रिशंस थे, प्रोफेशनल कोचेस थे। अर्जुन के पास सिर्फ एक पानी और माँ के हाथ के बने 2 पराठे।

स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर जोर से चिल्लाए, लेन नंबर फोर अर्जुन अनबिलीवेबल कमबैक और फर्स्ट पोजीशन। पूरा ग्राउंड तालियों से गूंज उठा। स्पोर्ट्स सर की आंखों में आंसू आ गए। कांग्रेचुलेशंस, तुम स्टेट चैंपियनशिप के लिए सेलेक्ट हो गए। अर्जुन ने सबसे पहले माँ को फोन किया, माँ मेरा सिलेक्शन हो गया है। दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक खामोशी रही, फिर माँ रो पड़ी, बेटा आज लग रहा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। स्टेट चैंपियनशिप से सिर्फ 10 दिन पहले पापा का ऑटो एक ट्रक से टकरा गया। एक्सीडेंट हुआ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट। पापा हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए थे, घर में एक भी रुपया नहीं था। माँ अपनी शादी के कंगन लेकर ज्वेलरी के ज्वेलर के पास गई। ज्वेलर बोला बस इतने ही मिलेंगे। माँ चुपचाप मान गई। अर्जुन दूर से सब देखता रहा। एक दिल में तूफान चल रहा था, उसने सोचा मैं रेस छोड़ देता हूँ। स्पोर्ट्स सर को पता चला, वो सीधा हॉस्पिटल आए। पागल हो गया क्या तू, रेस छोड़ेगा? अर्जुन बोला सर घर ज्यादा जरूरी है। सर ने गुस्से में कहा घर के लिए ही तो भागना है, तू रेस नहीं भागेगा तो जिंदगी भर पछताएगा। पापा ने भी ऑक्सीजन मास्क के साथ धीरे से कहा बेटा मेरे लिए मत रुक, एक दिन जब लोग मुझे गोल्ड मेडल विनर का बाप बोलेंगे ना तो मुझे और प्राउड फील होगा, तब मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, तब मेरी सारी खुशी बस तुझ में नजर आएगी। अर्जुन टूट गया, उसने पापा का हाथ पकड़कर बोला आप देखना पापा मैं जीत कर ही आऊंगा। स्टेट चैंपियनशिप का दिन आ गया, हजारों लोग स्टेडियम में बैठे थे, टीवी कैमरास, मीडिया, नेशनल सिलेक्टर्स। अर्जुन पहली बार इतनी बड़ी रेस में हिस्सा ले रहा था, उसके पैर कांप रहे थे। सर ने उसे एक छोटा सा तिरंगा दिया और कहा इसे पॉकेट में रख, जब डर लगे याद रख तू अकेला नहीं भाग रहा, पूरा भारत देश तेरे साथ भाग रहा है। रेस शुरू हुई, सब एथलीट्स बहुत स्ट्रांग थे। 200 मीटर तक अर्जुन पीछे था। कमेंटेटर बोला लगता है प्रेशर में आ गया, लेकिन आखिरी बेंड पर उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। 1, 2, 3 रनर्स को पीछे छोड़ दिए। फर्स्ट लाइन में और फोटो फिनिश में पूरे स्टेडियम की नजर थी, सांसें रुक गई। रिजल्ट आया, विनर अर्जुन, स्टेट चैंपियन, नेशनल्स गेम के लिए सेलेक्ट। मीडिया उसके पास दौड़ पड़ी। अर्जुन आप अपनी जीत किसे डेडिकेट करना चाहोगे? अर्जुन ने कैमरा की तरफ देखा और कहा ये मेडल मेरी माँ के बचे हुए कंगन का नतीजा है, मेरे पापा का खून पसीने की कमाई है और मेरे स्पोर्ट्स सर के भरोसे का मेडल है। पूरा स्टेडियम खड़े होकर तालियां बजाने लगा। लेकिन नेशनल गेम से सिर्फ एक महीने पहले प्रैक्टिस के दौरान अर्जुन के पैर में चोट बुरी तरह लग गई। एक डॉक्टर ने सीधा कह दिया हो सकता है तुम दोबारा कभी रेस नहीं भाग पाओगे। और ये सुनते ही अर्जुन के पैर की जमीन खिसक गई। अब आगे क्या होगा? क्या अर्जुन दोबारा रेस भाग पाएगा या फिर अर्जुन को रेस छोड़नी पड़ेगी या फिर कोई और नया मोड़ आएगा कहानी में? मैं नहीं जानता, आप भी नहीं जानते, हम दोनों नहीं जानते कि आगे कहानी में क्या होगा। पर इतना जरूर जानता हूं कि जो हौसला रखते हैं, जिनके अंदर जिद होती है और जो हर एक चीज को पूरा करने के लिए दिलो जान से मेहनत करते हैं, उनका सपना कभी खाली नहीं जाता, उनका परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। तो देखेंगे अर्जुन का परिश्रम इस छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त, मिलता हूँ एक छोटे से ब्रेक के बाद।

0: चेहरा कुछ जाहिर कुछ नेहा।
1: आदरी ने मैं मेरा साथ दी। अंतरों से घूम के जब मैं मुखड़े पे आऊं तो मेरे साथ गाइए।
2: ठहरिए देव साहब, पहले आपके नाम आपकी सेहत पर एक गान हो जाए।
1: जी मैं शराब नहीं छूता।
2: कौन काफिर छूने को कहता है, बगैर हाथ लगाए चढ़ा जाओ एक ही सांस में।
3: तो लाइए देव साहब, हम ही आपके होंठों पे लगाए देते हैं।
4: पी भी लीजिए देव साहब, बड़ी देर से छलक रहा है वरना दुख होगा इसे।
5: Yeah!

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीस स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। जैसे कि हम जान रहे हैं, अर्जुन एक रेस हारा, फिर उसने अपनी कोशिश जारी रखी, उसे सर मिले, सर के साथ उसने प्रैक्टिस की, फिर एक कंपटीशन गया, उस कंपटीशन को उसने जीता, लेकिन वो वहीं तक नहीं रुका, उसकी जिद काफी बड़ी थी। उसके माँ का जो सपना था उसे वो पूरा करना था, और अर्जुन उस सपने को पूरा करने के लिए हर एक वो काम कर रहा था जो उसे करना चाहिए था। अर्जुन कभी पीछे नहीं हटा, अर्जुन ने बस यही कोशिश की कि वो किस तरीके से अपने माँ के सपने को जिंदा रखे और अपने माँ के सपने को पूरा करे। तो चलिए देखते हैं अब कहानी का आखिरी हिस्सा। डॉक्टर्स की बात अभी भी अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। लिगामेंट टियर हो चुका था, अगर जल्दी रेस भागे तो करियर हमेशा के लिए खत्म हो सकता था। एक पल के लिए सब कुछ खत्म सा लगने लगा था। नेशनल गेम्स सिर्फ एक महीने दूर थे। जिस सपने के लिए उसने सालों तक पसीना बहाया, वही सपना उसके हाथों से अब दूर जा रहा था, फिसल रहा था। उस रात अर्जुन ने पहली बार भगवान से शिकायत की, मैं ही क्यों, आखिर मेरी क्या ही गलती है, मैं तो सिर्फ अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना चाहता था, तो मेरे साथ ही ये क्यों। उसकी माँ चुपचाप उसके पास बैठी रही। कुछ देर बाद उसने सिर्फ एक बात कही, बेटा भगवान कभी किसी का सपना नहीं तोड़ते, वो सिर्फ देखते हैं सपना देखने वाला कितना मजबूत है, और अगर तुम मजबूत हो तो जरूर तुम ये अपनी परेशानी अपनी कठिनाई को पार कर जाओगे। और उसके बाद अगले एक महीने रेस से ज्यादा मुश्किल था। पेन, फिजियोथेरेपी, आइस पैक्स, एक्सरसाइज, हर दिन दर्द, कभी घुटना जवाब दे देता, कभी कॉन्फिडेंस, और क्या, सब कुछ धीरे धीरे खत्म हो रहा था। लेकिन स्पोर्ट्स सर हर रोज बस उसे एक ही बात बोलते, गोल्ड मेडल ट्रैक पर नहीं जीता जाता, गोल्ड मेडल पहले दिमाग में जीता जाता है और उसके बाद गोल्ड मेडल मिल जाता है। अर्जुन मेडिटेशन करता, विजुअलाइजेशन करता, हर रात आंखें बंद करके फिनिश लाइन इमेजिन करता, और हर बार उसके सामने तिरंगा लहराता और खुद को देखता। अब धीरे धीरे एक महीना गुजर चुका था, नेशनल गेम्स अब आने ही वाले थे, और आखिरकार नेशनल गेम्स वाला दिन आ गया। देश के हर स्टेट के चैंपियंस एक ही स्टेडियम में खड़े थे। कमेंटेटर की आवाज पूरे स्टेडियम में गूंज रही थी, आज का 400 मीटर का फाइनल रेस, यहां से निकलेगा भारत का अगला चैंपियन। स्टैंड में हजारों लोग, टीवी कैमरास, मीडिया, और वीआईपी गैलरी में अर्जुन के पापा, जो एक्सीडेंट के बाद पहली बार व्हीलचेयर पर स्टेडियम आए थे। उनके पास माँ बैठी थी। माँ ने धीरे से कहा, देखो हमारा बेटा, देखो। पापा की आंखों में आंसू आ गए, और क्या, रेस शुरू हुई। ऑन योर मार्क्स सेट एंड विसल बजी। सब एथलीट्स बिजली की तरह निकल पड़े। 100 मीटर अर्जुन चौथे नंबर पर था। कमेंटेटर्स बोला, अर्जुन स्लो स्टार्ट ले रहा है। 200 मीटर अब तीसरे नंबर पर। स्पोर्ट्स सर चिल्लाए, पेशेंस, 300 मीटर अब तीसरे नंबर पर। लेकिन उसके इंजर्ड पैर में हल्का सा दर्द शुरू हुआ। एक सेकंड के लिए उसका बैलेंस ही हिल गया। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात गूंज रही थी, करियर खत्म हो जाएगा। लेकिन उसी पल उसने वीआईपी गैलरी की तरफ देखी। पापा व्हीलचेयर पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। माँ हाथ जोड़कर दुआ कर रही थी। स्पोर्ट्स सर दोनों हाथ हवा में उठाकर चिल्लाए, और इतनी जोर से चिल्लाए, अर्जुन तिरंगे के लिए जीतना है। बस ये कुछ शब्द सुनते ही जैसे अर्जुन के अंदर एक रोशनी दौड़ पड़ी। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एक रनर क्रॉस किया, फिर दूसरा। अब सिर्फ उसके आगे दो एथलीट बचे थे। आखिरी 50 मीटर
पूरा स्टेडियम खड़ा हो गया। कमेंटेटर चीख रहे थे, अनबिलीवेबल कमबैक, ऐसा फिनिश बहुत कम देखने को मिलता है। और आखिरी के 20 मीटर में तो पूछिए ही मत, दोनों रनर्स खड़े हो गए, कांधे से कांधा मिलाकर भाग रहे थे। 10 मीटर, 5 मीटर और क्या, फिनिश लाइन और फोटो फिनिश, और पूरा स्टेडियम खामोश, सबकी नजरें स्कोर बोर्ड पर थी। कुछ सेकंड जो अर्जुन को घंटों जैसे लग रहे थे, फिर स्क्रीन पर रिजल्ट फ्लैश हुआ, गोल्ड मेडलिस्ट अर्जुन। स्टेडियम तालियों से गूंज उठा, नेशनल एंथम बजना शुरू हुआ। अर्जुन पोडियम पर खड़ा था, उसके कंधों पर तिरंगा था, गोल्ड मेडल उसके गले में था। जैसे ही तिरंगा सबसे ऊपर गया, अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसने मेडल को चूमा और धीरे से कहा, ये मेडल सिर्फ मेरा नहीं है, ये मेरी माँ का सेक्रीफाइस है, पापा की मेहनत है और स्पोर्ट्स सर के भरोसे का नतीजा है, और हर उस इंसान का है जैसे जिसे कभी लोगों ने कहा था तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसने वो कर दिखाया। अब एक अनोखा फैसला आने ही वाला था कि अर्जुन ने अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया से पूछा अवार्ड सेरेमनी के बाद मीडिया ने अर्जुन से पूछा, अर्जुन अब आपका अगला सपना क्या है? सबको लगा वो ओलंपिक्स बोलेगा, लेकिन अर्जुन मुस्कुराकर बोला, मैं ओलंपिक जरूर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने गांव में एक फ्री स्पोर्ट्स एकेडमी बनाऊंगा, ताकि किसी और बच्चे को फटे हुए शूज की वजह से सपना ना छोड़ना पड़े। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद जहां कभी अर्जुन अकेला सुबह 4 बजे दौड़ता था, आज वहीं 300 से ज्यादा बच्चे हर सुबह 4:30 बजे दौड़ते हैं। गेट पर बड़ा सा बोर्ड लगा था और उस पर लिखा था अर्जुन गोल्ड मेडल स्पोर्ट्स एकेडमी, और उसके नीचे एक लाइन लिखी थी, जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मान लेने वालों की कभी जीत नहीं होती। एक छोटा सा लड़का अर्जुन, जिसके पास सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसके पास वो मेहनत, वो जिद, वो लगन थी, और उसी जीत के चलते, उसी मेहनत के चलते उसने अपना वो सपना पूरा किया। उसने वो गोल्ड मेडल जीता, उसने अपना हौसला बुलंद किया, और उसके गोल्ड मेडल जीतने के बाद उस पूरे शहर में, उस पूरे मोहल्ले में इतने स्टूडेंट्स अब रेस में और अलग अलग तरह के खेलों में हिस्सा लेने लगे, जिसकी शायद ही कभी किसी ने कल्पना की हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM पर कहानियों की गुल्लक। मैं आपसे कहता हूँ टाटा, बाय बाय, टेक केयर।

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

हेलो एंड वेलकम टू आचार्य 90 FM। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त आज शब्बीर स्वागत करता हूँ आपका कहानियों की गुल्लक में। आज की कहानी हमारी ट्रेकिंग वाली। हम में से कई सारे लोग ट्रेक पर जाते हैं, नए नए एक्सपीरियंस लेकर आते हैं बहुत सारे एडवेंचर्स के साथ। तो यही कहानी है एक नए एडवेंचर की, एक नए एक्सपीरियंस की। तो चलिए सुनते हैं 7 अनजान मुसाफिर। जिंदगी के कुछ सफर ऐसे होते हैं जो आप प्लान करते हो बिल्कुल वैसे नहीं होते, और कुछ सफर बिल्कुल प्लान की तरह होता है। सितंबर का महीना था, मुंबई अपनी यूजुअल स्पीड में भाग रही थी। लोकल ट्रेन्स पैक्ड, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में डेडलाइंस, रोड्स पर ट्रैफिक, और इन सब के बीच 7 लोग थे जो अपनी बोरिंग लाइफ से कुछ वक्त के लिए भागना चाहते थे। उन्होंने एक ट्रेक ग्रुप में रजिस्ट्रेशन किया था। ट्रेक का नाम था सीक्रेट वैली, लोकेशन सीक्रेट, रूट सीक्रेट, और ऑर्गेनाइजर ने सिर्फ एक लाइन लिखी थी, एडवेंचर गारंटीड। सैटरडे सुबह 5 बजे मुंबई सेंट्रल के बाहर सब पहली बार मिले। सब एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर थे। पहले पहुंचा 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ऑफिस लैपटॉप और कोडिंग से भरी जिंदगी। उसके बाद रिया आई, शोल्डर पर कैमरा, फेस पर कॉन्फिडेंस। फोटोग्राफी उसका पैशन था। धीरे धीरे बाकी मेंबर्स भी आ गए, आरुष, मीरा, देव, सना और हाँ यश भी। सब ने एक दूसरे को ऑकवर्ड स्माइल दी। तो हम ही हैं सीक्रेट वैली वाले, देव ने पूछा। सब हंस पड़े, आइस ब्रेक हो गई। और कुछ ही देर में ट्रैवलर वैन उन्हें लेकर मुंबई से दूर निकल पड़ी। 3 घंटे तक गाड़ी पहाड़ों और घने जंगलों से बीच गुजरती रही। गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, और स्ट्रेंजेस धीरे धीरे दोस्त बन रहे थे। कबीर और रिया की बातें सबसे ज्यादा हो रही थी, फोटोग्राफी, ट्रैवलिंग, लाइफ, ड्रीम्स। पता नहीं चला कि कब 3 घंटे गुजर गए। गाड़ी फाइनली एक छोटे से गांव में रुक गई। विलेज इतना रिमोट था कि मोबाइल नेटवर्क लगभग गायब हो गया था। वहां एक बूढ़ा आदमी उनका इंतजार कर रहा था, सफेद दाढ़ी, पतला शरीर और अजीब सी सीरियस आंखें। मैं बापुरा हूं, गाइड, उसने सबको देखा, फिर धीरे से बोला, जो बोलो वही करना। देव हंस दिया, लगता है डेंजरस ट्रैक है, बापुराव ने जवाब दिया। जंगल में शॉर्टकट मत लेना, समझे? उस वक्त किसी ने उसकी बात को सीरियस नहीं लिया, लेकिन शाम तक सबको समझ आने वाला था कि वो बार बार शॉर्टकट का नाम क्यों ले रहा था। ट्रेक शुरू हुई। नेचर ब्रेथ टेकिंग थी। हर तरफ ग्रीनरी, क्लाउड्स, वाटरफॉल्स, बर्ड साउंड्स, सब एंजॉय कर रहे थे। रिया हर 10 मिनट में फोटो क्लिक कर रही थी। तभी उसकी नजर एक चीज पर पड़ी। गाइस गाइस गाइस गाइस गाइस, सब रुक गए। जमीन पर एक पुराना DSLR कैमरा पड़ा था, पूरा डस्टी, जैसे सालों से यहां हो। कबीर ने उठाया, ये यहां क्या कर रहा है? देव क्यूरियोसिटी में था, मेमोरी कार्ड चेक करने लगा। कैमरा डेड था, लेकिन कार्ड बच गया था। देव ने पूछा, इसे कनेक्ट करके देखते हैं। फिर उस कार्ड को कनेक्ट किया, फोटोज ओपन हुई और सब चुप हो गए। फोटोज में एक ट्रेकिंग ग्रुप था, 7 लोग, एग्जैक्टली इसी जंगल में, इसी रूट पर, इसी वैली में। सब स्माइल कर रहे थे, एडवेंचर एंजॉय कर रहे थे, लेकिन लास्ट फोटो में सबके रोंगटे खड़े हो गए। लास्ट फोटो में सिर्फ एक आदमी था, बाकी 6 लोग गायब थे। डेट लिखी थी सितंबर 2019। मीरा ने धीरे से पूछा, ये लोग कौन है? किसी के पास जवाब नहीं था। लंच के दौरान वीक नेटवर्क मिल गया। सना ने गूगल सर्च की
और जो रिजल्ट सामने आया उसने सबको शॉक कर दिया। 2019 में इसी एरिया में एक ट्रेकिंग ग्रुप मिसिंग हुआ था। 7 लोग गए थे इस ट्रैक पर, सिर्फ एक वापस आया, बाकी कभी नहीं मिले। न्यूज आर्टिकल में लोकेशन भी सेम थी। सब एक दूसरे को देखने लगे। देव बोला, कोइंसिडेंस है, लेकिन उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस नहीं था। बापूराव दूर खड़ा सब सुन रहा था। उसके चेहरे पर अजीब टेंशन थी। कबीर उसके पास गया। अंकल, आपको कुछ पता है क्या वो ग्रुप के बारे में? बापूराव कुछ सेकेंड्स तक चुप रहा, फिर बोला, पुरानी बातें हैं, भूल जाओ और आगे चलो। लेकिन उसकी आंखों में जो डर था वो किसी से छुपा नहीं। शाम होने में अभी कुछ घंटे बाकी थे और उन्हें नहीं पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली है, क्योंकि आगे रास्ते दो हिस्सों में बंटने वाले थे, एक सेफ ट्रायल और एक शॉर्टकट। वही शॉर्टकट जिसने सालों पहले 6 लोगों को अपने अंदर समा लिया था। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे थे एक ट्रेकिंग की कहानी, इस ट्रेकिंग की कहानी में कैसे 7 अनजान लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से परेशान बस इसी एक चीज के लिए आए थे कि वो एक नया एक्सपीरियंस देख पाएंगे, एक नया एक्सपीरियंस महसूस कर पाएंगे, एक नई ट्रेकिंग पर जाएंगे, एक नई एनर्जी लाएंगे। लेकिन वहां पर जाने के बाद उनको तो ऐसा कुछ महसूस हुआ जैसे कि उन्हें लगने लगा कि कोई मुसीबत में तो नहीं फंस गया अब। तो देखते हैं कहानी का अगला हिस्सा एक ब्रेक के बाद। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM और अपने मनपसंद गानों।

स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। हम सुन रहे थे कहानियों के गुल्लक आचार्य 90 FM पर। जैसे कि आपने देखा कि कैसे ट्रेक अभी आगे जाके और मुश्किल होने वाली थी, तो सुनते हैं कहानी का अगला हिस्सा। दोपहर के लगभग 2 बजे थे। हवा में ठंडी नमी थी। जंगल और गहना होता जा रहा था। रास्ते धीरे धीरे मुश्किल होने लगे थे। कुछ देर बाद सब एक जंक्शन पर पहुंचे। रास्ते 2 हिस्सों में डिवाइड हो गए थे, एक वाइट ट्रायल और एक बहुत ही नैरो जंगल पाथ। बापूराव तुरंत बोला, सब लेफ्ट वाले रास्ते से जाएंगे। लेकिन आरुष ने राइट साइड वाले पाथ को देखा, ये शॉर्टकट लग रहा है। बापूराव ने तुरंत मना किया, नहीं। यश हंस पड़ा, गाइड अंकल फिर से शॉर्टकट से डरा रहे हैं क्या? देव भी बोल पड़ा, मैप के हिसाब से तो ये रास्ता भी वैली में ही जा रहा है। बापूराव के चेहरा सीरियस हो गया, मैं 30 साल से यहाँ का गाइड हूँ, कह दिया नहीं तो मतलब नहीं। लेकिन आरुष को यकीन था कि वो सही है। अंकल, अननेसेसरी लॉन्ग रूट क्यों? टाइम वेस्ट होगा। ग्रुप में डिस्कशन शुरू हो गई। कबीर और सना गाइड की साइड थे, लेकिन आरुष, देव और यश शॉर्टकट के फेवर में। रिया न्यूट्रल थी और मीरा कंफ्यूज्ड। आखिर प्रेशर में आकर बापूराव मान गया, लेकिन उसने एक बात कही, एक ऐसी बात जो बाद में सबको याद आने वाली थी। उसने धीरे से कहा, जंगल हर बार माफ नहीं करता। शॉर्टकट ऑफिशियली सिर्फ 40 मिनट का था, लेकिन एक

घंटा बीत गया, फिर डेढ़ घंटा, फिर दो घंटे, रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। सबको अजीब लगने लगा। कबीर ने जीपीएस चेक किया, स्क्रीन फ्रीज हो गई, कंपास ऐप भी वियर डायरेक्शन दिखा रहा था। सना ने अपना फोन निकाला, उसमें भी सेम प्रॉब्लम। देव ने मजाक करने की कोशिश की, लगता है जंगल एवेंजर्स लेवल का मैग्नेटिक फील्ड रखता है। किसी ने कहा, नहीं हंसना, बस हो गया। अब टेंशन बढ़ रही थी। बापूराव बार बार आसपास देख रहा था, जैसे वो कुछ पहचानने की कोशिश कर रहा हो। अचानक वो रुक गया, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। क्या हुआ, कबीर ने पूछा। बापूराव ने धीरे से कहा, हम गलत जगह पे आ गए हैं। सब चुप। मतलब मैं भी नहीं जानता हम कहाँ हैं। एक सेकेंड के लिए पूरे जंगल में सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दी। गाइड जो 30 साल से यहां ट्रेक करा रहा था, वो खुद खो गया था। शाम होने लगी थी, क्लाउड्स नीचे उतरने लगे थे, विजिबिलिटी कम होने लगी थी। अब वापस जाना इम्पॉसिबल था। ग्रुप ने एक छोटी सी फ्लैट जगह देखकर कैंप लगाया, टेंट सेट्स हुए, स्मॉल बॉनफायर जलाया। सब नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबके अंदर फियर था, एक डर था। डिनर के वक्त भी यूजुअल जोक्स गायब थे। रिया ने धीरे से पूछा, बापूराव सच सच बताओ, 2019 में क्या हुआ था। बापूराव कुछ सेकंड्स के लिए चुप हुआ। बॉनफायर की लाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मैं उस ग्रुप का गाइड नहीं था। सब फ्रीज हो गए। मतलब मैं उसी ग्रुप का गाइड था, उन्होंने भी शॉर्टकट ही लिया था। देव की आवाज निकल गई, फिर? बापूराव ने नीचे देखा, 6 लोग कभी नहीं मिले। बॉनफायर के पास साइलेंस छा गया। उस रात लगभग 1 बजे सब अपने टेंट्स में सो रहे थे, तभी क्रंच क्रंच क्रंच किसी के छलने की आवाज आई। कबीर की आंख खुल गई, उसने टेंट से बाहर झांका, कोई नहीं। फिर आवाज आई, इस बार दूसरी साइड से, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई कैंप के पास घूम रहा हो। कबीर ने टॉर्च उठाई और बाहर निकला, उसके पीछे देव भी आ गया। देखा तूने, कबीर ने सिर हिलाया। दोनों ने टॉर्च घुमाई, कुछ नहीं, सिर्फ पेड़ और डार्कनेस। तभी देव का चेहरा सफेद पड़ गया। कबीर क्या हुआ? उधर देख, लगभग 50 मीटर दूर पेड़ के पीछे कोई खड़ा था, एक आदमी। बस उसकी परछाई दिख रही थी, मोशनलेस, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। कबीर ने टॉर्च पर फोकस की और उसी सेकंड वो आदमी गायब हो गया। बस गायब, जैसे कभी था ही नहीं। फिर सुबह हुई। सुबह सबने डिसाइड किया कि बिना रुके जंगल से बाहर निकलना है। टेंशन अपने पीक पर थी। लगभग 2 घंटे बाद उन्हें एक क्लिफ मिला, डेंजरस, बहुत डेंजरस। नीचे हजारों की फिटकी खाई, रास्ता उस क्लिफ के एज से जा रहा था। सब बहुत केयरफुली चल रहे थे। सबसे आगे यश था, उसका कॉन्फिडेंस अब भी कम नहीं हुआ था। गाइज रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। जैसे ही उसने ये बोला, उसके पैर के नीचे पत्थर टूट गया, क्रैक। सब कुछ 1 सेकंड में हुआ। यश सीधा नीचे चला गया, उसका शरीर हवा में लटक गया। नीचे सिर्फ मौत थी, हजारों फीट की खाई। उसका हाथ एक ट्री रूट में अटक गया, बस वही उसे जिंदा रखे हुए था। यश जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज कांप रही थी। नीचे देखते ही उसका चेहरा सफेद हो गया। अगर ग्रिप छूट जाती तो बॉडी भी नहीं मिलती। रिया रो पड़ी, मेरा पैनिक में आ गया।
सना चिल्लाई, कोई रोप निकालो। कबीर और आरुष तुरंत एक्शन में आए, उन्होंने इमरजेंसी रोप निकाली, लेकिन प्रॉब्लम थी रूट कभी भी टूट सकती थी। यश की ग्रिप स्लिप हो रही थी, उसके हाथ से खून निकलने लगा था। मैं गिर जाऊंगा, मुझे बचा लो, उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ मौत को सामने देख रहा था। कबीर क्लिफ की एज तक गया, सबने उसे पकड़ा। उसने रोप यश की तरफ फेंकी, पहली बार मिस, दूसरी बार मिस, तीसरी बार वो रोप यश ने पकड़ ली। लेकिन तभी जिस रूट को पकड़कर वो लटका था वो क्रैक करने लगी। कबीर, रूट टूट गई और यश नीचे गिरने लगा। लेकिन उसी सेकंड रोप टाइट हुई। कबीर और आरुष पूरी ताकत लगाकर रोप खींच रहे थे, उनके हाथ जल रहे थे, मसल शेक कर रहे थे। लगभग 15 मिनट के स्ट्रगल के बाद फाइनली यश को ऊपर खींच लिया गया। जैसे वो सेफ ग्राउंड पर आया, वो फूट फूट कर रो पड़ा। कोई कुछ नहीं बोला, सब समझ गए थे। आज उन्होंने मौत को अपनी आंखों के सामने देखा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। सना को कुछ और नजर आया था, कुछ ऐसा जिसने 2019 वाली मिस्ट्री को और भी ज्यादा डेंजरस बना दिया। और उस डिस्कवरी के बाद जंगल के हर राज खुलना शुरू हो गए थे। यश अभी भी शॉक में था, उसके हाथ कांप रहे थे। कबीर ने उसे पानी दिया। तू ठीक है ना? यश ने सिर्फ हाँ में सिर हिलाया, लेकिन सना की नजर अभी भी क्लिफ के नीचे थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी थी। कबीर, एक मिनट इधर आओ। कबीर एज पर आया, नीचे देखा और उसका गला सूख गया। लगभग 200 फीट नीचे पेड़ों और पत्थरों के बीच कुछ सफेद सा पड़ा था। पहले तो लगा पत्थर होगा, लेकिन जब रिया ने कैमरे का जूम यूज किया सबकी सांसें रुक गई। वो एक स्केलेटन था, इंसानी हड्डियों का ढांचा, और उसके पास एक फैडेड ट्रेकिंग बैकपैक। बैग पर पूरी धूल जमी हुई थी, लेकिन एक नाम अब भी पढ़ने लायक था, वीकेंड वंडरर्स। वही नाम जो 2019 वाले मिसिंग ट्रैक के ग्रुप का था। एक सेकंड के लिए सब चुप हो गए। देव ने धीरे से कहा, मतलब उनमें से कोई यहाँ गिरा था? बापूराव ने आंखें बंद कर दी, जैसे उसकी पुरानी यादें वापस आ गई। तो दोस्तों, जैसे कि हम सुन रहे हैं कि एक वीकेंड वंडरर्स करके ग्रुप था जो इनके पहले उसी ट्रैकिंग पर आया था, और उसमें से सिर्फ एक ही पर्सन मिला था, 6 लोग गायब थे, लेकिन उसमें से दूसरे पर्सन का अब मानवीय शरीर ढांचा मिला है। ये देखकर इन 7 लोगों को अब बहुत डर आया है। कहानी का अगला हिस्सा हम सुनेंगे एक ब्रेक के बाद। तब तक के लिए सुनते रहिए आचार्य 90 FM कहानियों के उल्लेख।

स्वागत है आपका आचार्य 90 एफएम में। ब्रेक के बाद शाम होने से पहले ग्रुप एक छोटी सी जगह पर रुक गया। सब आंसर्स चाहते थे। कबीर ने सीधे पूछा, बापूराव आप सच बताओ। बापूराव ने कुछ देर तक बोनफायर की आग को देखा और फिर बोला, 2019 में भी एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ था। सब ध्यान से सुनने लगे। सात लोग थे, यंग थे, एक्साइटेड थे, एडवेंचर के लिए पागल थे, बिल्कुल तुम लोगों के जैसे। उनकी आवाज भर गई। मैं गाइड था, मैं उन्हें शॉर्टकट लेने से रोकता रहा, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। जंगल में हवा चल रही थी और बापूराव अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा बोझ उतार रहा था। हम रास्ता भटक गए थे। दो दिन जंगल में घूमते रहे। एक एक करके लोग गायब होने लगे। मीरा ने पूछा, मतलब? बापूराव ने धीरे से कहा, पता नहीं, बस लोग गायब हो रहे थे, जैसे जंगल उन्हें निगल लिया हो। सबके शरीर ठंड पड़ गए थे। उस रात मौसम अचानक से खराब होने लगा। बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी और तेज हवा चलने लगी। बापूराव चिल्लाया, हमें शेल्टर ढूंढना होगा। ग्रुप ने टॉर्च निकाली। लगभग आधे घंटे बाद उनको एक केव मिली। बहुत पुरानी केव, अंधेरी और अजीब सी ठंडी। सब अंदर चले गए। बारिश बाहर टूट कर गिर रही थी। देव ने फ्लैश लाइट घुमाई और फिर वो फ्रीज हो गया। गाइस, सब उसकी तरफ देखा। केव के कोने में तीन पुराने बैकपैक्स पड़े थे, धूल से भरे हुए, और उसके पास एक रस्टेड टॉर्च और एक डायरी। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई। रिया ने डायरी उठाई। कवर पे नाम लिखा था अमन वर्मा, वही मिसिंग ग्रुप का मेंबर। रिया ने डायरी खोली। पेज गीले और पुराने थे, लेकिन कुछ लिखा हुआ भी था जिसे पढ़ा जा सकता था। उसने जोर से पढ़ना शुरू कर दिया। डे वन, हम शॉर्टकट में आ गए हैं। गाइड टेंशन में है, पर सब ठीक लग रहा है। डे टू, GPS काम नहीं कर रहा, हम लॉस्ट हो गए, सब नर्वस है। डे थ्री, कल रात किसी ने फुटस्टेप सुनी, हमने सोचा जानवर होगा, लेकिन फुटप्रिंट्स इंसान के थे। सब एक दूसरे को देखने लगे। सेम चीज उनके साथ भी हो रही थी। रिया ने अगला पेज खोला। आज रोहित गायब हो गया है। सुबह उसका टेंट खाली मिला। हमने हर जगह ढूंढा, कुछ नहीं मिला। सना का गला सूख गया। मेरा डायरी पकड़ने वाले हाथ को देख रही थी, उसमें हल्का सा कांप था। रिया ने अगला पेज खोला। हम सबको लगता है कि कोई हमें देख रहा है। रात को पेड़ों के बीच एक आदमी दिखता है, जब पास जाते हैं तो गायब हो जाता है। देव ने तुरंत कबीर की तरफ देखा। पेड़ के पीछे वाला आदमी? कबीर ने धीरे से हमें सर हिलाया। डायरी के लास्ट पेज सबसे अजीब था। उस पर लिखा था, अगर किसी को ये डायरी मिले, शॉर्टकट मत लेना, और अगर पेड़ों के बीच वो आदमी दिखे तो उसके पीछे मत जाना, वो तुम्हें बाहर नहीं जाने देगा और अंदर ले जाएगा। उसके बाद सेंटेंस अधूरा था, पेज पर खून जैसा लगा था, और वो डायरी वहीं खत्म हो गई। उसी वक्त केव के बाहर से आवाज आई, क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई गीली मिट्टी पर चल रहा हो। सब फ्रीज हो गए। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन ये आवाज अलग थी, बहुत पास, बहुत ही पास। क्रंच क्रंच क्रंच, जैसे कोई केव के एंट्रेंस के बाहर खड़ा हो और उनका इंतजार कर रहा हो। रिया ने फ्लैशलाइट एंट्रेंस की तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे उसके हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। एंट्रेंस के बाहर बारिश में एक आदमी खड़ा था, बिल्कुल मोशनलेस। उसका चेहरा

खामोशी थी। सबकी नजरें एंट्रेंस पर टिकी हुई थी। बारिश जोर जोर से हो रही थी, हवा चीख रही थी और एंट्रेंस के बाहर वही आदमी खड़ा था, बिल्कुल बिना हिले, बिल्कुल बिना कुछ बोले, जैसे वो उन्हें देख रहा हो। बापूराव के हाथ कांप रहे थे, उसके चेहरे का रंग उड़ चुका था। कबीर, वो रोहित है, 2019 वाला रोहित। मीरा का गला सूख गया। मतलब वो मर चुका है। उसी वक्त बिजली फिर चमकी। सब एंट्रेंस की तरफ देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बारिश और अंधेरा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सुबह होने का इंतजार करना इम्पॉसिबल था। सबने डिसाइड किया कि बारिश कम होते ही निकलना होगा, लेकिन नेचर के अपने कुछ और प्लान्स थे। लगभग रात के 3 बजे जमीन हिलने लगी। पहले हल्का वाइब्रेशन, फिर जोर से क्रैक, केव के बाहर से पत्थर गिरने की आवाज आई, लैंडस्लाइड, सना चिल्लाई। सब अपने सामान उठाकर भागने लगे। केव के बाहर आते ही उन्होंने देखा पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा था। पत्थर पेड़ों को कुचल रहे थे, मिट्टी का समंदर नीचे आ रहा था। सब जान बचाकर दौड़े और उस भागदौड़ में ग्रुप अलग हो गए। टीम 1 कबीर, रिया, सना। टीम 2 आरुष, देव, मीरा, यश और बाबूराव। सब जब बारिश रुकी, दोनों टीमें एक दूसरे से पूरी तरह अलग हो चुकी थी। कबीर की टीम घंटों तक भटकती रही, तभी उन्हें एक पुरानी वॉच टावर जैसी स्ट्रक्चर दिखी, शायद ब्रिटिश टाइम की थी, हाफ ब्रोकन। अंदर कुछ पुराने रिकॉर्ड्स पड़े थे। रिया ने डॉक्यूमेंट्स खोलना शुरू किए और फिर एक न्यूज़पेपर क्लिपिंग मिली, डेट सितंबर 2019, हेडलाइंस, मिसिंग ट्रेकिंग ग्रुप, मिस्ट्री डिपिंट्स। नीचे एक फोटो थी, 7 ट्रेकर्स और उनके बीच रोहित, वही आदमी। लेकिन आर्टिकल में एक शॉकिंग बात लिखी थी, रोहित कभी ऑफिशियली डेट डिक्लेयर नहीं हुआ था, उसकी बॉडी कभी मिली ही नहीं थी। तभी रिया को टावर के वॉल पर कुछ लिखा हुआ नजर आया, ओल्ड चारकोल राइटिंग, शायद किसी ने सालों पहले लिखा था। उस पर लिखा था, जंगल से बाहर का रास्ता वो दिखाता है, लेकिन सिर्फ उनको जो एक साथ रहते हैं। कबीर ने धीरे से कहा, या तो रोहित हमें बचाने की कोशिश कर रहा है या फिर हमें ट्रैप कर रहा है। उधर आरुष की टीम और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी। खाना खत्म हो चुका था, पानी भी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था और यश मेंटली ब्रोकन था। शाम तक उन्हें फिर वही आदमी दिखा, पेड़ों के पीछे, वही कपड़े, वही चेहरा, वही साइलेंस। इस बार यश उसके पीछे भागने लगा। रुको, देव चिल्लाया, लेकिन यश नहीं रुका। अचानक वो आदमी जंगल के अंदर गायब हो गया और यश भी। सुबह उसके पीछे दौड़े, 5 मिनट बाद यश मिला, एक क्लिफ के बिल्कुल एज पर, बस एक कदम और सीधे मौत। यश रो रहा था, मुझे लगा वो मुझे बुला रहा है, जैसे कोई हेल्प मांग रहा हो। सबको डायरी की लास्ट लाइन याद आ गई, उसके पीछे मत जाना। 2 दिन हो चुके थे, सब थक चुके थे, होप ऑलमोस्ट खत्म हो रही थी। तभी दोनों टीम्स को एक ही जगह एक ही चीज मिली, पत्थरों का बना हुआ एक एरो, डायरेक्शन दिखाता हुआ। कबीर की टीम ने भी देखा, आरुष की टीम ने भी देखा और दोनों एरोस के सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे थे। सबने डिसाइड किया कि अब वो एरो को फॉलो करके ही जाएंगे। लगभग 4 घंटे चलने के बाद दोनों टीम्स फाइनली एक दूसरे से मिल गई। सब इमोशनल हो गए, किसी ने किसी को हग किया, किसी ने किसी के आंखों में आंसू देखे। अब सिर्फ ऑब्जेक्टिव था जंगल से निकलना। एरो फॉलो करते गए। शाम के वक्त उन्हें कुछ दिखाई दिया, दूर, बहुत दूर, एक रोड, एक्चुअल रोड, सिविलाइजेशन, लाइफ, सेफ्टी, सब बाहर आने लगे और 10 मिनट बाद वो सब जंगल से बाहर आ चुके थे। सब सेफ थे, रेस्क्यू टीम मिल गई, हॉस्पिटल चेकअप हुआ, मीडिया ने क्वेश्चंस पूछे, लेकिन किसी ने पूरी कहानी नहीं बताई। कौन मानता कि जंगल में उन्हें एक ऐसा आदमी देखा जो शायद सालों पहले गायब हो चुका था। 3 दिन बाद मुंबई में लाइफ नॉर्मल होने लगी। कबीर ऑफिस में था, तभी उसके लैपटॉप पर एक ईमेल आई, अननोन सेंडर, सब्जेक्ट था थैंक यू। कबीर ने मेल खोला, अंदर एक फोटो थी, ग्रुप फोटो, जंगल वाली। सब 7 लोग खड़े थे स्माइल करते हुए, लेकिन कबीर का दिल रुक गया। फोटो में 8 लोग थे, 7 ट्रेकर्स और उनके पीछे रोहित, वही रोहित, 2019 वाला ट्रेकर। फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी,

इस बार सब घर पहुंच गए। कबीर का हाथ कांप गया। उसने सेंडर्स की डिटेल चेक की। ईमेल आईडी एग्जिस्ट नहीं करती थी, जैसे कभी बनी ही नहीं। उसने फोटो जूम की और उस वक्त उसने कुछ देखा, कुछ ऐसा जो उसकी रीढ़ की हड्डी ठंड कर गई। रोहित कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, वो सीधा कबीर की तरफ देख रहा था और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। कुछ महीने बाद बापूराव फिर से उस जंगल में गया अकेले। उसने उस जगह पर फूल रखे जहां 2019 वाले ट्रेकर्स लॉस्ट हुए थे। वापस मुड़ते वक्त उसने दूर पेड़ों के बीच एक आदमी देखा, वही ट्रेकिंग जैकेट, वही चेहरा, वही स्माइल। बापूराव की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, अब तू भी जा सकता है बेटा। हवा चलने लगी, पेड़ हिलने लगे और जब उसने दोबारा देखा वहां कोई नहीं था, सिर्फ जंगल था, एक रास्ता जो मैप्स पर आज भी नहीं मिलता। हर जंगल में बहुत भूत नहीं होते, हर जंगल में भूत नहीं होते। कभी कभी कुछ रास्ते सिर्फ अपना अधूरा सफर पूरा करने का इंतजार करते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने सुना कि किस तरीके से एक पूरा ग्रुप गायब हो चुका था, सिर्फ एक बंदा लौटा था और ये सात लोग उसी ट्रैक पर जा गए थे और सातों के सातों वापस आ गए। कभी कभी कुछ एनर्जीज हमें हमारी मुसीबत से बाहर भी निकालती है और कभी कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमें मुसीबत में भी डाल देती है। तो ऐसे वक्त हमेशा एडवेंचर के बारे में ना सोचे, अपने दिल के बारे में सोचे, अपनी जिंदगी के बारे में सोचे, क्योंकि कभी कभी एक गलत फैसला आपकी जिंदगी खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली बार मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए आचार्य 90 FM, कहानियों के गुल्लक। मस्त मस्त गाने सुनिए, मस्त मस्त रहिए। तब तक के लिए बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है।